नमस्कार, सुप्रभात। FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 सितंबर सन 2026, सुबह के 5:56 और ठीक 52 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित LIC निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MDL रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित ये श्लोक है, कलातीतम कल्याण कल्याण कल्पम सदा सद्रसानंददम सदपदज्ञम अनेकाक्षरम निष्कलम निर्मलम तम गणेशम भजे मोदक प्रियांतम। अर्थात मैं उन गणेश भगवान की आराधना करता हूं जो कलाओं से परे हैं, जो परम कल्याणकारी हैं और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, जो हमेशा सत चित्त आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो ओंकार स्वरूप हैं, निष्कल यानी अविभाज्य हैं, अत्यंत निर्मल और जिन्हें मोदक प्रिय है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 316। सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 4। कलाकार हैं डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। प्रस्तुति छाया गांगुली की। सात बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 त्रिवेणी। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गायक जुबिन गर्ग पर। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत सुनिए कहानी रिहाई। लेखिका अलका सिन्हा, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी के, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 11 चित्रपट संगीत। 11:30 पर मैटनी शो। इसके अंतर्गत लेखक और शायर आलोक यादव से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा। संपादक सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान की। दोपहर 1 सुरीला सफर। दो बजे त्रिवेणी। आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 मनचाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आज सुनिए नाटक स्वप्न वासव दत्ता भाग 1। महाकवि भास के संस्कृत नाटक का रेडियो रूपांतरण। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। पिटारा में शाम 4 बॉम्बे टॉकीज। गायिका पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत सुनेगा। इस बातचीत का आज पहला भाग। संपादन सहयोग अंबालिका सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 5 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या रंजन। आपको फिर से याद दिला दे, शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनेगा श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 4। कलाकार हैं डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। शाम 7 विशेष जयमाला कार्यक्रम निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा पर केंद्रित होगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। 8 हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा सुनो कहानी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी गूंगी का पहला भाग। वाचन स्वर शेफाली कपूर का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। 8:15 पर चित्रलोक। 9 कार्यक्रम आपके लिए। नौ बजकर 30 पर आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित

होगा गायक जुबिन गर्ग पर प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। 10 बजे छाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे मेटनी शो। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 316।

राज्यसभा में रावण अंगद के पराक्रम का आभास पा चुका था, फिर भी मंदोदरी की समझावन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह कहती रही, जिन्होंने विराद, खरदूषण और कबंद को अपनी लीला से मार डाला, जिसके एक ही वाण से बाली का वध हो गया, हे स्वामी, आप उनकी महिमा को समझने की चेष्टा कीजिए। उन्होंने आपकी भलाई के लिए ही अपना दूत भेजा था। उसने आकर आपकी सभा में आपके सभी योद्धाओं की वीरता को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे एक सिंह हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है। आप ऐसे शक्तिमान को मनुष्य समझने की भूल कर रहे हैं। आपका मान और मद सब व्यर्थ है। आप काल के वश में हो गए हैं, इसी कारण आपको वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो रहा है। मंदोदरी के अनुनय को अनसुना कर रावण सवेरा होते ही अभिमान पूर्वक सिंहासन पर जा बैठा और एक बार फिर वही हठधर्मिता। इधर सुबेल पर्वत पर अंगद श्रीराम के सम्मुख उपस्थित होते हैं, जो रावण राक्षस कुल का शिरोमणि है और जिसके बल से सारा जगत परिचित है। उसके चार चार मुकुट अंगद ने किस प्रकार यहां तक फेंके? श्रीराम की इस जिज्ञासा के उत्तर में अंगद का निवेदन है, हे सर्वज्ञ, वे चार मुकुट राजा के चार गुणों साम, दान, दंड और भेद के प्रतीक हैं, जिनका राजा के हृदय में निवास होता है। किंतु रावण राजा के धर्म से विचलित हो गया है, अतः वह उसे छोड़ आपकी शरण आ गए।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना भाग 316।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों हम आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। इसे प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। एक बहुत बढ़िया बात याद आई, सुप्रसिद्ध संगीत शास्त्रज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह जी ने कहा कि खड़े स्वर लेना यानी सुरों की पगड़ी उतार लेना है, किंतु मैं तो यह कहूंगा कि खड़े स्वर लेना स्वरों को निर्वस्त्र यानी वस्त्रहीन कर देने के बराबर है। इसलिए श्रुति मूर्छना एवं माधुर्य के परिधान से गायन की प्रस्तुति में शोभा बढ़ती है, यही शिष्टता है जिसे हम अदब कहेंगे। गायन वादन में खेल होना स्तुत्य है, खिलवाड़ नहीं। इसलिए गुरुजनों का सान्निध्य अत्यावश्यक है। संगीत साधना नाद ब्रह्म की उपासना है। हमारे शास्त्रों में भगवान और गुरु का एक स्थान है। जिस प्रकार अलौकिक गुणों से युक्त साकार रूप भगवान को आंख होते हुए भी देखा नहीं जा सकता, क्योंकि साइट नहीं है यानी विजन नहीं है, तो हम उन्हें निराकार कह बैठते हैं। जिस प्रकार हमें अपने प्राण दिखाई नहीं देते, फिर भी हम अपनी संजीदगी सजीवता का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार

स्वर भी दिखाई नहीं देते, किंतु जैसे स्नेह निराकार है किंतु गाय में व माता में निराकार स्नेह से साकार दूध पैदा होता है, जैसे हवा दिखाई नहीं देती किंतु शरीर को लगती जरूर है, बस इसी तरह स्वर भी आत्मस्पर्श करते हैं, छूते हैं। निराकार स्वर ईश्वर की ओर लौ लगा देते हैं, निराकार होते हुए भी अद्भुत साकार सृष्टि करते हैं और आनंद की वृष्टि होने लगती है। अतः स्वर के माध्यम से ईश्वर की उपासना मंगलाचरण है, अर्थात प्रत्येक चरण हमारा मंगल आचरण है। तो सुनिए, राक्षसाना में मैं अपनी ही स्वरचित रचना मधुरपिया के उपनाम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह प्रार्थना यानी हमद है।

संगीत केवल मनुष्य को ही नहीं अपितु प्राणी मात्र जड़ से चेतन तक को अनुप्राणित करता रहा है। इसका सुंदर उदाहरण राग गुजरी टोड़ी की रचना में हम पाते हैं।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। इस श्रृंखला का चौथा भाग अभी आपने संगीत सरिता में सुना। इसे प्रस्तुत किया था प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगत की थी। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। श्री महाकालेश्वर मंदिर के रमणीय आंगन में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे मन के सारे दुख दूर हो गए हों। मन किसी अभूत बालक सा प्रतीत होता है और लगता है अपने पिता की गोद में आ गए हों। इन्हीं पवित्र भावों के साथ आइए सुनते हैं भगवान शिव का यह पावन भजन, जो आपकी सुबह को भक्ति भाव से भर देगा।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का यह महाकाल वंदन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपका दिन मंगलमय हो, इसी भावना के साथ जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर। सुबह 10 से सुनिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश, और 10:30 पर सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ग्यारह बजे से सुनिए विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम, जिसमें आप सबसे पहले सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। दोपहर 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। विविध भारती सुरीला सफर आप सुनेंगे 12:01। दोपहर 2 समय होता है फिल्म संगीत का। 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। नाट्य तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे 3:30 पर। 4 से आप सुनेंगे कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज़।

आकाशवाणी उज्जैन से संध्याकालीन सभा में सुनिए शाम 5 बजे युवा श्रोताओं का अपनी पसंद का कार्यक्रम युववाणी, शाम 6 बजे से सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या, 6:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। अपने केंद्र से आपको चौपाल पर ले चलेंगे शाम 7:21 पर। कार्यक्रम होगा मालवी गीतारी गूंज, जिसमें मालवी समाचारों के साथ आनंद लीजिए मालवी गीतों का। रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा तक। रात 8:15 पर होगा समय फिल्म संगीत का। रात 9:30 पर सुनिए आकाशवाणी के भोपाल के

इंद्र से कार्यक्रम रात 10 बजे सुने कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स कैप्सूल्स 20th एडिशन ऑफ एशियंस गेम 2026। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का उज्जैन

सुबह के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में 7400 से ज्यादा मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी करेंगे वितरित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में किए कार्यों और प्रयासों की सराहना की। और भोपाल, इंदौर, विदिशा, रायसेन समेत कई जिलों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। प्रतिभागी प्रमुख पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, जिनमें नीति निर्माण, कार्यान्वयन और प्रवर्तन में कमियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज

0: शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7400 से अधिक विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण करेंगे। ये स्कूटी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की राह आसान होगी, साथ ही कॉलेज आने जाने वाले में भी सहूलियत रहेगी। राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुबह 9 बजे से होगा। गौरतलब है कि मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से अब तक प्रदेश के 23,000 से अधिक पात्र विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के संचालन पर अब तक लगभग 240 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 में मध्यप्रदेश पवेलियन का भ्रमण कर सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और सेमी कंडक्टर क्षेत्र के विस्तार की संभावनाओं पर उद्योग प्रतिनिधियों से चर्चा की। डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। सेमीकंडक्टर, चिप डिजाइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: मुझे इस बात की प्रसन्नता के मध्यप्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के हम काफी गंभीरता पूर्वक देश के अंदर भी, देश के बाहर भी और अपने राज्य के अंदर भी लगातार जो प्रयास कर रहे हैं सेमीकंडक्टर को लेकर के, हमारे राज्य में भी इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त स्कोप भी है और इस पर हमने काम भी किया है। इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसके आधार पर ये हम इससे जुड़े हुए सभी प्रकार के निवेशकों को मध्यप्रदेश की पॉलिसी के बलबूते पर इन्वेस्टमेंट के लिए मौका भी देंगे और हमारे राज्य का प्रमोशन भी करेंगे।
0: प्रदेश में कुनू राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 शावकों के जन्म के साथ देश में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। ये शावक भारत में जन्मी मादा चीता केजीपी 12 के हैं। ये परियोजना के 4 साल पूरे होने के ठीक एक दिन बाद हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे भारत में चीता संरक्षण के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कुनो और प्रोजेक्ट चीता की टीम को बधाई दी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य ढांचे, चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ सेवाओं और प्रमुख जन स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा भी हुई। श्री नड्डा ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के इस्तेमाल की भी प्रशंसा की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश प्रभारी रवि दांगी ने बताया कि राहुल गांधी दोपहर 2 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम करीब 7 बजे उनका रीजनल पार्क स्थित सभा स्थल पहुंचने का कार्यक्रम है। इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय विकसित भारत एक्सपो 2026 का कल समापन हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा एक्सपो में विकसित भारत का अमृतकाल और सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण के 12 साल विषय पर विशेष चित्र और मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों, युवाओं और आम नागरिकों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और पहलों की जानकारी देने के साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ने का प्रयास किया गया। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजनों को देने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले में आज से संचालित होने वाले नमो सेवा अभियान के तहत 20 स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन होगा। अभियान के तहत 22 सितंबर तक संस्कृति विभाग के माध्यम से श्लोक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान उज्जैन द्वारा जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रदेश में अब तक औसत 33.2 इंच बारिश हो चुकी है, जो कुल कोटि की 89.3% है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मानसूनी सीजन को 11 दिन बाकी शेष बचे हैं। आखिरी सप्ताह में

कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में प्रदेश की बारिश का कोटा पूरा हो सकता है। हालांकि इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के ज्यादातर जिलों में सामान्य बारिश का आंकड़ा कम ही रह सकता है। मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, धार, अलीराजपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत गुना के बरखेड़ा गिर्द में विभिन्न शासकीय संस्थानों का निरीक्षण किया और जन विश्वास शिविर में शामिल होकर आमजन की समस्याएं सुनी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत खंडवा में नगर निगम के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। सेवा संकल्प अभियान के तहत मंदसौर के भानपुरा आईटीआई में उद्यम संवाद आयोजित हुआ। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुरा का औचक निरीक्षण किया। लगातार 36 वर्षों की न्यायिक सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह को जबलपुर हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली हॉल में विदाई दी गई। इस दौरान उन्होंने जीपीएफ में जमा करीब 1,01,00,000 रुपए प्रधानमंत्री केयर्स एंड फंड में दान करने की घोषणा की। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. संजय गोयल ने कल नर्मदापुरम जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सेवा से संकल्प अभियान के तहत कल डिंडौरी के मेहनपानी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत बैतूल जिले में शुरू की गई पीएम मासिक सिकल सेल ओपीडी के माध्यम से सिकल सेल मरीजों की निरंतर स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

यह आकाशवाणी उज्जैन है। सुप्रभात के साथ मैं हूं आपकी अपनी आरजे कृष्णा पंडित। अवंतिका नगरी के समस्त सुधी श्रोताओं को मेरा सहृदय प्रणाम। जय श्री महाकाल और एक पावन प्रभात की अनंत शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज 19 सितंबर 2026 की इस स्वर्णिम सुबह में हम आपके लिए लाए हैं धर्म संस्कृति उज्जैन के नए विकास कार्यों, गणेश उत्सव की छठा, पर्यावरण सुरक्षा और आत्म देखभाल पर विशेष चर्चा और साथ में आपके पसंदीदा सुरीले नगमों का गुलदस्ता। आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद प्रभाती कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन, केवल आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे भारतीय संस्कार और संस्कृति में तुलसी के पौधे और माँ के आंगन का स्थान सर्वोपरि रहा है। सुबह सुबह जब घर के आंगन में तुलसी की पूजा होती है तो पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आइए सुनते हैं फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की यह सुप्रसिद्ध और पावन शीर्षक गीत।

सुरीली धुन के बाद सुप्रभात उज्जैन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अभी आप सुन रहे थे अत्यंत मधुर गीत मैं तुलसी तेरे आंगन की। श्रोताओं, अब बात करते हैं हमारे उज्जैन के खास खबरों की। वक्त हो रहा है हमारे विशेष सेगमेंट समाचार पत्रों से का। आइए नज़र डालते हैं आज सुबह के अखबारों से चुने गए उज्जैन और आसपास के कुछ खास और चुनिंदा सकारात्मक खबरों की तरफ। पहली खबर है, शहर में दूसरी राज्य स्तरीय टेबल टेनिस स्पर्धा शुरू हुई है। उज्जैन जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में लोकमान्य टिलक स्कूल के राजा भाऊ हॉल में द्वितीय राज्य स्तरीय टेबल टेनिस स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि राज्य के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का उज्जैन आकर प्रतिभा दिखाना खुशी की बात है। दूसरी खबर है विक्रम उद्योगपुरी से। विक्रम उद्योगपुरी स्थित जेके लाइफ केयर सेंटर्स की अत्याधुनिक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन आज यानी 19 सितंबर को किया जाएगा। कंपनी के अनुसार इस प्लांट को फार्मा क्षेत्र में देश का आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कासोन में जल प्रदाय पायलट परियोजना का लोकार्पण हुआ। जिले की जनपद पंचायत महितपुर के कासोन ग्राम पंचायत में 24/7 जल प्रदाय की पायलट परियोजना शुरू की गई। जिला प्रशासन और फीडबैक फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से बनी यह व्यवस्था 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी के दिन शुरू हुई। लक्ष्य सुरक्षित और सतत पेयजल उपलब्ध कराना और ऐसा समुदाय प्रबंधित मॉडल तैयार करना है जिसे अन्य गांवों में लागू किया जा सके। साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्कृति के उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाना जरूरी है। संस्कृत ज्ञान विज्ञान की भाषा होने के साथ ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से संस्कृत के प्रति निरंतर समर्पित रहते हुए सीखते रहने का आह्वान किया। अब बात मौसम की। उज्जैन में शुक्रवार की दोपहर तेज धूप ने जहां मौसम में गर्मी बढ़ाई, वहीं देर शाम तेज बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। शाम 6:30 से कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई और जो हर 2 घंटे में रुक रुक कर लगातार चलती रही। तो ये थे आज के हमारे विशेष सेगमेंट समाचार पत्रों से कुछ खास समाचार। साथ ही आपको कुछ और अपडेट्स देना भी चाहेंगे। उज्जैन में आयोजित युवा धर्म संसद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। इस दौरान रामायण काल और आधुनिक तकनीक पर भी चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उज्जैन के महाकाल लोक और शिप्रा नदी के घाटों पर 25 लाख से अधिक दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी खबर को खूब चर्चा मिली है। और उज्जैन के खड़ा हनुमान मंदिर पर प्रतिमा हटाने की कार्यवाही फिलहाल प्रशासन ने टाल दी है। एएसआई और आईआईटी इंदौर के इंजीनियरों की टीम वैज्ञानिक जांच और स्कैनिंग कर रही है। इसी के साथ समाचार पत्रों से का ये विशेष सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गाना।

श्रोताओं, अब बात करते हैं हमारी उज्जैनी के तेजी से बदलते स्वरूप और महाकुंभ यानी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बारे में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिंहस्थ 2028 को भव्य और सुगम बनाने के लिए अभूतपूर्व विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। मोक्षदायिनी माँ शिप्रा के तट पर शनि मंदिर से लेकर नागदा बाईपास तक 29 किलोमीटर लंबा नया रिवर फ्रंट कॉरिडोर और नए घाट का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, ताकि प्रतिदिन आने वाले 2 करोड़ श्रद्धालुओं के पावन स्नान की सुगम व्यवस्था हो सके। इसके साथ ही इंदौर उज्जैनी 4 लेन मार्ग और उज्जैन के नए बाईपास मार्ग का कार्य भी प्रगति पर है। हाल ही में उज्जैन में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दताना मताना के लिए लगभग 590 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जो हमारी बाबा महाकाल के नगरी को वैश्विक हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त हाल ही में शहर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। हमारी अवंतिका एक नए और भव्य रूप में सज रही है। चलिए इस खूबसूरत सुबह को और भी संगीतमय बनाते हैं इस सदाबहार गीत के साथ।

शुभारंभ के बाद से ही पूरी उज्जैनी रिद्धि सिद्धि के दाता की भक्ति में लीन है। हमारे ऐतिहासिक श्री चिंतामण गणेश मंदिर में प्रतिदिन भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, जहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मन्नत पूरी होने पर सीधा व सात्विक बनाकर धन्यवाद देते हैं। शहर के प्रमुख चौराहों, चाहे वह फ्रीगंज हो, ढाबा रोड हो या गोपाल मंदिर का क्षेत्र, हर जगह भव्य और आकर्षक गणेश पंडाल सजाए गए हैं। कहीं पर्यावरण अनुकूल मिट्टी के गणेश जी की स्थापना की गई है, तो कहीं उज्जैन की ऐतिहासिक धरोहरों की झांकियां बनाई गई है। संध्या होते ही महाआरती और सुगम संगीत के भजनों से पूरा शहर गुंजायमान हो उठता है। चलिए इसी पवित्र भावना के साथ अब सुनते हैं ये अगला गीत।

FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन की प्रस्तुति सुप्रभात उज्जैन, आपकी उद्घोषिका कृष्णा पंडित के साथ। संगीत के इस प्यारे ठहराव के बाद अब बात करते हैं आज के हमारे विशेष जागरूकता खंड पर्यावरण सुरक्षा का। श्रोताओं, महाकाल की यह नगरी प्रकृति की अनुपम देन है। जैसे जैसे हम सिंहस्थ 2028 की ओर बढ़ रहे हैं और गणेश विसर्जन का समय निकट आ रहा है, हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम अपनी पवित्र नदी शिप्रा और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। गणेश उत्सव के दौरान पंडालों में केवल इको फ्रेंडली सजावट का प्रयोग करें और सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह दूरी बनाएं। यदि हम अपने घर के आंगन में एक पौधा लगाते हैं और जल संरक्षण का संकल्प लेते हैं तो यही हमारी भावी पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। प्रकृति सुरक्षित

वाह, क्या मधुर धुन थी। श्रोताओं, भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में जब हम अक्सर दूसरों का ख्याल तो रखते हैं पर अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, इसलिए सुप्रभात उज्जैन में आज का हमारा विशेष संदेश है सेल्फ केयर, यानी आत्म देखभाल। आत्म देखभाल कोई स्वार्थ नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की पहली शर्त है। सुबह का समय खुद को दें। दिन के शुरुआत में कम से कम 15 मिनट ध्यान यानी कि मेडिटेशन के साथ करें। सुबह उठते ही फोन देखने की जगह शांत वातावरण में बैठकर चाय की चुस्की लें और अपनों से बातें करें। दिन भर में अपने छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करें और पर्याप्त पानी पिएं। जब आप अंदर से खुश और स्वस्थ रहेंगे तभी आप आसपास सकारात्मकता फैला पाएंगे। आइए इसी भावना और खुशनुमा एहसास के साथ सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

श्रोताओं, संगीत का यह सफ़र अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। जीवन में विश्वास, प्रेम और समर्पण ही वे धागे हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। जैसे उज्जैन की सुबह बाबा महाकाल के भस्मारती के मंत्रों से पावन होती है, वैसे ही हमारे विचार और बोल मीठे होने चाहिए। आइए अब अमर प्रेम की इस अनूठी भावना को समर्पित यह कालजयी गीत सुनते हैं।

और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें आज के इस अंक से विदा लेनी होगी। मुझे यानी आपकी आरजे कृष्णा पंडित को पूरी उम्मीद है कि आज की सुबह आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में नई ऊर्जा लेकर आई होगी। अपने शहर उज्जैन को स्वच्छ रखें, जल बचाएं, पर्यावरण की रक्षा करें और खुद से प्यार करना ना भूलें। अब आपकी साथ रेडियो साथी को दें इजाज़त, सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बोलिए जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है अब समाचार प्रभात। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर की 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
3: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जन सेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
5: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
6: The government is supporting the sector through technology transfers.
7: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
5: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
8: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
7: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
9: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
10: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला 2 उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। 2 न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। श्रोताओं, उज्जैनी आरजे के अंतर्गत आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपकी उद्घोषिका कृष्णा पंडित, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की दो ऐसी हस्तियों के बारे में जिन्होंने अपने अपने अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज किया। कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने रूहानी स्वर और सादगी भरे संगीत से लाखों दिलों को छूने वाले प्रसिद्ध गायक लकी अली की, और आगे चलेंगे तो बात होगी बॉलीवुड की खल्लासगर ईशा कोप्पिकर की, उनके कलात्मक जीवन की यात्रा की भी। तो आइए शुरू करते हैं इस सुरीली यात्रा को और सुनते हैं ये बहुत ही मधुर गीत।

दोस्तों, 19 सितंबर 1958 को मुंबई में जन्मे मकसूद अली, जिन्हें दुनिया लकी अली के नाम से जानती है, का जन्म कोई साधारण परिवार में नहीं हुआ था। वो मशहूर बॉलीवुड कॉमेडियन महमूद अली के दूसरे बेटे हैं। उनकी माँ माह लकी और मौसी महान अभिनेत्री मुइना कुमारी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतने बड़े फिल्मी परिवार से होने के बावजूद लकी अली का बचपन हॉस्टलों में बीता। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी और बिशप कॉटन बॉयज स्कूल बैंगलोर से पूरी की। वे बचपन से ही थोड़े बागी और आज़ाद ख्याल के इंसान थे। आइए सुनते हैं उनकी उसी आज़ाद रूह को बयां करता हुआ उनका ये पहला सुपरहिट गाना।

श्रोताओं, लकी अली का जीवन संघर्ष और अनगिनत अनुभवों से भरा रहा। उन्होंने संगीत के सफरनामे में नाम कमाने से पूर्व अनेक विविध क्षेत्रों में कार्य किया। उन्होंने बेंगलोर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की, कालीन विक्रय का व्यवसाय संभाला, पुडुचेरी में ऑयल रिंग पर काम किया और अश्व पालन का कार्य भी किया। वे अपने पिता की तरह पारंपरिक अभिनय में करियर नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उनकी रुचि संगीत की अमूर्त अभिव्यक्ति में थी। वर्ष 1996 में जब उनकी गैर फिल्मी एल्बम सुनो बाजार में आई, तो उसने भारतीय इंडी पॉप संगीत को एक नया आयाम दिया। इस एल्बम ने उन्हें एक प्रतिष्ठित गायक के रूप में स्थापित कर दिया। आइए सुनते हैं लकी अली की आवाज़ में एक और बेहतरीन संगीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर कार्यक्रम उज्जैनी आरजे, आपकी रेडियो सखी कृष्णा पंडित के साथ। श्रोताओं, लकी अली का व्यक्तिगत जीवन भी उनके संगीत की भांति ही विविधताओं से परिपूर्ण रहा। उन्होंने जीवन में 3 विवाह किए। लकी अली ने न केवल पार्श्व गायन किया बल्कि सुर और कांटे के मूवी में अपने सशक्त अभिनय से भी दर्शकों को प्रभावित किया। उनका गायन सहज, रूहानी और पाश्चात्य भारतीय संगीत का एक अनूठा संगम माना जाता है। चर्चा में आगे भी बने रहेंगे, पर आइए सुनते हैं उससे पहले लकी अली की आवाज़ में एक और खूबसूरत और सदाबहार गीत।

साथियों, लकी अली के उत्कृष्ट योगदान को कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1996 में एल्बम सुनो के लिए उन्हें बेस्ट मेल वोकलिस्ट का स्क्रीन अवार्ड तथा चैनल वी व्यूअर्स चॉइस अवार्ड प्राप्त हुआ। वर्ष 2001 में फिल्म कहो ना प्यार है के प्रसिद्ध गीत ना तुम जानो ना हम के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार से अलंकृत किया गया। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया पर उनके लाइव अनप्लग प्रदर्शनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि समय बीतने के साथ उनकी आवाज़ की मिठास और गहराई आज की युवा पीढ़ी के दिलों को भी उतनी ही गहराई से छूती है। तो आइए सुनते हैं वही पुरस्कार विजेता गीत।

श्रोताओं, लकी अली के जन्मदिवस पर आकाशवाणी उज्जैन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा महाकाल उन्हें स्वस्थ और सुखी जीवन दे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक और ब्लॉकबस्टर ट्रैक जिसने यंग जनरेशन को झूमने पर मजबूर कर दिया था। फिल्म अनजाना अनजानी का ये गीत चलिए आप सभी को सुनवाते हैं।

साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है उज्जैनी आरजे के इस विशेष कार्यक्रम में। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा की बहुमुखी अभिनेत्री और मॉडल ईशा कोप्पिकर के जीवन और फिल्मी सफ़र की, जिन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय और नृत्य शैली से दर्शकों को आकर्षित किया। आइए इस भाग का शुभारंभ करते हैं उनके बहुचर्चित गीत से।

श्रोताओं, ईशा कोप्पिकर का जन्म 19 सितंबर 1976 को मुंबई के एक कोंकणी परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली पढ़ाई मुंबई के मेमोरियल हाई स्कूल से पूरी की। इसके पश्चात उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित रामनारायण रुइया कॉलेज से जीवन विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज अध्ययन के दौरान ही उनका रुझान सौंदर्य प्रतियोगिता और मॉडलिंग की ओर हुआ। वर्ष 1995 में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां उन्हें मिस टैलेंटेड का खिताब मिला। इस उपलब्धि ने उनके लिए भारतीय मनोरंजन उद्योग के द्वार खोल दिए। इसी जानकारी के साथ अब वक्त हो चला है एक संगीतमय ठहराव का, तो आइए सुनते हैं ये अगला गाना।

साथियों, ईशा ने अपने अभिनय करियर का श्री गणेश दक्षिण भारतीय फिल्मों से किया। वर्ष 1998 में प्रदर्शित तमिल फिल्म कादल कविधाई के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागत अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड साउथ से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात हिंदी सिनेमा में रामगोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी के गीत खल्लास ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने पिंजर, दिल का रिश्ता, कयामत, डरना मना है, एक विवाह ऐसा भी, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया और डॉन जैसी कई फिल्मों में गंभीर तथा व्यावसायिक दोनों प्रकार की भूमिकाएं निभाई। आइए सुनते हैं फिल्म एक विवाह ऐसा का भी यह मधुर सा गीत।

श्रोताओं, ईशा कोप्पिकर के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वर्ष 2009 में उनका विवाह व्यवसायी टिमी नारंग से हुआ और वर्ष 2014 में उनकी एक पुत्र रियाना का जन्म हुआ। ईशा केवल एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि ये ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट धारक भी हैं, जो उनके अनुशासन और आत्मरक्षण के प्रति समर्पण को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त वे समाज सेवा और राजनीति में भी सक्रिय रहे। आइए सुनते हैं फिल्म डॉन से ये बेहद ही लोकप्रिय गीत।

श्रोताओं, ईशा कोप्पिकर को उनके अभिनय, नृत्य तथा भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विभिन्न क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय मंचों पर नामांकित और पुरस्कृत किया गया। उन्होंने कला क्षेत्र में अपनी विविध भूमिकाओं से यह सिद्ध किया कि प्रतिभा किसी एक भाषाई सीमा से बंधी नहीं होती। वर्तमान में भी वे OTT प्लेटफॉर्म और क्षेत्रीय फिल्मों के माध्यम से अभिनय जगत में सक्रिय हैं। आइए सुनते हैं उनके फिल्मी सफर का यह सुरीला गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ उज्जैनी आरजे का यह संगीतमय सफ़र यहीं समाप्त होता है। आज हमने गायक लकी अली और अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर के जीवन यात्रा और उनकी कलात्मक योगदान को याद किया। बाबा महाकाल की कृपा इन दोनों ही कलाकारों पर बनी रहे। आशा है आज का यह प्रसारण आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव हमें अवश्य बताएं। अब आपकी रेडियो मित्र कृष्णा पंडित को अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स।

नमस्कार, प्रणाम और महाकाल की नगरी उज्जैन के सभी प्यारे श्रोताओं को आरजे कृष्णा पंडित का बहुत बहुत प्यार भरा जय श्री महाकाल। आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद स्टेशन आकाशवाणी उज्जैन और समय हो गया है आपके सबसे चहेते, सबसे म्यूजिकल और सबसे एनर्जेटिक शो बॉलीवुड बीट्स का। दोस्तों, मौसम हो या दिल का हाल, संगीत ही तो है जो हर लम्हे को बना देता है खास। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन नगमों का सफ़र। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यार के उस एहसास से जो बिना कुछ भी कहे सब कुछ कह जाता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट की फिल्म कपूर एंड सन से यह अरिजीत सिंह और आशीष कौर की सुरीली आवाज़ में यह अगला गाना आप सभी के लिए।

अरे वाह, क्या बात है। बोलना माही बोलना, सच में जब प्यार में शब्द कम पड़ जाएं तो यह गाना दिल की बात कह देता है। वैसे उज्जैन वालों, चोरी तो बहुत तरह की होती है, लेकिन अगर कोई आपका दिल ही चुरा ले तो उसकी शिकायत किस थाने में दर्ज करवाएंगे? सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म दबंग का यह गाना कुछ ऐसा ही है, जो सीधे आपके दिल पर डाका डालता है। तो आइए सुनते हैं।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: चोरी के अरे जिया के बाद अब रुक करते हैं उस एहसास की तरफ जहां इंसान किसी के प्यार में जीना सीख जाता है, पर जब उसके बिना जीने की बात आती है तो वो इस ख्याल से ही घबरा जाता है। जब कोई ज़िंदगी में आता है तो जीने की वजह बदल जाती है। आतिफ असलम की वो रूहानी आवाज़ और फिल्म बदलापुर का वो आइकॉनिक ट्रैक जिसने हर आशिक के दिल को छुआ। आइए सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत सा गीत।

0: हित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड बीट्स एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से। दोस्तों, आंखें भी होती हैं दिल की जुबां। जी हाँ, जब जुबां खामोश होती है तो आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। फिल्म मर्डर का यह ऑल टाइम फेवरेट ट्रैक, जिसमें अरबी और हिंदी का वो खूबसूरत मेल है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। केके की जादुई आवाज़ में आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

तो चलिए अब बात करते हैं सपनों के आशियाने की। जब दो दिल मिलते हैं तो एक अलग ही दुनिया बसाने का सपना देखते हैं, जहां सिर्फ प्यार और ढेर सारी खुशियां। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म लुका छुपी से यह बेहद प्यारा नगमा आप सभी के लिए।

इस बेहद ही खूबसूरत और रोमांटिक गीत के बाद अब बारी है एक और अगले ही खूबसूरत और रोमांटिक गाने की। फिल्म विकी डोनर का यह गाना जब भी बजता है आंखें नम और दिल भारी कर जाता है। आयुष्मान खुराना और रोचिला की आवाज़ में पेश है विकी डोनर का ये बेहद ही खूबसूरत सा रोमांटिक गीत आपकी सुबह को और भी रोमांटिक बनाने के लिए।

तो दोस्तों, मुझे यकीन है आप सब भी अपनी जगह पर झूम उठे होंगे। लेकिन दोस्तों, हर खूबसूरत सफ़र की एक शाम होती है और बॉलीवुड बीट्स के आज के एपिसोड का समापन करने का समय आ गया है। पर जाते जाते एक बेहद खूबसूरत स्पेनिश टच वाला रोमांटिक ट्रैक आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। फिल्म दम मारो दम से सुनिधि चौहान की आवाज़ में यह शानदार गाना सुनिए।

दोस्तों आज का यह संगीतमय सफर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अब दीजिए अपनी होस्ट आरजे कृष्णा पंडित को इजाज़त। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। ट्यून इन रहिए, खुश रहिए।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, आपकी फरमाइश।

नमस्कार। महाकाल की पावन नगरी उज्जैन के सभी स्नेही श्रोताओं को आपकी दोस्त और होस्ट आरजे कृष्णा का बहुत बहुत प्यार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन और वक्त हो चला है आपके और हमारे सबसे पसंदीदा दिलों को जोड़ने वाले खास शो आपकी फरमाइश का। दोस्तों, डिजिटल ज़माने में मैसेज तो पलक झपकते ही पहुँच जाते हैं, लेकिन डाकिया जब कागज़ पर उकेरे हुए जज्बात लेकर आता है तो उस लिफाफे को खोलने की खुशी ही अलग होती है। स्याही से लिखे शब्द, लिफाफे की वो खुशबू और आपकी बेपनाह मोहब्बत, आपके यही खत हमारे स्टूडियो की सबसे खूबसूरत पहचान है। आज फिर हमारे पास डाकिया भैया की लाई हुई ढेर सारी चिट्ठियां मौजूद हैं। किसी ने अपनी गांव की यादें भेजी है, किसी ने अपने खास दोस्त को जन्मदिन की बधाई, तो किसी ने अपनी मोहब्बत का इजहार गीतों के जरिए किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के खोलते हैं आज की पहली चिट्ठी और पूरा करते हैं आपकी फरमाइश के सुहानी संगीत में महफिल का पहला पन्ना। देखते हैं आज का पहला खत किस शहर से आया है और कौन सा नगमा हमारे दिल को छूने वाला है। ये खत हमें भेजा है धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाटे, संदीप बाटे, अमूल्य और वैशाली बाटे।

साथियों, अगला खत हमें भेजा है शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, डॉक्टर अमित, सचिन, समर, राज आर्यन, बेबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा ने। बतरंगी भाटपाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्रमणि वर्मा ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदड़े और आरती जोंदड़े ने। साथ ही गुलबालोद तहसील आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से विक्रम, रचना मालवीय, कमलाबाई, वन देवी, आकाश, महेश्वरी, विनायक और समस्त मालवीय परिवार ने। ग्राम खुपटी तालुका नेवासा से बंडू लोहार, माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास और बंडू पोपलघट। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा देवांगन ने। इनकी फरमाइश पर ये अगला गाना आप सभी के लिए।

साथियों, अगला खत हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल देवांगन ने। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबिये, तन्मय बेबी अनुष्का और राधिका गजबिये ने। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, फरदीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी ने। मानसरोवर जयपुर राजस्थान से प्रतीक्षा, आलोक और शिव दुबे ने। साथ ही दादूदयाल नगर जयपुर से मानवी, प्रियंका, तोशी, हनी, संजना, शुभम, आकांक्षा, मोक्षित और आकाश शर्मा ने। ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु और रेणिका यादव ने। साथ ही लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास, राजा दास और रानी माणिकपुरी ने। इन सभी की फरमाइश का ये अगला गाना चलिए सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी उज्जैन से FM 102.5 मेगा हर्ट्ज पर। साथियों, अब पढ़ते हैं हमारा अगला खत जिसे भेजा है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, भूत कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से दुर्गेश, निर्मला, दीपक, प्रीतम और धनराज मरकाम ने, बहेरी से अंजुम भाई और खालदा बेगम, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, पांजरा बोरी जिला भंडारा महाराष्ट्र से बबन, वैशाली, आरुषि और आस्था राम टेके, साथ ही जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इशरार और नरगिस खातून ने, गांव सीधुवाला सूरतगढ़ राजस्थान से इंद्राज और अंकुश जानी, चंडीगढ़ से सतीश और बिमला अनेजा ने। इन सभी की फरमाइश का ये अगला गाना आइए सुनते हैं।

साथियों, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले खत की तरफ, जिसे भेजा है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू श्रीमाली ने। देवखड़ी से हुकुम कर्माकर, सुनीता कर्मरकर, हार्दिक, प्राची और तनु कर्मरकर ने। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल धनजे, विशाल, शीला और गायत्री धनजे ने। खुर्दी मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा, नीतू वैद्य ने। न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना। तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण, नारायण सिंह, मनकोबाई, निशा, प्रियंका, इशिका, खुशी, ऋषि नारायण और निधि नारायण कुशवाहा ने। साथ ही आकोट से विनायक, श्रीमती मंगला और विजय, शुभम बेंडे, पवन जरिए और संजीव डाबेराव ने। इनकी फरमाइश का ये अगला गाना चलिए सुनते हैं।

साथियों, अब बढ़ते हैं अगले खत की तरफ, जिसे भेजा है चीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना रमाताई दीक्षा रीमा और राहुल डोंगर दीवे ने। बीड शिरूर काशार से महादेव और संगीता पवार। चमनपुरा उदयपुर से नजीम खान सबीहा खानम फरीदा और जब्बार मोहम्मद। वीपीओ परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विनोद कुमार जांगड़ा एसपी कीचड़ परलीका और रामनिवास छीपा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन और अपार ढींगिया। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने। साथ ही ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरून नूर फरियाद हुसैन मुइन तस्लीम अंसारी शकील अहमद इद्रिशा और डीजे प्रधान ने। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल भोला प्रवीण रियांश और प्रतीक वाकतरिया ने। साथ ही बड़ी गेबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय एवं समस्त मालवीय परिवार। आइए इनकी पसंद का ये अगला गाना सुनते हैं।

श्रोताओं, जिन साथियों का खत आज हम समय की पाबंदी की वजह से नहीं पढ़ पाए, बिल्कुल मायूस मत होइएगा। आपके खत हमारे पास सुरक्षित हैं और अगले एपिसोड में आपकी फरमाइश जरूर पूरी की जाएगी। साथियों, क्या आपके दिल में भी छुप कर बैठी है कोई बात, कोई पुराने गाने से जुड़ी कोई खास याद, तो हमें लिखना ना भूलिए। हमारा पता है आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निर्देशक

विद्यापति नगर नालाखेड़ा उज्जैन, पिन कोड है 456010, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन, दीजिए अपनी आरजे कृष्णा पंडित को इजाजत, नमस्कार।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 10:30 होने को है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम प्रगति की बात आकाशवाणी के साथ।

नमस्कार साथियों, फिल्म संगीत के इस विशेष खंड में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं हमारा आज का पहला गाना। श्रोताओं, संगीत हमारी भावनाओं को वो शब्द देता है जो हम कभी खुलकर कह नहीं पाते। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म दिल मांगे मोर से।

श्रोताओं, वादों और हसीन वादियों के इसी धुन के साथ अब समय हो चला है इस सुरेले सफ़र को यहीं विराम देने का। उम्मीद है आपका ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी उद्घोषिका को इजाज़त। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

आपकी कसम इस फिल्म का गीत था किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुर में ढाला राहुल देव बर्मन ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज साहिल उद्यानवी के बोल।

संघर्ष फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी, नगमनिगार शकील बदायूनी, मौसिकार नौशाद। चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जानवर से, आवाजें थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत था शंकर जयकिशन का।

किशोर कुमार का गाया ये गीत आप सुन रहे हैं। तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आनंद बख्शी की रचना है, फिल्म है महबूब की मेहंदी। और यही है श्रोताओं आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: मैटिनी शो। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं शायर और लेखक आलोक यादव से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और मैटिनी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शायर आलोक यादव जी, जो भारतीय भविष्य निधि संगठन से भी जुड़े हुए हैं और एक ऊंचे ओहदे पर हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं इस विविध भारती के स्टूडियो में आपके पास हूँ।
1: जी आलोक जी, मुझे लगता है कि एक शायर का सबसे बड़ा परिचय उसकी शायरी होती है, तो सबसे पहले आपके दो चार शेर सुनते हैं, फिर बातें करते हैं।
2: बिल्कुल
1: इरशाद।
2: एक शेर से शुरुआत करता हूं मैं अपने, कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा।
1: वाह, नई नस्लों के हाथों में भी
2: ताबिंदा, नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह, बहुत शानदार।
2: किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में,
1: दश्ते जुनू में,
2: किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोसारों पे पाइंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह, कोसारों पर पाइंदा रहेगा, क्या बात है, शानदार है।
2: गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, अच्छा गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है
2: जी। एक दो शेर और एक गजल के, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे।
1: वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
2: जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पिटा ले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह, बड़ी बात है।
2: अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे।
1: वाह अच्छा है, बहुत अच्छा है।
2: शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में,
1: जी
2: शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह,
2: कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी,
1: जी
2: कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में ना हमसे सांप पाले जाएंगे।
1: वाह, आस्तीनों में ना हमसे सांप पाले जाएंगे, क्या बात है।
2: दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या,
1: तो दर्द क्या,
2: दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया,
1: जी
2: प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। मुझे ये बताएं, इतने प्यारे शेर आपने कहे, और गजलों की दुनिया जो है वो एक बहुत ही लोकप्रिय दुनिया है, पर ये रास्ता आसान नहीं है, तो गजलों के रास्ते पर आपने कब चलना शुरू किया था?
2: जी दरअसल मैं कविता लिखने लगा था जब स्कूल में था मैं,
1: जी
2: उसके बाद जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मैंने कविता के साथ कहानी भी लिखी कुछ, जो उस दौर के सबसे लोकप्रिय अखबारों में छपी और आकाशवाणी से प्रसारित भी हुई। शायरी की तरफ और गजल की तरफ मेरा बहुत रुझान था, लेकिन कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था। इतना मुझे पता था कि गजल का एक उरूज होता है और उस उरूज को समझना बहुत जरूरी है गजल कहने से पहले। 1993 एक ऐसा साल था जहां मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि मैंने कविता लिखना और कहानी लिखना, मतलब लेखन का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया और सिविल सर्विसेज की तैयारी, और उसी में पूरी तरह से डूब के रह गया मैं।
1: इससे पहले आप क्या कर रहे थे?
2: इससे पहले मैं बीएससी और एमबीए किया मैंने।
1: तो ये जो बीएससी है ये तो विज्ञान की पढ़ाई हुई
2: जी,
1: फिर अचानक एमबीए की तरफ घूम गए आप?
2: एमबीए चूंकि एक प्रोफेशनल कोर्स था और उस दौर में बहुत कम लोग एमबीए करते थे, मुझे इसके बारे में पता लगा और मेरा रुझान था, मैंने एमबीए किया उस समय।
1: तो उसके बाद पेशेवर दुनिया की ओर नहीं गए?
2: बिल्कुल गया मैं, मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया, लेकिन शुरू से लगन ये थी कि सिविल सर्विसेज करना है, तो हमेशा से था कि तैयारी करनी है।
1: तो ब्रेक लिया?
2: ब्रेक लिया मैंने जॉब से, और ब्रेक लेके फिर मैंने तैयारी शुरू करी।
1: कितने बरस तैयारी की?
2: बहुत साल तैयारी की मैंने 93 से लेके 98 बैच में मैं इसमें आया।
1: ओहो जी, तो कुछ नाकाम अटेम्प्ट्स थे या क्या?
2: बिल्कुल नाकाम अटेम्प्ट्स थे, बहुत सारे नाकाम अटेम्प्ट रहे।
1: जी जी
2: यूपीएससी आसानी से घुसने नहीं देता।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कठिन राह है
2: जी,
1: है ना, वो आग का दरिया है।
2: बिल्कुल।
1: तो इस दौरान जब आप यूपीएससी की पढ़ाई में मुब्तिला थे, क्या कलम मचलती नहीं थी लिखने के लिए?
2: हाँ, बहुत, बेशक ऐसा होता था, कई दौर ऐसे आए, कई समय ऐसे आए कि लगा कि कुछ लिखना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले इस मकसद को हासिल कर लिया जाए, ये पूरा कर लिया जाए, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन उसके बाद भी काफी समय लग गया।
1: अच्छा।
2: और मैंने दोबारा जो लिखना शुरू किया है वो 2012-13 में फिर से लिखना शुरू किया।
1: आपने बताया कि ये जो नाकाम अटेम्प्ट्स थे और एक जदोजहद का सिलसिला समझ में आता है
2: जी,
1: बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें सुन रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करे होंगे, क्योंकि पूरा सिनेरियो होता है, एक हॉस्टल या एक किराए का कमरा, एक ट्रांजिस्टर,
2: बिल्कुल
1: एक टेबल,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये सिलसिला जिससे आप भी बाकायदा वाकिफ होंगे, वहां रेडियो जो है एक बहुत बड़ा साथी होता है,
2: बहुत बड़ा।
1: और आप एक कामयाब यूपीएससीएन हैं
2: जी,
1: तो क्या सलाह, एक एक जो ज्ञान का तत्व निचोड़ क्या देंगे आप अपने अनुभव का, ताकि उनको थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी रोशनी मिले?
2: देखिए, किसी भी खासतौर से यूपीएससी की परीक्षा के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और समय देना पड़ता है, ये लड़ाई लंबी है।
1: आशा और निराशा के बीच जिस तरह का तनाव का सिलसिला है, उससे कैसे निपटें ये बच्चे?
2: उससे निपटने के लिए आपको कोई अच्छा शौक रखना चाहिए, चाहे वो गेम्स का हो, चाहे वो शायरी का हो, चाहे पढ़ने का हो। मैंने लिखना जरूर छोड़ा, बट पढ़ना नहीं छोड़ा था मैंने। और यूपीएससी में भी मेरा एक सब्जेक्ट था, वो हिंदी लिटरेचर था।
1: ओके
2: जी,
1: तो ये बड़ा कठिन,
2: हिंदी लिटरेचर मेरा ग्रेजुएशन में नहीं था।
1: हाँ, तो ये कठिन सिलसिला चुना था आपने
2: जी,
1: है ना, क्योंकि अमूमन लोग जो है
2: पॉपुलर था मेरे लिए
1: जी। यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाने वाला दिन और उसकी कैफियत बताएं।
2: एक बहुत खूबसूरत दिन था वो, और ये लगा कि जो सपना था वो मैंने, मेरा साकार हुआ, तो खुशी बहुत थी, आंखों में आंसू थे।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस निकाल के फिर इंटरव्यू, कई लोग तो मेंस पे अटक जाते हैं, इंटरव्यू में निकल जाते हैं, छन जाते हैं, तो ये बड़ा ही चांद को छू लेने जैसा।
2: और इस दौरान मैं फिर एक बार कहूंगा कि आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव तो बहुत पुराना, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान मैंने युववाणी ज्वाइन किया। जब मैं तैयारी कर रहा था उस दौरान भी आकाशवाणी को मैं जरूर सुनता था, रेडियो को जरूर सुनता था, मेरा एक छोटा ट्रांजिस्टर था और उस ट्रांजिस्टर पे गाने जब बजते थे तो मन बिल्कुल खुश हो जाता था।
1: बिल्कुल, वो एक
2: तरोताजगी मिल जाती थी
1: जी। एक नई जिंदगी होती है जिम्मेदारियों के साथ एक प्रशासनिक अधिकारी की
2: जी।
1: मैं समझ पाया जब आपने कहा कि थोड़ा वक्त लगा वापस लिखना शुरू करने में, तो वो जो शुरुआती साल थे वो कितने उबड़ खाबड़ थे?
2: आप दूसरे दौर की बात कर रहे हैं?
1: बिल्कुल
2: जी। तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि शायरी की तरफ मेरा रुझान था और एक जबरदस्त आकर्षण था गजल के प्रति, तो मैंने फिर तलाश करना शुरू किया कि कोई मुझे इस फन को सिखा दे। और उस समय मेरी मुलाकात हुई अखिल नुमानी साहब से, क्योंकि बहुत बड़े शायर हैं और बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे सिखाना कबूल किया।
1: और ये तो गजलों की बहुत पुरानी उर्दू शायरी की परंपरा है कि आपके उस्ताद
2: हो
1: जिनसे आप मश्क करें कि भाई।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: सिलसिला
2: जी। तो उन्होंने मुझे इसका अरूज सिखाया और फिर हाथ पकड़ के चलना सिखाया। इसके साथ साथ एक वहाँ बरेली में सरदार जिया साहब थे, उन्होंने भी मेरी तरबियत की और मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सिखाया। और उनके रहते हुए ही मेरा पहला जो संग्रह था उसी के नाम 2016 में आया
1: जी। जी, कितनी सुंदर बात होती है अपनी किताब अपने हाथों में आना
2: जी। बेशक।
1: तो वो दिन कैसा था जब किताब पब्लिश होके उसकी प्रतियां आपके पास आ गई?
2: जी, इसकी भी एक कहानी है कि मैं चाहता नहीं था कि मैं किताब अभी लाऊं। मेरे अंदर यह था कि पहले अच्छी गजलें और कहूं और जब एक जखीरा तैयार हो जाए तब इत्मीनान से सोच के लाऊं कि उसमें अच्छी गजल जाएं। लेकिन हमारे उस्ताद का भी कहना था और हमारे जो दूसरे उस्ताद थे सरदार जैसा, वो काफी चाहते थे कि पहली किताब आ जाए। तो हम इस किताब को लेके आए और जब ये किताब मेरे हाथ में आई तो ऐसा लगा जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ।
1: वाह, बढ़िया।
2: मैंने अपनी किताब में लिखा है कि किसी शायर या किसी लेखक की पुस्तक का प्रकाशन जो है उसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि उस

0: को एक नया रूप मिलता है, समाज के सामने उसका एक नया रूप आता है।
1: बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। तब तक क्या आपने मुशायरों में पढ़ना शुरू कर दिया था?
0: नहीं, छोटी नशस्तों में पढ़ना शुरू किया था मैंने।
1: जी, ये जो सिलसिला होता है महफिलों में पढ़ने का,
0: जी,
1: इसके लिए एक अलग तरह का हुनर और एक अलग तरह की हिम्मत चाहिए।
0: बेशक।
1: तो उस रास्ते पर जब आप चल पड़े तो उसके तजुर्बात हमारे साथ शेयर करिए।
0: शुरुआत दौर में बहुत मुश्किल होती है कि आप मंच पे खड़े होके माइक पर जब पढ़ते हैं तो खासतौर से गजल पढ़ते हुए लगता है कि कहीं कोई लफ्जिश ना हो जाए और कहीं जरा सा चूके और लोगों ने आपको खारिज करना शुरू कर दिया। तो उस सबसे बचने के लिए एक तनाव दिमाग में रहता था, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो ओवरकम किया मैंने और फिर प्रस्तुतियों में भी अपने कुछ निखार आया, थोड़ा बेहतर हुआ जैसा लोग बताते हैं। मुझे तो आज भी लगता है कि मैं अभी सीख रहा हूं और अभी बहुत सारा रास्ता मुझे तय करना है।
1: अब मुझे ये बताएं कि जब आप अब पढ़ते हैं और आपके चारों तरफ कुछ जाने माने शायर मौजूद होते हैं जो बरसों बरस से पढ़ रहे हैं और शायरे में मौजूद हैं, जिनको आप पहले सुना करते थे,
0: जी,
1: तब दिल में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ, तब भी दिल में ये चलता है कि कुछ मैं गलत ना बोल जाऊं, कुछ गलत कह ना जाऊं, और ये भी इच्छा रहती है कि वो मेरे शेर को गौर से सुने और अगर अच्छे हों तो उस पर दाद दें।
1: इस तरह के अनुभव होंगे, वो हमारे साथ बांटिए।
0: कई बार ऐसा हुआ, जैसे फरत एहसास साहब हैं, उन्होंने मेरे एक शेर की तारीफ की जो मेरा दूसरा संग्रह है कलम जिंदा रहेगा, उस पर उन्होंने लिखा भी था और मुशायरे में भी उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग वो अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा एक शेर था जिसको उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा कि बिल्कुल सही इसमें इस्तेमाल हुआ। वो शेर था कि मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब,
1: ओहो,
0: मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा।
1: वाह, अच्छा है, अच्छा है। तो इस शेर की फरत एहसास साहब ने तारीफ की और बजाय इसके कि वो अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल गजलों में अच्छा नहीं मानते। आधुनिक गजल अपने, ये कहना चाहिए कि जो पारंपरिक ढांचा है उससे बहुत आगे निकल गई है और वो अपने समय और समाज की बात कर रही है।
0: जी,
1: आप किस तरह से अपने शेरों में अपने समय और समाज की बातों को पिरोते हैं?
0: देखिए, मैं तो जहाँ पे रहता हूँ और मेरे जो एहसासात हैं वहीं से निकल के आते हैं, चाहे वो मेरा दफ्तर हो, चाहे वो लोग हों जिनको मैं सर्व करता हूँ। तो जैसे मैंने एक शेर कहा कि तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ।
1: वाह, कितनी प्यारी लाइन है।
0: तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ।
1: हाँ।
0: बेकार खुशामद में ना यूं वक्त गंवाओ।
1: वाह, ये तो सीधी सीधी बात हो गई है।
0: ये सीधी सीधी बात हो
1: ये मतलब है। आपने अपने दफ्तर के लिए कहा है।
0: जी जी जी। ऐसे ही मेरी गजल है, मैं चाहूंगा कि दो चार शेर आपको पेश करूं, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे कहां से
1: जी
0: अपने विषय उठाता हूं।
1: जी, इरशाद।
0: तो ये है कि लोग कहते हैं कि जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं
1: जी,
0: उनके लिए कहा जाता है कि सूप बोले तो बोले चल नहीं बोले, जिसमें 72।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हमारी उत्तर प्रदेश में हिंदी बेल्ट में
1: बहुत मशहूर
0: कहावत है। जी, तो मैंने कहा कि सूप छलनी से भी बढ़कर निकले,
1: सूप छलनी से भी
0: बढ़कर निकले, छह दिन में भी 72 निकले।
1: ओ, उल्टी बात कही है।
0: उल्टी बात है।
1: जी,
0: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले, जिनको हम सूप समझ रहे हैं
1: जी,
0: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले, छह दिन में भी 72 निकले, दफ्तरों में ना मिला एक इंसान।
1: वाह,
0: दफ्तरों में ना मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले।
1: क्या शानदार है, क्या खूबसूरत। वाह,
0: दफ्तरों में ना मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले, और धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है,
1: क्षितिज ओझल है,
0: धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है, तेरी यादों के हैं लश्कर निकले।
1: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वो सिलसिला है जहां आप अपने समय और समाज को अपने अशार में पिरोते हुए चलते हैं। पहली किताब से कुछ चीजें हमें सुनाइए प्लीज।
0: जरूर, एक गजल के शेर सुनिए कि अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं।
1: क्या बात है, वाह।
0: अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, आ भी जाओ राम मैं मारी छोना चाहता हूं।
1: वाह,
0: थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं।
1: वाह,
0: थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं, एक कांधा करता मौला की रोना चाहता हूं।
1: वाह,
0: तुम की पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो, तुम के पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो, कब तुम्हारी राह की दीवार होना चाहता हूं।
1: बढ़िया है।
0: आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का, आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का,

0: अश्क से मजलूम के उसको भिगोना चाहता हूं।
1: वाह,
0: जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे,
1: औजार देखे,
0: जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूं।
1: सुंदर, बहुत बढ़िया।
0: और है कलम तलवार से भी तेज तरह लोग तो फिर, है कलम तलवार से भी तेज तरह लोग तो फिर, मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूं।
1: वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये पहली किताब से आपने एक गजल पढ़ी है?
0: जी जी, एक गजल है जो तत्सम शब्दावली के साथ में है हिंदी की।
1: जी जी,
0: मैं चाहता हूं उसको भी पेश करूं आपके सामने। के पढ़ रहा हूं वेदना का व्याकरण मैं,
1: वेदना का व्याकरण
0: पढ़ रहा हूं, वेदना का व्याकरण मैं हूं समर में आज भी ये रे क्षण में।
1: वाह,
0: सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो,
1: जी
0: सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो, नोच फेंकूं वो मुखौटे आवरण में।
1: क्या बात है।
0: रच रहा हूं आज मैं कोई गजल फिर, रच रहा हूं।

0: शक्ति का हूं पुंज एटम बम सरीखा, देखने में लग रहा हूं एक कण में।
1: वाह बहुत अच्छा है।
0: है मेरी पहचान है अस्तित्व मेरा, है मेरी पहचान है अस्तित्व मेरा, कर नहीं सकता किसी का परिक्रमण में।
1: क्या बात है।
0: ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, व्योम का हूं तत्व धरती का लवण में।
1: वाह वाह, इसमें पूरी साइंस वाइंस आ गई है।
0: इसमें तीन धर्मों के बारे में आ गया।
1: देखिए दर्शन तो आया पर मैंने साइंस भी देखी कि हाँ प्रॉपरली साइंस आई है इस गजल।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, व्योम का हूं तत्व धरती का लवण में। और एक दो गजल के शेर कुछ और पढ़ देता हूं मैं आपके सामने के। बिन बात अगर रूठ वो जाए तो करूं क्या
1: जी,
0: बिन बात अगर रूठ वो जाए तो करूं क्या, और वजह भी कोई ना बताए तो करूं क्या।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: सब देखने वालों की निगाहों में जलन है, सब देखने वालों की निगाहों में जलन है, वो मुझसे जो नजरें ना हटाएं तो करूं क्या? क्यों गैरों के आगे मैं कभी हाथ पसारूं, क्यों गैरों के आगे मैं कभी हाथ पसारूं, और यार भी एहसान जताएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, वाह।
0: होगा यही बढ़ जाएगी एक और शिकायत, होगा यही बढ़ जाएगी एक और शिकायत, वादा भी करें और ना आए तो करूं क्या।
1: वाह।
0: मुस्कान पे मैं जिनकी हूं आलोक फिदा वो, मुस्कान पे मैं जिनकी हूं आलोक फिदा वो, हर बात मेरी हंस के उड़ाएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा। मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कर्मचारी भविष्य निधि से है, ये संगठन कितना मायने रखता है और आज आपके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं?
0: जी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य की चिंता करता है, उनके पीएफ के माध्यम से, उनकी पेंशन के माध्यम से, और एक ईडीएलआई नाम की एक इंश्योरेंस स्कीम है उसके माध्यम से। इस समय 7 करोड़ के आसपास हमारे सदस्य हैं जो लाइव जो सब्सक्राइबर हैं जिनका कंट्रीब्यूशन आता है।
1: जी जी, बहुत बड़ी तादाद है।
0: बहुत बड़ी तादाद है और इनकी पेंशन और इनके पीएफ की व्यवस्था हम लोग करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक खासतौर से मैं अपनी सर्विस के बारे में कहूंगा कि हमको दोनों मौके फराहम होते हैं कि हम स्टेट की जो पावर है वो भी रखते हैं और साथ में एक रेगुलेटर की तरह भी काम करते हैं, साथ में हम जो है एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम करोड़ों जो कर्मचारी हैं जो देश के निर्माण में लगे हुए हैं
1: उनकी बेहतरी,
0: उनकी सेवा कर रहे हैं।
1: जी, एक बहुत बड़ा संगठन और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो अपने काम के बीच में लिखने का वक्त कैसे निकलता है?
0: देखिए, इसीलिए शायद मैंने शायरी को चुना
1: जी,
0: क्योंकि शायरी ये मुझे ये सुविधा देती है, ये सहूलत देती है कि मैं एक शेर कभी भी कह सकता हूँ और उसको नोट कर सकता हूँ या दिमाग में रख सकता हूँ। दिमाग से तो निकल जाता है तो अक्सर वो स्लिप में लिख लिया, जो दिमाग में रहता है वो अक्सर निकल जाता है। तो कई बार होता है काम करते करते भी कुछ ऐसे एहसास आते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं कि उनसे एक शेर का जन्म होता है, वो शेर उस समय लिख लिया जाता है, उसके बाद जब कभी मौका आता है तो उसमें आगे के शेर कहे जाते हैं।
1: क्या बढ़िया बात है, अपनी किताबों के बारे में बताइए।
0: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि उसी के नाम मेरा पहला संग्रह था जो 2016 में लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से आया था।
1: जी जी,
0: उसके बाद 2022 में कलम जिंदा रहेगा मेरा संग्रह था दूसरा
1: जी,
0: जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ।
1: जो
0: पहला संग्रह था उसी के नाम, वो उर्दू में भी आया, उर्दू स्क्रिप्ट में भी आया नश्तालिक में, उसे अर्शिया पब्लिकेशन दिल्ली ने पब्लिश किया था। और तीसरा संग्रह जो है वो लफ्ज चारागरी भी करते हैं के नाम से, इनफैक्ट ये संग्रह मैंने नहीं किया था बल्कि बहुत मशहूर लेखक शायर हैं कवि हैं ओम निश्चल जी।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत अच्छे लेखक आलोचक हैं। उन्होंने एक सीरीज निकाली है सर्वभाषा प्रकाशन नई दिल्ली से, उसमें दौरे हाजिर के जितने भी अच्छे शायर हैं उन सब पे एक एक किताब निकाली उन्होंने। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे भी इस सीरीज में
1: शामिल किया, इस सिलसिले में उन्होंने चुना आपको
0: जी।
1: तो इसमें से कुछ सुनाइए प्लीज।
0: हाँ, लफ्ज चारागरी भी करते हैं ये इस जो संग्रह है उसका टाइटल है। मैं आपको एक गजल सुनाता हूं कि मौसम के बदलाव दिखाऊं
1: जी,
0: मौसम के बदलाव दिखाऊं तुम आओ तो घाव दिखाऊं।
1: वाह वाह,
0: मौसम के बदलाव दिखाऊं तुम आओ तो घाव दिखाऊं, जहरीले लहजों में उलझे, जहरीले लहजों

0: में उलझे रिश्तों के उलझाव दिखाऊं।
1: वाह,
0: बस्ती भर में सन्नाटा है, बस्ती भर में सन्नाटा है, देखोगे तुम आओ दिखाऊं।
1: वाह,
0: बस्ती भर में सन्नाटा है, देखोगे तुम आओ दिखाऊं। घर का आंगन सिमट गया है, घर का आंगन सिमट गया है, रिश्तों का बिखराव दिखाऊं।
1: वाह वाह,
0: देखो तो बंजर बस्ती में, देखो तो बंजर बस्ती में हिजरत का फैलाव दिखाऊं।
1: वाह वाह वाह,
0: आलोक अब आवाज ना आहट, आलोक अब आवाज ना आहट, किसको दिल के घाव दिखाऊं।
1: बढ़िया है, बहुत अच्छा।
0: आलोक अब आवाज ना आहट, किसको दिल के घाव दिखाऊं। ये गजल और है कि फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी।
1: जी,
0: फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी जब परिंदों के बिलगने की सदा आई थी।
1: वाह,
0: इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं,
1: रूह पे भी छाले हैं,
0: इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं, मैंने एक बार तेरी झूठी कसम खाई थी।
1: वाह वाह वाह,
0: इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं, मैंने एक बार तेरी झूठी कसम खाई थी, बन के जंजीर मेरे पांव में वो रहती है, बन के जंजीर मेरे पांव में वो रहती है, मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी।
1: वाह वाह,
0: बन के जंजीर मेरे पांव में वो रहती है, मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनके तन्हाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनके तन्हाई थी, मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी।
1: क्या बात है, वाह,
0: उम्र भर सिर्फ वही रौनके तन्हाई थी, मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, वो दबे पांव बराबर से गुजर जाता है।
1: जी,
0: वो दबे पांव बराबर से गुजर जाता है, गो कि उससे मेरी बरसों की शनासाई
1: थी। क्या बात है,
0: वक्त बदल जाते हैं।
1: आहा, प्यारी लाइन।
0: वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
1: वाह, क्या बात है, कितने अच्छे अशआर आपने सुनाए। आलोक जी, इतनी सारी बातें हुई, आपकी पसंद के एक गाने की बारी है चलते चलते, तो बताइए कि इस प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
0: मैं पल दो पल का शायर हूँ।
1: वाह, साहिर लुधियानवी फिल्म का नाम है कभी कभी, खयाम साहब का संगीत इस गाने में सुनते हैं।

0: आलोक जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपकी रचनात्मक की यात्रा के बारे में हमने जाना और आपके अशार भी सुने। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और मेरी खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि आज मेरा एक स्वप्न पूरा हुआ कि मैंने विविध भारती का स्टूडियो देखा, विविध भारती का ऑफिस देखा, जिस विविध भारती को मैं बचपन से सुनता आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: शुक्रिया।
2: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शायर और लेखक आलोक यादव से यूनुस खान की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी।

0: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी।

0: भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की पर्यावरण न्यायाधिकरणों नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया। अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर, शबीर कुमार की आवाज़ इन फिल्म प्यार झुकता नहीं। एसएच बिहारी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ।

0: एसएच बिहारी का लिखा गीत था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आप सुन रहे थे प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत।
1: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
2: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: कदील चिफाई की रचना आपने सुनी, उत्तम सिंह जगदीश की तर्ज थी, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजें और पेंटर बाबू फिल्म का ये गीत आपने सुना।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक विलक्षण गायक।
4: अरे ओरे हे।
3: संगीत के साधक।
4: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
3: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बाया हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अनजान की रचना आपने सुनी है, चित्रगुप्त का संगीत था, आशा भोसले की आवाज, फिल्म थी बलम परदेसिया।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की,
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुहाग। फिल्म का गीत आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। यादों की महफिल, ये प्रोग्राम श्रोताओं संपन्न हुआ।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिंदगी में कश्मकश या उलझनों का भी गजब समा होता है श्रोताओं। समझ नहीं आता कि जिंदगी में कश्मकश है या कश्मकश का ही ताना बाना है जिंदगी। कभी मोहब्बत, कभी किसी दो बातों को लेकर, दो चीजों को लेकर, या फिर कहीं घूमने जाने को लेकर, या फिर कभी शादी ब्याह को लेकर कश्मकश तो रहती ही है। एक सुलझाया तो दूसरी उलझ गई। ऐसे में करना क्या चाहिए? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि छोड़ो, चलो कहीं घूमने निकल लेते हैं, और कभी ऐसा भी लगता है कि चलो आज रेडियो पर गीतों का आनंद लेते हैं। तो विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर है

आपके रेडियो सेट पर श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है। हमारे नए श्रोताओं का भी अपने फेसबुक पेज पर तो हमने आज की इबारत लिखी ही है, डाली ही है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ा भी है। अपने और भी श्रोताओं के लिए, रेडियो श्रोताओं के लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। जिंदगी में कश्मकश अक्सर दिल की राहों से होकर गुजरती है, कभी चाहतों में उलझते हैं ये दिन ये रात, कुछ एहसान उन आंखों का। ये कश्मकश के खूबसूरत सिलसिले कभी गम की दवा, कभी रंग में बिखरते नूर की तरह नजर आते हैं और सही गलत के दो राहे पर ला खड़ा करते हैं। शोख फूलों की मोहब्बत का एहसास तो कभी चंदन की खुशबू को छूने की चाहत भी मन में हलचल मचाती है और अक्सर उलझन में डाल देती है। ये उलझनें रूप तो बदलती हैं थोड़ा तड़पाकर, लेकिन संघर्ष के कुछ न कुछ मायने तो सिखा जाती हैं। ये कश्मकश की रातें कट भी जाती हैं और जिंदगी में नई मंजिलें, नया सवेरा होता है। तो कश्मकश को लेकर आज आपको हमारी जो ये इबारत है वो पढ़नी भी है और हमें कमेंट्स और अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजनी है। लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़िए हमारे सुरीला सफर कार्यक्रम से। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

तर्ज आपको बतानी है श्रोताओं। शकील बदायूनी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में संघर्ष फिल्म से। वैजंतीमाला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये नगमा था। अगले गीत में आपको बताना है कि संगीत किसका है और इस गीत में भी यही आपको बताना है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कभी कभी जिंदगी की कश्मकश हमें उलझाती जरूर है मगर यही उलझने हमें अपने दिल की आवाज सुनना भी सिखाती हैं। कुछ चाहतें अधूरी रह जाती हैं, कुछ आंखें बिना कहे बहुत कुछ कह जाती हैं और कुछ रास्ते तड़पा कर भी हमें नई मंजिल तक ले जाते हैं। शायद हर कश्मकश के पीछे कोई सीख और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा छुपा होता है। आज की इबारत भी जैसे दिल से यही कह रही है, उलझिए नहीं बस चलते रहिए, रास्ते खुद अपनी मंजिल बता देंगे। एक और श्रोता लिखते हैं, दिलों की राहें भी अनोखी इम्तहान लेती हैं, कभी मृदुल सफलता तो कभी कसहली कड़वाहट से भरी कश्मकश भंवर में उलझ इंसान स्वयं एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है और स्वयं को ढूंढता है। नूर के लिए तरसती निगाहों में उसे मंजिल भी एक मरीचिका सी प्रतीत होती है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज जो शब्द हैं कश्मकश, मोहब्बत, उलझन, जिंदगी, संघर्ष, रात, इन शब्दों पर आधारित गीत सुनने को मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की कश्मकश दिल की राहों से होकर गुजरती है, कभी चाहतों में उलझती है, ये दिन ये रात कुछ एहसास दिला जाते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है, अक्सर मेरा मन कहता है, अक्सर कोई लड़का, इस हाल में एहसान होगा तेरा मुझ पर, एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों। यानी कश्मकश को लेकर जो भी कुछ गीत इनके जहन में आए हैं वो इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की इस खूबसूरत कश्मकश दिल की राहों, चाहतों और सही गलत के दो राहों को बयां करता एक बेहद गहरा फिल्मी गीत जो है वो इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जिंदगी की ये उलझने और जज्बात ही इंसान को भीतर से मजबूत और संवेदनशील बनाते हैं। जीवन के अनकहे एहसास, दिल की कश्मकश, दिल हमेशा किसी न किसी में उलझ कर सही राह तलाशता है। कभी कभी आंखें खामोश रहकर भी एहसान और दर्द बयां करती हैं, चाहतों, उम्मीदों और ख्वाहिशें ही इस सफर को खूबसूरत और जिंदा रखती हैं। आप अगर कलाकार भी बता दें तो क्या ही अच्छा है।

0: सुनील दत्त और वैजयंतीमाला पर फिल्माया गया आम्रपाली फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत में तर्ज थी शंकर जयकिशन की, और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था तर्ज थी नौशाद की। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक दिया है। एक श्रोता लिखती है कि जीवन में जब दुविधा, मानसिक तनाव या खींचातानी होती है तब समझ में नहीं आता क्या करें। उलझन को सुलझाने में भले ही देर हो सकती है, लेकिन भगवान के घर सदा के लिए अंधेरा कभी नहीं होता। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, इस गीत को इन्होंने पसंद किया है। और कश्मकश को लेकर या कश्मकश के बाद जो मंजिलें मिलती हैं उसके उजालों को लेकर बहुत सारे गीत हमारे श्रोताओं ने भी सुझाए हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात तो बताइए श्रोताओं कि जब किसी अजनबी से पहली बार बात होती है तो बड़ी कश्मकश होती है, ऐसा कोई वाकया अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं कि कभी आपको किसी से बात करने में कोई कश्मकश हुई, कोई उलझन हुई, लेकिन वो बातें इतनी प्यारी थी कि वो भी इतनी याद आई कि वो भी एक कश्मकश का कारण बन गई। और एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि दोस्ती और प्यार, इन दोनों के बीच अक्सर कश्मकश चलती है, किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे। एक श्रोता लिखती है कि नई मंजिल पाने के लिए कश्मकश भरी जिंदगी में कई राहों को पार करना पड़ता है। दो प्रेमियों का मिलन वो खूबसूरत पल मन में उलझन में भी डाल देता है मन को, पर उस मीठे एहसास को पाने के लिए मन में हलचल मचा देती है और आत्मविश्वास जागरूकता है। एक न एक दिन नई मंजिल मिलेगी, नया सवेरा होगा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मोहब्बत, कश्मकश, उलझन, जिंदगी, संघर्ष, नूर, रंग, आंखें, आंसू, ये सारे शब्द हैं तो इनसे गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी में जो भी कश्मकश होती है वो सीधे तौर पर दिल की राहों से ही होकर गुजरती है, चाहत या तृष्णा ही इस कश्मकश का मूल कारण है। दिन रात इन्हीं चाहतों में उलझे रहना माया का प्रभाव माना जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर उलझन दुख का कारण नहीं होती, कुछ उलझनों को सुलझाने में जिंदगी बहुत गहरे सबक सिखाया करती है। और भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। दो सवाल जो हमने आपसे पूछा था उनके जवाब फटाफट आप भेज दें श्रोताओं।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार

आप सुन रहे थे ये गीत आराधना, फिल्म का कलाकार आपको बताने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी केवल सीधी लकीर नहीं बल्कि ये चाहतों, एहसासों और कश्मकश से भरे दिन और रातों का ये खूबसूरत ताना बना है। ये कश्मकश इंसान को अक्सर सही और गलत के दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां मन में कई तरह की हलचलें और सवाल उठते हैं। जीवन की ये उलझने और तड़प व्यर्थ नहीं जाती, ये हमें संघर्ष के असली मायने सिखाकर हमारे व्यक्तित्व को तराशती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी की यही कश्मकश ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है, जहां दिल की राहों पर चलते हुए चाहते, यादें और फर्ज आपस में टकराते हैं, जो कभी तड़पाते हैं तो कभी चंदन की खुशबू की तरह छू कर गुजर जाते हैं। ये कश्मकश हमें कभी कभी सही और गलत के ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा करती है, जहां से कोई रास्ता नहीं सूझता। ये उलझने हमें तड़पाती जरूर हैं, पर यही तड़प हमें मोहब्बत का मर्म और गम को दवा बनाना सिखाती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जब हम दिल की राहों पर कदम बढ़ाते हैं तो उम्मीदों का एक नया आसमां खुलता है। दिल चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो, प्यार, सुकून, सफलता और रिश्ते, लेकिन जिंदगी अपनी शर्तों पर चलती है। वो हमें उन मोड़ पर लाखड़ा करती है जहां दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। यही वो बिंदु है जहां से कश्मकश की शुरुआत होती है। तो ये तो बताइए कि जब आप ऐसे उलझनों में होते हैं तो अपनी बातें किसी को कहते हैं या फिर खुद से ही फैसला लेना ठीक समझते हैं? आपको गीतकार बताने हैं श्रोताओं।

0: आंखों से दिल में समा, आ जा रे आज जरा आ, लहरा के आज जरा आ, आ जा रे आज जरा।
1: हम से कुछ लोग ऐसे होते हैं श्रोताओं कि जब कश्मकश होती है तो फैसला तुरंत ले लेते हैं। ये फैसला कुछ लोग बड़ी सोच समझ के बाद लेते हैं, यानी सोचने समझने के बाद लेते हैं। तो आप किस तरह से फैसले लेते हैं जब आपको कोई कश्मकश होती है, और कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो कि जब आप किसी कश्मकश में थे तो किस तरह से निकले, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और ये जो कश्मकश होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में क्या रेडियो पर सुनाई देता कोई गीत आपकी कश्मकश को, आपकी उलझनों को कुछ कम करता है, तो आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, दोस्ती और प्यार वैसे तो दोनों की जरूरत जरूरी है, पर दोनों में से एक को चुनना हो तो हमारा दिल दोस्ती को चुनेगा। तो इन्होंने अपनी बात तो कह दी, हमारे बाकी श्रोता भी जरूर लिखें कि दोस्ती और प्यार दोनों में से अगर आपको चुनना हो एक को, तो आप किसे चुनेंगे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन साथी ही अगर आप का सबसे अच्छा दोस्त बन जाए तो क्या बात है। और आराधना का गीत इन्हें पसंद आया। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक कश्मकश का सामना करना पड़ा था जब मेरी बेटी बीए इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रही थी और टीवी भी न्यूज रीडर से प्रभावित हो पत्रकारिता करियर करना चाहती थी, किंतु मुझे उसकी दक्षता का अनुमान था, अतः बहुत समझा बुझाकर इस प्रभाव को दूर किया और इंग्लिश में पीजी करने को कहा। और आज वो 14 साल से आईटी सेक्टर में सीनियर पोस्ट पर है, ये उलझन दूर हुई। तो क्या ही अच्छी बात है। जी हाँ, सही फैसला सही वक्त पर बहुत जरूरी होता है, और यही कश्मकश यही उलझनें फिर खुशियों में या मंजिल को पाने के लिए तब्दील हो जाती हैं।

ये गीत आप सुन रहे थे उपकार फिल्म का मुकेश की आवाज में। कमर जलालाबादी के बोल थे, आपको संगीतकार बताने हैं और कलाकार बताने हैं। श्रोताओं, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी भी एक झूले की तरह होती है, जैसे झूला जितना जल्दी पीछे जाता है ठीक उतना ही आगे आता है। ठीक इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं और जाते रहते हैं, क्योंकि जिंदगी के हर फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त और हालात के भी होते हैं। हर इंसान की जिंदगी एक यात्रा है, इसे रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने से कभी पूरी हो जाएगी, कब पूरी हो जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी होती है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है ये किसी को पता नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि लिखती हैं कि जीवन की इस उतार चढ़ाव में, जीवन के इस उतार चढ़ाव में न जाने कितनी उलझने आती हैं और जाती हैं, हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती हैं। कभी कभी उलझे हुए रिश्ते हम चाह कर भी नहीं सुलझा सकते, एक दो सुलझाते हैं तो दूसरा कहीं और उलझ जाता है, और कैसे सुलझाऊं मैं इस उलझन को, बताए कोई राहें धुंधली सी। तो कुछ इन्होंने अपनी पंक्तियां भी लिखी हैं। आपको कौन से ऐसे गीत हैं जो कश्मकश के हैं और आपको बहुत पसंद आते हैं? इस गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं, और इसके पहले जो गीत आपने सुना उसमें भी कलाकार आपको बताने हैं।

नरगिस और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे रात और दिन फिल्म से। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि सबसे ज्यादा कश्मकश का समा अपने होने वाले साथी और उसके परिवार से बात करने में होती है। बहुत सारी फीमेल श्रोता मेरी बात से सहमत होंगी, ऐसा इनका लिखना है। शायद किसी नए व्यक्ति के बारे में ये लिख रही हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सच्चा प्यार ही दोस्ती का आधार है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत हो सकते हैं राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, रात भर का है मेहमा अंधेरा, चंदन सावधान गीत तो बहुत ही खूबसूरत गीत है श्रोताओं। लेकिन आपने जो बाकी के दो पहलू दो बातें लिखी हैं राही मनवा यानी गीत के विषय में, दुख की चिंता क्यों सताती है या रात भर का मेहमान अंधेरा, तो ये तो कश्मकश के एक पहलू हो गए। कश्मकश के बहुत सारे पहलू हैं श्रोताओं, इसलिए हमने आपसे कहा था कि जिंदगी कश्मकश है या कश्मकश ही जिंदगी है, कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि कश्मकश तो हर पल साथ रहती है। एक आपसे सवाल पूछते हैं कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है जब ऐसी कश्मकश होती है, तो दिल की सुननी चाहिए या फिर दिमाग की सुननी चाहिए। कलाकार बताएं और संगीतकार।

राजकुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया फिल्म काजल का ये गीत आपने सुना और ये तर्ज थी रवि की, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि कश्मकश कभी भी हुई तो सोच समझ कर उस समय जो सही लगा वो किया, पर कुछ निर्णय बाद में गलत भी सिद्ध हुए। एक और श्रोता ने लिखा है कि मुकेश जी की आवाज में ये गीत जो हमने पहले आपको सुनवाया था इन्हें बहुत पसंद है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि जिंदगी आप के चाहे अनुसार ही चल सकती है क्या, भविष्य के झरोखों में क्या है इसका सिर्फ पूर्वानुमान ही किया जा सकता है, उसी के अनुसार कश्मकश के समय निर्णय लिया जा सकता है, आने वाला समय ही बताता है कि ये निर्णय सही था या गलत। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म उपकार का गीत था, भारत कुमार यानी मनोज कुमार पर फिल्म आया गया। जी हाँ, आशा पारेख भी नजर आती हैं। तो आपसे हमने पूछा था दिल और दिमाग दोनों में से आप किसकी सुनते हैं या किसकी सुनना चाहेंगे, और एक सवाल और आपसे पूछते हैं श्रोता कि क्या जब हम कॉलेज में थे तो उन विषयों को लेकर कोई कश्मकश आपके जहन में था? गीत को पहचानिए, फिल्म का नाम बताइए।

कॉलेज की जब शुरुआत होती है श्रोताओं, तो विषयों को चुनने में बड़ी कश्मकश होती है। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आप जरूर लिखें। मौसम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, गुलजार का लिखा, मदन मोहन का संगीत था। एक श्रोता लिखते हैं कि दोस्ती और प्रेम में एक चुनना हो तो दोस्ती ही चुनेंगे, दोस्ती की तो बात ही अलग है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जब इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लिए न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद कॉलेज का पहला दिन था, किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। तब काफी देर तक क्लासरूम के बाहर हम और एक अन्य लड़की टहल रहे थे। थोड़ी देर तक कोई बातचीत नहीं हुई, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए हमने पूछा, न्यू एडमिशन? तो उसने भी हाँ करके सर हिलाया, फिर बातचीत शुरू हुई। वही लड़की आज तक अच्छी सहेली है। जी हाँ, अच्छे साथी तो बहुत जरूरी होते हैं। क्या आपका भी कोई कॉलेज में अच्छा साथी बना जिसे आप शुरू में बातें करने से बहुत हिचकिचाते थे? ये फिल्म आपको बतानी है।

अभिनेता पंकज पर फिल्माया गया कांच और हीरा फिल्म का ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के रंग कई रे साथ ही रे, जिंदगी दिलों को जोड़ती भी है, जिंदगी दिलों को तोड़ती भी है। जब जिंदगी की उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, तब दिल कहता है जाऊं कहां बताए दिल। एक पैरडी जैसी इन्होंने बनाई है श्रोता, और हम इनकी सराहना करते हैं। अच्छा लिखा है इन्होंने, और हमारे जितने भी श्रोता हैं कार्यक्रम से जुड़ते हैं उन सभी का बहुत बहुत तो शुक्रिया हम कहते हैं। एक सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि जो विषय होते हैं उनको लेकर आपकी कितनी कश्मकश थी कॉलेज में, और इस समय आपके दिल में क्या कश्मकश चल रही है, अगर आप बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी जब उलझने होती हैं, ऐसी कश्मकश जब होती है, तो क्या कभी रेडियो विविध भारती आपका साथी बना? कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म बतानी है।

अमानुष फिल्म का ये गीत था, प्रेमा नारायण और उत्तम कुमार पर फिल्माया गया है। श्रोताओ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जिंदगी के उतार चढ़ाव, कश्मकश और उलझनों को के भाव को आज के गद्यांश ने समेटा हुआ है। अजीब है जिंदगी का ये नूर और रंग, कभी आंखों में अश्क, कभी चाहतों की उमंग, चंदन की चाहत हो या फूलों का एहसास, जिंदगी हर मोड़ पर एक इम्तहान लेती है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर ये कार्यक्रम जो है जब हम सुनते हैं या फिर जब हम विविध भारती सुनते हैं तो ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का काम करता है। संगीत जगत में हमारे रग रग में खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है। आकाशवाणी।

हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि दिल से यानी भावना और अंतःप्रेरणा से और दिमाग यानी तर्क और बुद्धिमता से सोचना जीवन के हर बड़े फैसले में दिल और दिमाग का तालमेल ही सही होता है।

हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि जीवन में हजारों बार कश्मकश आई, लेकिन मैं हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनती हूँ, फिर कोई गलत कहे या सही। इंसान का अपना भी कुछ सोच होनी चाहिए, अपनी

रफी की आवाज थी और सुनील दत्त और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि विविध भारती मुंबई के श्रोता हैं हम और जीवन में आए कश्मकश और समस्याओं को इसे सुनकर हल चुटकियों में खोज लेते हैं। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

ये गीत हमने लिया है तेरी मेहरबानियां फिल्म से, आवाजें शब्बीर कुमारा और अनुराधा पौडवाल की, एसएच बिहारी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और अब सुनिए अलका याग्निक को कुमार सानू का गाया हुआ रंग फिल्म का ये नगमा, समीर का गीत और नदीम शेफर्ण का संगीत।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
0: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7,400 से अधिक विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण किया। भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं की प्रतिभा को सम्मान देते हुए विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।
2: तो बच्चों, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आज स्कूटी लिए आपके साथ समाज में विकास के काम करें और आने वाले समय में राज्य को भी समृद्ध करें और देश को भी आगे बढ़ाएं। ये भविष्य आप लोगों के हाथ में है। आज देश दुनिया के सामने 4थे नंबर की आर्थिक ताकत बना है, लेकिन आप पढ़ लिख के आगे बढ़ोगे तब तक आप सबके मदद से देश दुनिया का नंबर 1 का देश बनेगा। ये आप सबके हाथ में है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के लिए नए अवसर तभी बनते हैं जब देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, निवेश बढ़ता है, नए उद्योग लगते हैं और नए सेक्टर का विकास होता है। आज भारत तेजी से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रदेश में मानसून अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 22 सितंबर तक प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक पश्चिमी हिस्से में इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है। इसके प्रभाव से पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बनी हुई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल रोजगार के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जो प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर के बाहर बीती रात पुलिया से एक 4पहिया वाहन के नीचे गिरने से हुए हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जबलपुर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत 2 दिवसीय रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत सिवनीमालवा तहसील के ग्राम लोखरतलाई में ब्लॉक स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। वहीं शिवपुरी जिले के मगरौनी में कल मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत जनसंवाद शिविर का आयोजन किया गया और झाबुआ जिले के राणापुर क्षेत्र के बगई स्थित एकीकृत शासकीय हाईस्कूल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।
4: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हैं। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
4: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
4: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
5: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
6: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
4: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
8: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन, आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
4: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
9: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
5: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
9: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर।

0: लैंडिंग।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म छाया का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल सलील चौधरी की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: फिल्म ससुराल का गीत था, हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: राजकुमार फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोलों को सुर में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिट्टी

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये

दुल्हन एक रात की, इस फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज मदन मोहन की तर्ज थी। गीत रचना राजा मेहदी अली खां की थी और सदाबहार नगमे कार्यक्रम की श्रोताओं यही थी आखिरी पेशकश।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार श्रोताओं, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। खूबसूरत गीतों का ये सफर आपकी फरमाइशें और आपके पत्र, और होता है आपको बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार। तो कार्यक्रम के लिए अपने रेडियो सेट के जरा करीब आइए, पास लाइए और जरा ध्यान से सुनिए, कहीं आपके पसंदीदा गीतों में से तो कोई गीत आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का प्रोग्राम मन चाहे गीत में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

डिस्ट्रिक्ट साबरकांठा से इस गीत की फरमाइश भेजी विनोद भाई बी वाघेला ने, और इसी गीत को सुनना चाहते थे छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव। और ये पत्र आया श्रॉफ रोड राजकोट सौराष्ट्र से जुबैदा खातून, रुबीना हीना, नूर मोहम्मद लखानी, सिराज और विहान लखानी की ये फरमाइश थी। और प्रमिला गंज आलोट के हमारे श्रोता हैं रतलाम के, मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, अतुल पायल, अतुल कुमार पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने इस पत्र को भेजा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं अर्पा पैरी, पार्वती, राधा भगवान और शिव चंद्राकर। आपने सुना था दो रास्ते फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज थी।

आसपास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और गीतकार आनंद बख्शी थे। ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं मांगीलाल चंदेल, अरविंद अशोक, राजकुमार और हिमांशु, और कालेगांव जाफराबाद की ये फरमाइश है सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित मोताला के हमारे श्रोता हैं प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख करडा रोड से, कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरवद देशमुख की यह फरमाइश है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्य और इसी गीत को सुनना चाहते थे। अम्बेडकर नगर अकोले के हमारे श्रोता प्रकाश खेलकर, मीराताई खेलकर, आरती संतोष खेलकर, पूजा खेलकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओ, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म अमानत में मोहम्मद रफी की आवाज साहिर लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये हमारे श्रोता हैं शाहनगर करवीर जिला कोल्हापुर के बाजीराव ढेरे, संगीता और हर्षद ढेरे, और इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजे गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन होशियारपुर जालंधर रोड से रमाकांत शर्मा, रवि शर्मा, अक्षय शर्मा। और ये पत्र आया वरोड़ा चंद्रापुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी, रोहित और प्रणीत की ये फरमाइश है। इसी गीत को सुनना चाहते थे राजावत कॉम्प्लेक्स से शाजापुर के हमारे श्रोता हैं ये मनमोहन राजावत, मधु राशि, चित्रंजन, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, स्वीटी, रिया, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य, और सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, मनीषा चौधरी, ये हमारे कोलकाता के श्रोता हैं।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी की रचना आप सुन रहे थे। बाबुलगांव महाराष्ट्र के हमारे श्रोता इस गीत को इन्होंने पसंद किया था। प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति तृप्ति।

यशोदीप की ये फरमाइश है। और दूधसागर मार्ग राजकोट के साजिद कुतुबुद्दीन मकसूद शाहीन चाणक्या ने फरमाइश भेजी। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुचा सिंह ने इस गीत को सुनना चाहा। जिला लुधियाना के हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष बिट्टू, दीपक, और इसी गीत को सुनना चाहते थे बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार के ही हमारे श्रोता हैं डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम और दानिश अंसारी। सलीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी ने इस गीत को सुनना चाहा। और जेल रोड दिल्ली के हमारे श्रोता हैं लाल बाबू, दीवाना और दिव्या भारती।

फिल्म आत्माराम। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं।

गोलाबाजार बक्सर के हमारे श्रोता मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, आयुष और सांगवी की ये फरमाइश थी। खांजीपीर उदयपुर के हमारे श्रोता डॉक्टर निदा नाहिद, फरीदा जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान, मंजू निम्मी, थाना रोड बक्सर से इस गीत को पसंद किया। आशीष, सतीश और आयुष ने और लक्ष्मी बाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर के हमारे श्रोता हैं राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता, नारायण, गणेश और संजना, परी, मालती, स्वाति, प्रयाग चौधरी की फरमाइश है ये।

विश्वेश्वर शर्मा का लिखा है ये नगमा। आपने सुना शंकर जयकिशन की तर्ज थी, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आत्मा राम फिल्म का ये गीत था श्रोताओ। और यही है आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम में सहयोग मिला योगिता जाधव और धनाश्री साठे का। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले और अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार, लेकिन भेजते रहिए अपने पत्र, क्योंकि आपके पत्रों का हमें भी रहता है कार्यक्रम के लिए इंतजार। मनचाही गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता, इसका पहला भाग। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: जैसा मेघदूत में वर्णित है, मालवांचल के ग्राम वृद्ध वत्सराज उदयन और अवंतिराज कन्या वासव दत्ता की प्रणय गाथा के ज्ञाता थे। इसी प्रणय गाथा को महाकवि भास ने अपने दो नाटकों प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासव दत्ता में गूंथा है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में वत्सराज उदयन का अवंती सीमा पर बंदी होना, अवंतिराज महलों में रहकर उदयन का वासव दत्ता को वीणा की दीक्षा, उनका प्रणय और महामात्य यौगंधरायण के प्रयत्नों से उदयन की मुक्ति और उदयन द्वारा वासव दत्ता का हरण कर कौशाम्बी ले जाना वर्णित है। स्वप्न वासव दत्ता उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है, भास की विख्यात नाट्य कृति है स्वप्न वासव दत्ता।

0: आमात्य योगंधरायण, कैसा वन है ये? हमारी भाग्य रेखा की तरह ये घनी काली वनराजी, चलते चलते थक गई हूं मैं। ये दिन भी देखना थे हमें।
1: आर्य वासवदत्ता, चिंतित न हो।
0: आर्य, कैसा है ये नियति का क्रूर चक्र? सोच कर कांप उठती हूं। इधर आर्य पुत्र का शत्रुओं द्वारा पराभव, कौशाम्बी के राज महलों को त्याग, लावानक ग्राम में राज परिवार का निवास,
1: और इधर महाराजा उदयन का आखेट के लिए वनगमन, उधर लावानक ग्राम में भयानक अग्नि प्रकोप।
0: नहीं नहीं नहीं महामात्य, उसे याद न दिलाएं, सिहर जाती हूं उसे याद कर। आपने ही मुझे उन अग्नि ज्वालाओं के बीच से बचाया, आप ना होते तो क्या होता मेरा? और अब हम इस वन भूमि के बीच खड़े हैं।
1: हमें अपना करणी करना है देवी वासवदत्ता। मुझे विश्वास है एक दिन हम इन समस्त विपदाओं से अवश्य मुक्त होंगे।
0: हाँ, यही हो महामाति योगंधरायण।
1: यही होगा देवी, यही होगा। देवी, स्मरण है न आपको मेरी प्रतिज्ञा, जब तक हम शत्रुओं का पराभव कर अपने वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी पर पुनः अधिकार न कर ले, महाराजा उदयन को फिर सिंहासनारूढ़ न कर दे, मैं इसी तापस वेश में रहूंगा। और तब तक आप भी महाराजा उदयन को नहीं दिखेंगी।
0: आर्य, आर्य पुत्र के मंगल के लिए ही आपने ये कठोर प्रतिज्ञा की है, मैं इस प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगी।
1: तो देवी, अब से मैं महाआमात्य योगंधरायण नहीं बल्कि एक परिव्राजक हूं, और आप वत्सराज उदयन की महारानी नहीं बल्कि मेरी प्रिय भगिनी अवंतिका है।
0: हाँ, मैं इसे याद रखूंगी।
1: देवी, वहां सामने देखिए, जहां मृग निर्भय विचर रहे, चारों दिशाओं से यज्ञ धूम उठ रहा है, जहां व्यवस्थित अरण्यावली है।
0: हाँ?
1: मुझे लगता है वह तपोवन है, क्यों न हम वहां चलें?
0: हाँ आर्य, यही उचित होगा, चलिए।
2: मार छोड़ दे, आर्य हट जाए, मार छोड़ दे।
1: आश्चर्य, यहां भी लोगों को हटाया जा रहा है। पूजनी और वलकलधारी आश्रम वासियों में ये लोग क्यों भय उत्पन्न कर रहे हैं? ये अभिमानी इस तपोवन के साथ गांव का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं?
2: मार छोड़ें, ए आर्या, हट जाएं, मार छोड़ दें।
0: आर्य योगंधराय, ये कौन है जो आश्रम वासियों को यूं हटा रहे
2: हैं? ए आर्या, मार छोड़ दें।
0: देखिए ना, यहां तो मुझे भी हटाया जा रहा है। आर्य, अब तो ये थकावट मुझे इतना दुखित नहीं कर रही जितना कि ये अपमान।
1: धैर्य धैर्य देवी, अपने पति वत्सराज उदयन के विजयी होने पर आप फिर प्रतिष्ठित होंगी। काल चक्र के घूमते अरों की भांति इस जगत का भाग्य भी घूमता है।
2: मार छोड़ दे आर्य, हट जाए, मार छोड़ दे।
3: संभाषण, लोगों को इस तरह ना हटाओ।
4: आश्रम वासियों के प्रति कठोर व्यवहार उचित नहीं। ये मुनिजन नगर के अपमान से बचने के लिए इस वन में निवास करते हैं।
5: जो आज्ञा आर्य कंचुकी, ऐसा ही होगा।
1: ये कंचुकी ज्ञानवान है। देवी वासवदत्ता, आइए इसके पास चले। आर्य कंचुकी
4: जी,
1: आप रनिवास की प्रतिष्ठा के ज्ञाता हैं, ज्ञानवान हैं। हमें बताएं, लोगों को यहाँ राज से क्यों हटाया जा रहा है?
4: तपस्वी, हमारे मगध राज महाराजा दर्शक की बहन राजकुमारी पद्मावती महाराजा की माता महादेवी से मिलने यहाँ आश्रम में आई है।
1: अच्छा, तो ये ही वो मगध राज कन्या पद्मावती है जिनके लिए पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने घोषणा की है कि ये हमारे स्वामी वत्सराज उदयन की द्वितीय रानी होगी। अपने स्वामी की भावी वधु को देखकर मेरे मन में ममत्व साक्षात्कृत हो रहा है।
6: राजकुमारी आश्रम में प्रवेश करें।
7: स्वागत है राजकुमारी।
8: स्वागत है राजकुमारी।
7: आइए तपस्विनी, हमारा अभिवादन स्वीकारें।
8: आयुष्मान हूँ, ये आश्रम अतिथियों के लिए उनके गृह समान ही है।
7: इन वचनों के लिए अनुग्रहित हूँ आर्य।
0: बहुत सुंदर आश्रम है ये, कैसी शांति, कैसा सुख है यहाँ।
6: इधर इधर पधारिए राजकुमारी, इधर आइए।
8: कितनी सुंदर है राजकुमारी पद्मावती। मगध राज की सुंदर भगिनी के लिए किसी राजकुल ने विवाह प्रस्ताव तो किया ही होगा।
6: उज्जैनी अधिपति महाराजा प्रद्योत महासेन ने अपने राजकुमार की ओर से दूध भेजा है।
0: उज्जैनी से मेरे पिता अवंती नरेश ने दूध भेजा है। ओह, कितना अच्छा। तब तो पद्मावती मेरी आत्मिया हुई।
7: आर्य, क्या आश्रम में ऐसे मुनिजन हैं जो मेरी दी भेंट स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें? आर्य कंचुकी,
4: राजकुमारी की जो इच्छा। आश्रम के तापसजन सुने, मगध राज कन्या पद्मावती आपको धर्मार्थ भेंट लेने आमंत्रित करती हैं। जिसे जो वस्तु इच्छित हो बताएं।
1: आर्य कंचुकी, मुझे कुछ मांगना है।
7: अवश्य मांगे, मेरा तपोवन में आना सार्थक रहा।
8: इस आश्रम के तपस्वी हर तरह संतुष्ट हैं। ये मांगने वाला निश्चय ही कोई आगंतुक है।
4: बताएं, बताएं तपस्वी, आपकी इच्छा बताएं।
1: राजकुमारी, ये मेरी बहन अवंतिका है। इनके पति विदेश में है। मेरी इच्छा है कुछ समय इन्हें आप अपने साथ रखें, आप इनका परिपालन करें। देवी, मैंने धन वस्त्र की इच्छा से ये काषाय वस्त्र धारण नहीं किए हैं।
7: फिर क्या चाहते हैं आप?
1: आपने धर्मप्रियता का परिचय दिया, अतः आप निश्चित ही मेरी भगिनी की चरित्र रक्षा कर सकती हैं।
4: चरित्र रक्षा? चरित्र रक्षा? राजकुमारी, इनका मनोरथ बड़ा है, धन प्राण और यहाँ तक के तप भी सुखपूर्वक दिए जा सकते हैं, लेकिन थाती की रक्षा?
7: आर्य कंचुकी, घोषणा के बाद पुनः विचार उचित नहीं। अब ये जो कुछ कहे वही संपन्न हो।
4: जो आ गया राजकुमारी जी।
1: अनुग्रहित हुआ मगध राजकुमारी पद्मावती, जाओ अवंतिके, देवी के समीप जाओ।
0: आह, कैसा सुंदर मुख है इसका।
7: चेटी, अवंतिका को देख ही लगता है जैसे ये कोई राजकन्या हो।
6: आर्य, लगता मुझे भी यही है, इन्होंने निश्चित अच्छे दिन देखे हैं।
7: आओ अवंतिके, हमारे साथ चलो।
1: एक भार उतरा, जैसा साथी मंत्रियों के साथ निश्चित किया था ये वैसा ही संपन्न हुआ। जब मेरे स्वामी वत्सराज उदयन कौशाम्बी को जीत कर सिंहासनारूढ़ हो गए, तब उन्हें देवी वासवदत्ता को वापस लौटा दूंगा। उस समय यही मगध राजकुमारी मेरा साक्ष्य करेंगे। और ऐसी भविष्यवाणी भी है, समुचित रीति से कहे ऋषि वचनों को भाग्य भी मिथ्या नहीं करता।
9: बहुत थक गया हूं, मध्यान्ह हो रहा है, पर विश्राम कहां करूं? कहां जाऊं, किधर जाऊं? अरे ये सामने शायद तपोवन है। हां तपोवन ही है, निर्भय हिरण और गायों के दल घूम रहे हैं, फल फूलों से लदे वृक्ष, प्रति दिशा उठता यज्ञ धूम, निश्चित ही तपोवन ही है। चलो देखूं।
3: ब्रह्मचारी पधारें।
4: आश्रम सबका समान रूप से होता है, हम आपसे पहले यहां आए, आप हमारा आतिथ्य स्वीकारें श्रीमान, लीजिए शीतल जल ग्रहण करें।
9: धन्यवाद। अब थकान दूर हुई।
4: अतिथि ब्रह्मचारी, ये हैं हमारी मगध राजकन्या पद्मावती।
10: प्रणाम।
9: आयुष्मान भव।
4: ये हैं इन तपस्वी की बहन अवंतिका।
10: प्रणाम।
4: और ये इनके भाई।
1: प्रणाम मुनिवर।
4: और ये आश्रम की तपस्विनी सेविका चेटी।
10: प्रणाम मुनिवर।
9: आयुष्मान भव।
1: ब्रह्मचारी आप कहां से आए, कहां जाएंगे, निवास स्थान कहां है आपका?
9: मैं मगध की राजधानी राजगृह का ही रहने वाला हूं, वेदों के विशेष अध्ययन के लिए वत्स देश के लावणक ग्राम में रहता था।
10: लावणक ग्राम में।
1: अध्ययन समाप्त हुआ?
9: नहीं तपस्विन, नहीं।
1: नहीं? फिर वहां से चले आने का प्रयोजन?
9: वहां एक दुखद घटना घटी।
1: वो क्या?
9: वही लावण ग्राम में उदयन नाम के राजा रहते थे।
10: स्वामी।
9: अवंती राज प्रद्युत महासेन की कन्या उनकी परम प्रिय पत्नी थी।
10: मेरे स्वामी।
9: जब राजा अन्यत्र आंखें खेलने गए तब गांव में आग लगी। और इसके बाद रानी की रक्षा का प्रयत्न करते अमात्य योगंधरायण भी उसी अग्नि में गिर पड़े।
10: क्या?
1: अमात्य भी गिर पड़े? फिर मुनिवर?
9: फिर उदयन लौटे और ये संवाद सुना। प्रिय वियोग से दुखी हो वे उसी अग्नि में प्राण त्यागने को उद्यत। मंत्रियों ने बड़े प्रयत्नों से उन्हें रोका।
0: जानती हूँ अपने प्रति आर्य पुत्र का असीम प्रेम, जानती हूं उसी के बल आज जीवित हूं, आज भी उनकी प्रेम वीणा के स्वर, प्रेम वीणा के स्वर मेरे कानों में गूंजते।

0: फिर महाराज उदय रानी वासवदत्ता के जलने से शेष रहे आभूषणों को हृदय से लगा मूर्छित है।
1: राजकुमारी पद्मावती आर्या अवंती का विलाप कर रही है।
2: क्या बात है अवंती की?
3: ना रो अवंती की। राजकुमारी मेरी ये भगनी स्वभाव से भावुक है। हाँ ब्रह्मचारिण, फिर क्या हुआ?
0: फिर धीरे धीरे राजा को चैतन्य लाभ हुआ।
1: प्रसन्नता है, वत्सराज जीवित है, उनका मूर्छित होना सुन मेरा तो हृदय शून्य हो गया था।
0: लेकिन चेतना आने पर महाराज उदयन सहसा उठे और हाँ वासवदत्त
4: हाँ अवंती राजपुत्र,
0: हाँ प्रिय
4: शिष्य वासवदत्ता।

0: देर तक विलाप करते रहे। धन्य है वो स्त्री जिससे उसका पति इस तरह प्रेम करता है। ऐसा पति स्नेह पा वो जलकर भी नहीं जली।
1: ब्रह्मचारी, उन मंत्रियों में से किसी ने भी वत्सराज को प्रकृतिस्थ करने का यत्न नहीं किया?
0: किया तपस्वी, किया। रुम्णवान नामक मंत्री ने दृढ़ प्रयत्न किया। वे ही दिन रात राजा की यत्न पूर्वक सेवा करते रहे।
2: सौभाग्यवश आर्यपुत्र अप्रत्य

0: अघोषित कार्यों में दक्ष रूमनवान जैसे मंत्री के हाथों सुरक्षित हैं। भाग्य मेरे।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, क्या राजा पूरी तरह स्वस्थ हैं?
2: इस समय तो नहीं जानता तपस्वी, लेकिन यहां मैं

0: उसी तरह उस अनाकर्षक लावण ग्राम को मैंने त्याग दिया और अब आपके समक्ष हूं।
1: जिसकी प्रशंसा आगंतुक करते हैं वो राजा निश्चित गुणवान है।
2: क्या महाराज उदयन अब किसी अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को? हाँ, चीटी की तरह मेरा मन भी यही प्रश्न करता है।
0: अब सभी लोगों से मैं आज्ञा लूं, आश्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबको मेरा आशीष।
1: प्रणाम मुनिवर।
3: अच्छा ब्रह्मचारी, प्रणाम। अब मैं भी देवी पद्मावती से जाने की अनुमति चाहूंगा।
1: आर्य, आपके बिना आपकी ये भगिनी दुखी तो नहीं होंगी?
3: नहीं राजकुमारी, साधु जनों के हाथों ये दुखी नहीं होगी। अच्छा, मुझे आज्ञा दे, मैं जा रहा हूं अवंती के।
4: राजकुमारी, आश्रम प्रवेश का समय हो गया, इधर इधर पधारे राजकुमारी।
5: शांति बेला हो रही है, पंछी बसेरा ले रहे हैं, मुनिजन जल तर्पण कर रहे हैं, सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा है।
4: सब लोग आश्रम प्रवेश करें।
1: चलो कंचुकी, चेटी चलो।

0: अवंती के अब बस करो, अब नहीं खेल सकूंगी।
1: मैं राजकुमारी, कुमारी का जीवन के रमणीय क्षणों का सदुपयोग करे।
2: क्या कह रही है दीदी?
0: सुन रही हूँ अवंती के। पर बताओ, हमारे यहाँ की राजगृह के राजमहल में कैसा लग रहा है तुम्हें?
1: ये राजगृह के महल भी सुंदर है और इस उद्यान की सुंदरता तो बस।
2: क्या देख रही हो इस तरह मेरी ओर अपलक?
1: आज आप विशेष सुंदर लग रही हैं राजकुमारी।
2: रहने दो, तुम उपहास कर रही हो मेरा।
1: अच्छा अच्छा, महासेन की भावी पुत्र वधू, मैं चुप होती हूँ।
2: ये महासेन कौन है?
1: नहीं जानती? उज्जैनी के राजा प्रद्योत। असीम सेना होने के कारण उनका नाम ही महासेन हो गया।
2: लेकिन हमारी राजकुमारी उज्जैनी का ये संबंध नहीं चाहती।
1: तब किसके साथ चाहती हैं आर्य सेठी?
2: ये चाहती हैं वत्सराज उदयन को।
1: वत्सराज?
2: कुमारी पद्मावती उनके गुणों पर मुक्त है।
1: मेरे स्वामी, ये आर्य पुत्र की पति रूप में कामना करती है। नहीं नहीं,
2: क्या क्या हो देवी?
1: हाँ कुछ नहीं, मैं कह रही थी वत्सराज के साथ ही क्यों।
2: वत्सराज उदयन अत्यंत कोमल हृदय हैं।
1: जानती हूँ, मैं भी कभी उनके इस गुण पर इसी तरह आसक्त हो गई थी। उनका रूप गुण।
2: अच्छा राजकुमारी पद्मावती, यदि वत्सराज उदयन कुरूप हुए तो?
1: नहीं, वे अत्यंत सुंदर हैं, दर्शनीय हैं।
2: अवंती के, तुम उन्हें कैसे जानती हो?
1: मैं नहीं नहीं, ऐसा ही उज्जैनी के लोग कहते हैं।
2: ओह, वे अपनी ससुराल उज्जैनी के लिए तो अपरिचित नहीं?
3: कुमारी पद्मावती की जय हो। कुमारी आपकी मंगनी हो गई।
1: मंगनी हो गई?
3: बधाई हो राजकुमारी।
1: आहो धात्री माँ, किसके साथ मंगनी हो गई राजकुमारी की?
2: वत्सराज उदयन के साथ।
1: क्या, वत्सराज के साथ? कहाँ, कैसे? वे कुशल पूर्वक तो हैं?
3: हाँ वे कुशल पूर्वक है अवंती के। वे यहाँ राजगृह आए हैं और राजकुमारी पद्मावती को उन्होंने स्वीकार किया है।
1: क्या क्या स्वयं उन्होंने ये विवाह प्रस्ताव किया?

0: नहीं, वे अन्य प्रयोजन से यहाँ आए थे। हमारे महाराज मगध नरेश ने उनके आभिजात्य, ज्ञान, वय और रूप को देख यह प्रस्ताव किया है।
1: ऐसा ही है ना? तो तुम्हारी पुत्र इसमें सर्वथा निर्दोष है। मेरा मन भी यही कहता है।
0: ओ राजकुमारी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो।

0: पति को विवाह मंडप में छोड़, मैं यहाँ राजगृह के प्रमथ वन में चली आई ताकि दुख से मुक्त हो मन बहला सकूं। मेरे दुख की भी कोई सीमा है। आर्यपुत्र, वे भी अब पराए हो गए। धन्य है चक्रवाकी जो अपने चक्रवाक से बिछुड़ फिर जीवित नहीं रहती। मैं अभागिन आर्यपुत्र को देख भर लेने की मनोरथ से ही।
1: आर्या अवंतिका जाने कहां गई। ओ, प्रियंगुलता के नीचे शिलापट पर बैठी है। अरे कितनी देर से मैं आपको ढूंढ रही हूँ।
0: किस लिए चेटी?
1: राजमाता का कहना है आप महाकुल से उत्पन्न हैं, स्नेहशील और चतुर हैं, इसलिए आप ही राजकुमारी पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथे। लीजिए फूलों की टोकनी।
0: हाय, मुझे ये करना होगा। भाग्य भी कितना निष्ठुर है।
1: अरे क्या सोच रही हैं? जा माता उदयन मणिभूमि में स्नान कर रहे हैं, आप शीघ्र माला गूंथे।
0: ठहरो चेटी। अच्छा ये तो बताओ, तुमने जामाता को देखा है? कैसे हैं?
1: ऐसे हैं जैसे मैंने कभी नहीं देखा।
0: कहना क्या सुंदर हैं?
1: धनुष वाण रहित साक्षात रतिपति कामदेव हैं।
0: अच्छा अब बस भी करो।
1: अरे क्यों रोक रही है मुझे?
0: पर पुरुष की प्रशंसा सुनना अनुचित है ना।
1: अच्छा शीघ्र माला गूंथते।
0: वही तो कर रही हूँ।
2: अच्छा चेटी बताओ, इस फूल का क्या नाम है?
3: अविधवाकरण।
2: अविधवाकरण? जानती है, इसके धारण करने से पत्नी विधवा नहीं होती।
0: तो फिर माला में इससे अधिक गूंथूंगी, अपने लिए और पद्मावती के लिए भी।
2: और इसे क्या कहते हैं?
3: सपत्नी मर्दन, यानी सौत को डहाने वाली।
0: नहीं, इसे नहीं गूंथना है।
3: क्यों?
0: चेटी, राजा की पूर्व पत्नी वासव दत्ता का तो देहांत हो चुका है, अब इसे गूंथने का क्या प्रयोजन?
4: जल्दी करें आर्य, जल्दी करें, सुहागिने जामाता को विवाह मंडप में ले जा रही है।
0: हाँ, लो ये माला तैयार है।
3: अरे सुंदर माला गूंथी है आपने, तो मैं चली।
0: ये भी कैसा दुर्भाग्य।

स्वप्न वासव दत्ता, अभी आपने इस नाटक का पहला भाग सुना। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। इस नाटक का दूसरा

दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में। ये नाटक आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइलेंस लाइट्स साउंड
2: कैमरा एक्शन।
3: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, उन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया और रखा पूर्णिमा। पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
4: आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी कलाकार को आमंत्रित किया है जिन्हें आप उनके बचपन से सुनते आए हैं और आज भी जब आप उनके गाए गीत सुनते हैं तो आपके और हमारे पैर थिरकने लग जाते हैं। जी हाँ, आज बॉम्बे टॉकीज में हमारी मेहमान है मधुर और दमदार आवाज की धनी गायिका पूर्णिमा। जी हाँ, वही पूर्णिमा जिन्हें बचपन में हम सुषमा श्रेष्ठ के नाम से जानते हैं। तो विविध भारती के स्टूडियो में पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार आप सबको और मेरे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
4: जी, हर आकाशवाणी से पूर्णिमा के गाए गीत न जाने कितने बजते रहे और आज आपको सामने पाकर मुझे लगता है हम धन्य हो गए हैं।
5: धन्य तो मैं हो गई, आप लोगों ने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया
4: जी,
5: जो प्यार जो मान मुझे आप लोगों ने दिया
4: जी,
5: बहुत कम मिलता है। आजकल तो मिलता ही नहीं
4: जी,
5: पर मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह से आप मुझे वेलकम करेंगे
4: जी।
5: तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्य हो गई आज।
4: ये आपका बड़प्पन है,
5: मतलब अगर मैं नहीं आती ना तो मुझे दुख होता। मतलब मुझे शायद इस बात का एहसास भी नहीं होता
4: जी
5: कि मेरे ना आने से मैं क्या क्या खो रही हूँ
4: जी। जी,
5: तो मैं आई इसके लिए मैं खुद की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
4: तो पूर्णिमा जी, आज का जो ये सफर है जो आपके साथ हम तय करने वाले हैं, ये सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का सफर है
5: जी, जी।
4: वहाँ तक हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से एक प्यारी सी नन्ही सी गायिका किस तरह से एक बड़ी गायिका में तब्दील हो गई और वहाँ पर भी वो हमेशा टॉप पे रही और अपने गानों से हम लोगों को हमेशा बांधे रखा। तो पूर्णिमा जी, आप नेपाली हैं और आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक बहुत जाने माने संगीतकार रहे हैं, तो मुंबई आना कैसे हुआ? क्योंकि आपके पिता मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के संगीत निर्देशकों के साथ काम करते थे।
5: जी जी, एक्चुअली हुआ यूं कि डैडी का जो परिवार था नेपाल से, वो लोग कोलकाता चले गए।
4: अच्छा।
5: और कोलकाता में जाकर बस गए। तो डैडी का जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ।
4: अच्छा।
5: और पढ़ाई लिखाई संगीत की तालीम सब कुछ डैडी ने वहीं से हासिल की, कोलकाता से
4: जी।
5: फिर मुझे लगता है अगर मुझे ठीक से याद है तो लेट 40s में डैडी मुंबई आ गए। आए किसके साथ? मन्नादा के साथ, मन्नादा जी के साथ।
4: अच्छा।
5: आए मन्नाडे जी के साथ
4: जी।
5: और उनके चाचा हुआ करते थे केसी डे जी। उन दोनों के साथ डैडी मुंबई आए। फिर मुंबई में स्ट्रगल शुरू हुआ, तो डैडी ने पहले तो एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे बुलो सिरानी जी,
4: जी
5: उनको असिस्ट किया।
4: उनके गाने हम यहाँ के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में बजाते हैं।
5: हाँ, जी। तो उसके बाद उनको असिस्ट करते करते फिर डैडी ने रंजीत स्टूडियो ज्वाइन किया, तो वहाँ पे डैडी फिर खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट करने लगे।
4: अरे क्या बात।
5: मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि फिल्म महल के गाने जब बन रहे थे तो खेमचंद जी तब तक काफी बीमार हो चुके थे, काफी बीमार रहते थे। तो वो गाना खास तौर पर आएगा आने वाला, उसको कंपोज करने में डैडी का बहुत सहयोग रहा है।
4: अच्छा।
5: बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डैडी की रही है।
4: जी जी।
5: बस फिर डैडी ने बहुत अपने खुद से भी कोशिश की, कुछ इंडिविजुअल फिल्म्स में भी उन्होंने ये बस्ती ये लोग वगैरह, लेकिन यहाँ क्या होता है ना मंदाकिनी जी की,

0: आज मुझे इस बात का यकीन होते जा रहा है कि सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता।
1: जी जी,
0: किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है और सही वक्त, और सही वक्त पे सही लोग मिलना। वक्त तो बादशाह है, पर उस सही वक्त के साथ सही लोगों का मिलना बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता है डैडी कहीं वहां पीछे रह गए। बस यही कहानी मेरे डैडी भोलानाथ श्रेष्ठ की है।
1: जी जी जी,
0: तो असफल रहे, बदकिस्मत रहे, सही वक्त पे नहीं आए, जो भी आप कहें, लेकिन प्रतिभाशाली बहुत थे।
1: जी,
0: बहुत ज्यादा टैलेंटेड, इसके बारे में कोई शक नहीं। वो सिर्फ एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर नहीं तो बहुत ही बेहतरीन तबला वादक भी थे।
1: अच्छा,
0: बहुत बेहतरीन। फिर उन्होंने कुछ साल किशोर काका, किशोर कुमार जी के साथ भी काम किया। उनके फिल्मों में भी उन्होंने उनको असिस्ट किया। बल्कि आज अगर मुझे, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, माफ करें अगर मैं कहूं कि किशोर अंकल के फिल्मों के गानों को कंपोज करने में काफी कुछ सहयोग, नहीं बोलूंगी मैं, कंट्रीब्यूशन डैडी का रहा है।
1: जी जी जी, आप ही ने उनके बारे में बताया ना कि उन्होंने कितना काम किया है।
0: जी,
1: और जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत के रसिक हैं, वो जानते हैं आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक कितने महान संगीतकार रहे होंगे।
0: बिल्कुल, मुझे आज भी मंदाकिनी जी कितने लोग डैडी के गाने भेजते हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं था। कल ही मैं किसी से मिली और उन्होंने कहा कि एक शख्स हैं यहाँ मुंबई में, मरीन ड्राइव में रहते हैं, बहुत संगीत प्रेमी हैं, लेकिन उनके पास मेरे पिताजी के बहुत सारे गानों के, बहुत नहीं, सारे गानों के कलेक्शंस हैं।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है मिलने के लिए, जाऊंगी मैं। तो इससे मालूम होता है कि बदकिस्मत ही सही, नहीं वो मतलब नाकामयाब ही सही, असफल ही सही, पर कहीं एक मुख्तसर सा सेक्शन है
1: जी,
0: जो आज भी उनको और उनके गीतों को जानता है और पसंद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि आज भी उन्हें लोग याद करते हैं किसी न किसी।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आपका जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी
1: जी।
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में।
0: अच्छा, क्योंकि इससे भी पहले?
1: जी जी, क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला
0: जी,
1: विरासत में ही संगीत मिल गया। तो और मेरे मायके की तरफ की, मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है
0: जी,
1: आई कहती थी मैं माँ को
0: जी,
1: आई जिंदा नहीं, मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थी और जो भी अभी मौसी जिंदा है, बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, बुलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना, एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता रहता,
0: बड़े बड़े संगीत
1: है ना,
0: संगीतकारों का
1: और सिंगर्स भी, गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के वो थी आशा जी।
0: अच्छा।
1: मैं आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ, है ना। तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की जबरदस्त फैन मतलब कहते हैं ना, एक दीवानों सा एक प्यार उनकी गायकी से, उनसे एक पर्सनालिटी जो उनकी थी
0: जी,
1: उस पर्सनालिटी से आई इतना प्यार करती थी कि मैं जब आई मुझे लेकर जब गर्भवती हुई तो आई हमेशा ये कहती थी, ये प्रार्थना करती थी
0: जी
1: कि मुझे बेटी हो, और वो आशा जैसी
0: जैसी हो। अरे क्या बात है,
1: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको थोड़ी बहुत,
0: बिल्कुल,
1: थोड़ी
0: बिल्कुल,
1: बहुत
0: और
1: नजर,
0: आप उनसे प्रभावित भी रही हैं।
1: बिल्कुल एक बाल बराबर उनकी छवि शायद नजर आती होगी।
0: नहीं, होता है कलाकार
1: है
0: के साथ, जब हम अपना किसी को आइडियल मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे अंदर होती है।
1: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद मैं तो वो डबल हो गया।
0: हाँ, आप ही का गाया हुआ सुनते
1: जी
0: हैं?
1: जी बिल्कुल,
0: पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: जब मैं 6-7 महीने की थी, आई ने बताया सब कुछ। एक गाना बहुत चला था सुमन कल्याणपुर जी का, वो छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, सांवरे छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, ठीक से याद नहीं मुझे।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आई, मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैं बैठे बैठे ठुमके लगाती थी और इतना हंसती थी वो, इतना एंजॉय करती थी। उन्होंने, वो हमेशा कहती थी भैया इसे ना आप डांस सिखाइए, ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी। और मंदाकिनी जी, मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी
1: जी,
0: ये अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूँ

0: लेकिन तब मैं नाचती बहुत अच्छा थी
1: जी।
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे, अब घर में जब कोई फंक्शन है कुछ भी, दशहरा दिवाली सब मिलते थे, क्योंकि आई सबसे बड़ी थी, डैडी सबसे बड़े थे, तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगता था। तो बस तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते हैं, तो एक ही थी एंटरटेनर
1: जी,
0: गुड्डी
1: जी।
0: तो पहले तो ये कि डांस तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके,
1: हाँ,
0: फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी
1: जी,
0: और सारा म्यूजिक अपने मैं जुबानी मुझे याद रहता था। तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन के संग चलूंगी, तो उसका बिगनिंग म्यूजिक वो सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग, और यही लगा था सबको कि ये डांसर बनेगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी, तो एक मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे
1: जी,
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है
1: जी।
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ, थोड़ा बहुत घर में मतलब ऐसे गवा देते थे, लेकिन उनको बहुत बहुत पता नहीं, मुझ पे बहुत एतबार था कि ये डांस से ज्यादा गाना अच्छा गाती है। तो मामा जी मेरे मुंबई में लायंस क्लब के मेंबर हुआ करते थे, और एक शो था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में। हाँ, मैं तारीख भी आपको बता सकती हूँ, 17 जनवरी 1967
1: जी।
0: तो ये शो अब मामा जी को ही ऑर्गेनाइज करना था, तो ये तय हुआ कि भाई तुम एक जो तुम्हारे एक दो डांसेस है वो करोगी। लेकिन बाद में जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई, तो मामा जी और मौसी ने मुझे बोला कि देखो डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गाना, उस वक्त की बात मैं कर 1967 हाँ?
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत बड़ी बात होगी, तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे
1: जी,
0: पर तुम गाना गाओ।
1: अरे वाह,
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए। और मैं भी मान गई, उस वक्त ना बच्चे मान लिया करते थे।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते
1: जी,
0: थे।
1: और आपको बनना था एक महान गायिका,
0: हो
1: तो
0: सकता है, तो कुदरत ने शायद हो सकता है कि दिमाग की बत्ती भी उसी तरह खोल दी।
1: बिल्कुल।
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं, बाद में जहाँ गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल, तो वहां उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने। पहला गाना मैंने जब गाया वो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने, ओ माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो।
1: अरे वाह, अरे वाह,
0: और इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा।
1: अच्छा।
0: अब ऐसा हुआ कि दो ही गाने रिहर्स हुए थे, अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा
1: जी,
0: अब लोग ना छोड़े कि नहीं एक और एक और। और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकने पात, तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना मंदाकिनी जी, वो पहले से, ये मेरा मानना है
1: जी, बिल्कुल सही कह रही है
0: ना, वो उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देती,
0: ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी देता,
1: बिल्कुल
0: है,
1: सही
0: है ना
1: जी जी।
0: तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने, और मैं फिर शुरू हो गई, जैसे घर में गाती थी, जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, दो लाइंस, चार लाइंस, छोड़े ही ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार, और भी परफॉर्मेंसेज हैं, तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार।

0: चार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी, बस वहां से मैं 7 साल की थी तब
1: जी,
0: और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी, जी,
0: कि डांस तो रहने ही दो तुम,
1: बिल्कुल
0: तुम गाना ही गाओ,
1: आप लोगों को नचाएंगी ये था खुद नहीं नाचेंगी लेकिन दुनिया को नचाएंगी, और आपने नचाया भी। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आपका पहला गीत जो है फिल्म अंदाज के लिए आपने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था
1: बिल्कुल,
0: और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ आपने गाया, इतने बड़े बड़े लोग और आप एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये अनुभव कैसा रहा और ये गीत कैसे मिला आपको?
1: ये शो मैंने जो किया ना मंदाकिनी जी, तो मेरे परिवार के तो सारे सदस्य आए थे, तो हमारे एक बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे चंद्रकांत भोसले जी,
0: जी,
1: और वो मेरे नैनीहाल के, मतलब जहाँ मेरी नानी रहती थी, समझिए कि उनके बिल्कुल चाली में रहती थी नानी, नाना चौक, हरिनिवास चाल, बड़ी बड़ी बड़ी चौल, वहाँ समझिए नेक्स्ट रूम उनका, तो वो भी जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा है, वो आए थे शो देखने, और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना, किस्मत सही वक्त,
0: जी,
1: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज, और शंकर जी, जयकिशन जी नहीं,
0: अच्छा,
1: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था, तब तक शायद वो अलग हो चुके थे,
0: अच्छा,
1: छोटा मुंह बड़ी बात, पर वो अलग हो चुके थे, तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचम दा के साथ भी काम किया, कुछ एक हद तक आनंद मिलिंद जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे, सिटिंग मतलब रिहर्सल, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे, तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशियंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल्स में, उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था, तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना, बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था, नानी तेरी मोरनी,
0: है ना, जी जी,
1: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई, तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर, उन्होंने ना ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा, अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ, सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी, सलीम जावेद जी पहली फिल्म,
0: अच्छा,
1: बतौर स्क्रिप्ट राइटर,
0: जी बिल्कुल,
1: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स,
0: हाँ,
1: और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना,
0: और सुपर डुपर हिट,
1: सुपर डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे, तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से, पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को,
0: जी,
1: तो ये भोसले जी ने, भोसले अंकल ने शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती, अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती है ना,
0: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमि थी वो आपके गायन कौशल को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने,
1: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो लेके आओ, पूछते क्या हो, अब मुझे लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे, सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी,
0: जी,
1: टॉप फ्लोर पे, तो जब मैं वहां गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका, और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे, शंकर जी ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहां थे, हसरत जयपुरी जी थे, और सबास्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए,
0: जी,
1: तो वहां गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा, गाती हो तुम, सीखती हो, तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत, तो बोली हाँ, मैंने कहा अच्छा तो क्या क्या गाती हो, मैंने सारे गम, अच्छा अच्छा किस सुर से गाती हो, मैंने कहा काली एक, अच्छा तो जरा सुनो सारे गम सुनाओ, तो उन्होंने सारे गम पंचम तक लेके गए, बोले बस, बोले भोसले किसको लेके आए तुम, अरे ये तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
0: अरे
1: और बोले मौसी और मामा को, बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए
0: जी,
1: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल? अरे कोई रिहर्सल नहीं, वहीं सिखा देंगे गाना।
0: अरे वाह।
1: तो दूसरे दिन, वो तारीख थी 7 नवंबर,

0: 1969
1: जी
0: जी फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई, मेरे साथ एक और बच्ची भी, उसने भी गाया है, प्रतिभा बोर्डेकर, वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी।
1: पर आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया,
0: उनको ना इंटरेस्ट, प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जहां तक मैं मुझे याद है, ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी, वो एक ही गाना उसने गाया। बस वहां पहुंचे मंदाकिनी जी, उन्होंने गाना सिखाया
1: जी,
0: और मुझे बोला तुम हंसती हो, मैंने बोला हाँ, गाने में हंसोगी, मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है।
1: बहुत सुंदर हंसी थी आपकी वो।
0: मैंने बोला हाँ, तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी। तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं। बोले बस इसको पकड़ के रखना।
1: बहुत सुंदर।
0: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए, बहुत बाद में, मैं उनको साहब अंकल कहती थी। हाँ, और सुमन जी आई
1: जी,
0: सब आए थे
1: जी,
0: रमेश सिप्पी जी सब आए। मुझे हमको ना बाहर खड़ा किया था, वह सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में। तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, डर जाएंगे, इनको बाहर खड़ा करो। तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन, म्यूजिशियंस, सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हमको खड़ा किया था, और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन। फर्स्ट टेक ओके
1: जी जी,
0: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया।
1: बहुत सुंदर।
0: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई, मौसी ने बताया। उस वक्त ना मंदाकिनी जी एक गाना चला था ना रफी साहब का, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया
1: जी,
0: ये मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया।
1: बिल्कुल,
0: ये गा के मैं डांस करती थी, और इसके पीछे किशोर काका पागल, क्योंकि किशोर काका और डैडी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती जैसे आप समझिए एक माल के मणि
1: जी।
0: तो घर में आते थे, और जब आते थे अमिता के साथ, यही गाने में मुझे डांस करवाते
1: जी।
0: तो मौसी ने बोला तुम वो गाना गाती हो ना, ये वही है, जाओ पैर छुए।
1: अच्छा।
0: तो उस वक्त वो ना धनतेरस का दिन था मंदाकिनी जी, तो साहब अंकल ने वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उस वक्त, तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए, नजराना। ये एक हमारे गाने बजाने में एक, ये एक तहजीब होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
1: तो उसको
0: तो उनका एक नजराना देते हैं,
1: प्यार का प्रतीक,
0: बिल्कुल, और उनको एक प्रोत्साहन देने
1: जी,
0: के लिए
1: जी।
0: तो उन्होंने वो दिया और बोला जाओ मिठाई खाओ।
1: अरे वाह।
0: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना, तो मौसी ने कहा इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से सिखाइएगा, ये बहुत नाम करेगी।
1: क्या बात है, यानी आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ,
0: ये आज महसूस होता
1: है, शंकर जी के साथ हुई, और इतनी बड़ी फिल्म में आपने गाया। तो वो गीत की दो लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे, और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और पता है, मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदाकिनी जी, अभी एक 10 है ना बुलबुल, तारा है ना बुलबुल।

0: अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमीन, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ तेरा वादा,
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड।
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी,
1: बड़ी चीज़।
0: तो ये अनुभव कैसा रहा और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर मैं समझती हूँ कि डायनामिक्स हम जिसे गाने में कहते हैं, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने पंचम दादा से सीखा, क्योंकि उनके साथ बहुत उठना बैठना होता था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ
0: जी।
1: एक तो क्या हुआ ना कि बर्मन चाचा मतलब एसडी बर्मन जी और डैडी, मैंने जो बताया आपको कि डैडी का जन्म कोलकाता में हुआ, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वो बंगाली बाबू ही समझते थे अपने आखिरी सांस तक
0: जी।
1: और उनका सर्कल भी पूरा बंगाल
0: वैसे ही था,
1: बिल्कुल। उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामन जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनके फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए। तो पंचम दास से फिर वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता को, यूं ही। तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा हो, एक अनोखा। वो मंदा के नीचे क्या होता है ना, बड़ी देर के बाद जैसे जैसे बड़ी हुई ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना अपने होने का ना एहसास नहीं दिलाते। वैसा रिश्ता मेरा पंचमदा के साथ रहा
0: जी,
1: है और मेरे मरते दम तक रहेगा
0: जी। बहुत सुंदर।
1: मैं हमेशा उनसे कहती थी मंदाकिनी जी, मैं इतना प्यार करती थी उनसे, करती हूँ करती रहूंगी, कि मैं हमेशा पंचमदा से कहती थी मैं अगर बड़ी होती मैं आपसे शादी करती।
0: और क्या बात है,
1: इतने क्यूटली वो हंसते थे
0: जी।
1: तो मुझे लगता मेरे गाने में बहुत सारी छवि उनकी आती है, और बाल बराबर आशा का कि उन वो तो आई नहीं सकती, कोशिश बहुत की दादा ने, पर हाँ मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और हुई उनसे, बहुत सीखा। वो बुलाते थे सिटिंग्स में, रिकॉर्डिंग्स में, सिर्फ सुनने के लिए कि सुनो कैसी गाती हैं वो, मतलब खास तौर पर आशा काकी की रिकॉर्डिंग्स कि सिर्फ सुनो सुनो और देखो। मैंने पहला गाना जो दादा के लिए गाया वो परिचय फिल्म, फिर गुलजार अंकल देखिए,
0: अरे वाह।
1: ये मैं कह रही हूँ वक्त कैसे एक खेल रचता है। मंदाकिनी जी, यहाँ एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको और मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि ये वक्त और कुदरत का जो खेला होता है ना, मैंने अंदाज में गाया, जीपीसीपी प्रोडक्शंस
0: जी,
1: शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी,
0: जी,
1: सुमन कल्याणपुर जी, रफी साहब, शमी कपूर जी, सही
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: मैंने जब स्टेज पर गाना शुरू किया था 7 साल की उम्र से, तो मेरा सबसे पहला जो डुएट गाना था स्टेज पर, जो मैंने डुएट गाना गाया
0: जी,
1: वो फिल्म ब्रह्मचारी का गाना था, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे
0: हर जवान,
1: और यही पूरा था ना
0: जीपी
1: सिप्पी प्रोडक्शंस,
0: शमी
1: कपूर जी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी, रफी साहब, सुमन कल्याण
0: जी,
1: वही पूरा देखे खेला,
0: बिल्कुल।
1: मुझे नहीं पता था तब कि कुछ साल बाद मैं इसी सर्कल, इसी ग्रुप का एक हिस्सा बनूंगी,
0: अभिन्न हिस्सा बनेंगे,
1: और अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब पहला और सबसे कामयाब गाना मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर शुरू करूं।
0: जी जी,
1: देखिए
0: जी,
1: ये वक्त का खेला
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो
0: कि वक्त ही है जो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारी पहचान बनाता है
1: उसके आगे
0: या हमारी पहचान मिटा देता है।
1: एकदम।
0: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

बिच्छू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं।

0: चले।
1: तो सुषमा जी ही कहूंगी मैं फिर आपको अभी, क्योंकि मैं सुषमा जी को जी रही हूँ इस वक्त। थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा जी को जीना शुरू करूंगी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी तब कि जब सुषमा जी पूर्णिमा जी आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ी देर में होगा। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गा रही थी तो आपने उस समय के सभी दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था, मसलन शंकर जयकिशन में आप बताई रही हैं, मदन मोहन साहब के साथ, सलील चौधरी, एस डी बर्मन काका जो आप कह रही है, नौशाद साहब के साथ,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बप्पी लाहिड़ी, रविंद्र जैन, राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी और चित्रगुप्त साहब के साथ भी आप।
2: बिल्कुल बिल्कुल, चित्रगुप्त अंकल के साथ मैंने

0: काफी भोजपुरी गाने गाए।
1: अच्छा।
0: और उस वक्त आनंद मिलिंद उनको असिस्ट करते थे
1: जी, और बाद में आपने उन्हीं के सुपुत्र आनंद मिलिंद साहब के साथ बहुत गाने गाए।
0: हाँ, अच्छा मंदाकिनी जी, देखो हाँ, मुझे आज कैसी कैसी बातें याद आ रही हैं
1: जी।
0: जो मैंने पहला शो अपना किया ना, पता आपको एक फिल्म आई थी औलाद,
1: जी
0: उससे पहले एक फिल्म आई थी, शायद वो फिल्म का नाम भी लाडला था,
1: लाडला
0: उसमें निरुपा रॉय जी थी शायद। एक गाना था उसका,

0: ये मैं इतना गाती थी सालों बाद। ये चित्रगुप्त अंकल का म्यूजिक है अगर मैं गलत नहीं
1: हूँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: सालों बाद मैंने आनंद मिलिंद के लिए लाडला फिल्म में ही गाना गाया। देखिए आप देख रही हैं, मैं
1: समय खुद को दोहराता हूं।
0: देखिए एक गाना आया था कब तक हुजूर रूठे रहोगे औलाद फिल्म का, वो मैं इतना गाती थी। ये नहीं पता था कि ये जो मैं इतना गाती हूँ गाना, जिन म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना मैं गा रही हूँ, उन्हीं के बेटों के साथ सालों बाद मैं एक टीम बनाऊंगी, एक बहुत ही सफल टीम।
1: बहुत बहुत,
0: ये वक्त का खेला ये होता है।
1: और ये आपसे बात करके हम भी महसूस कर रहे हैं कि देखिए वक्त आपको किस तरह से कहां कहां जोड़ता है
0: ना।
1: बिल्कुल।
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: बॉम्बे टॉकीज,
4: साइंस, लाइट्स,
5: साउंड,
4: कैमरा, एक्शन।

0: आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जम्बो जेट, जम्बो जेट, लंडन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्ना भेट, जम्बो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
3: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
3: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। दोस्तों, प्रकृति की खूबसूरती को शब्दों में बांधना आसान नहीं, लेकिन महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रसिद्ध रचना कामायनी में सुबह के जागते हुए प्रकृति संसार को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया है।
1: कितनी खूबसूरत तस्वीर बनती है इन पंक्तियों से। रात बीत रही है, सुबह दस्तक दे रही है और आसमान से तारे धीरे धीरे ओझल हो रहे। पक्षियों का कलरव शुरू हो गया है, हवा के साथ नई कोपले झूम रही है और फूलों से लदी लटाएं जैसे सुबह के स्वागत में रस से भरी गागर ले आई हो।
0: यानी कुछ ही पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने एक ऐसी सुबह हमारे सामने रख दी जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और शायद यही तो प्रकृति की खूबसूरती है, वो हर सुबह एक नई कविता लिखती है।
1: और इसी खूबसूरत एहसास के साथ बढ़ते हैं युववाणी के इस शाम में आगे।
0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कीर्ति।
1: और मैं हूं आपका दोस्त ऋषि। आप सभी को हमारा ढेर सारा नमस्कार।
0: शाम का ये वक्त कुछ ऐसा ही होता है, दिन भर की भाग दौड़ थोड़ी थमती है और हाथ में चाय की गर्मा गर्म प्याली होती है और मन करता है कि बस कुछ अच्छा सा सुना जाए, कुछ दिलचस्प बातें हों और कुछ पल अपने लिए भी निकाले जाएं। तो अगर आपकी भी शाम की चाय तैयार है तो उसमें युववाणी की यह महफिल भी शामिल कर लीजिए।
1: दोस्तों, जहां भी आप हैं बस जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि युववाणी की शाम तभी तो पूरी होती है जब आप हमारे साथ होते हैं।
0: और आज की शाम भी लेकर आई है कुछ खास बातें, कुछ ऐसी बातें जिनका रिश्ता हम सबकी जिंदगी से है और उस खूबसूरत दुनिया से भी जिसका हिस्सा हम हैं।
1: जी हाँ, आज बातचीत होगी प्रकृति और वन्य जीवों की और शुरुआत होगी एक बेहद प्यारे से जीव रेड पांडा से।
0: लेकिन बात सिर्फ रेड पांडा तक सीमित नहीं रहेगी। हम बात करेंगे कि आखिर इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना क्यों जरूरी है। जंगल और वाइल्ड लाइफ सुरक्षित रहेंगे तो हमारा पूरा इकोसिस्टम पर इसका क्या असर पड़ेगा और हमारी धरती को सुरक्षित रखने में हमारी अपनी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है।
1: और बात होगी पॉल्यूशन और वाइल्ड लाइफ की भी। प्लास्टिक, कचरा और बढ़ता प्रदूषण किस तरह प्रकृति, आवास और वन्य जीवों को प्रभावित करते हैं।
0: और जब बात जिम्मेदारी की हो तो युवाओं की भूमिका कैसे भूल सकते हैं। देखेंगे कि रोज़मर्रा की हमारी छोटी छोटी आदतें जैसे कि पानी और बिजली बचाना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करना या फिर सोच समझ कर चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये सब प्रकृति के लिए किस तरह मायने रखती हैं।
1: साथ ही बात होगी हैबिटेट कंजर्वेशन की, क्योंकि जंगल, नदियाँ और प्रकृति आवास सिर्फ वन्य जीवों का घर नहीं बल्कि हमारी पूरी इकोलॉजिकल बैलेंस का अहम हिस्सा है।
0: और आज के डिजिटल दौर में युवाओं की एक और ताकत है और वो है सोशल मीडिया। तो ये भी जानेंगे कि अपनी डिजिटल प्रेजेंस का इस्तेमाल हम नेचर और वाइल्ड लाइफ के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किस तरह से कर सकते हैं।
1: यानी रेड पांडा से शुरू होने वाली हमारी ये बातचीत हमें एक बड़े सवाल तक लेकर जाएगी। क्या किसी एक स्पीसीज को बचाने की कोशिश दरअसल पूरे इकोसिस्टम को बचाने की दिशा में एक कदम हो सकती है?
0: और शायद यही आज की सबसे खूबसूरत बात है कि प्रकृति के लिए किए गए छोटे छोटे प्रयास कभी छोटे नहीं होते। एक जागरूकता की बात, एक जिम्मेदार आदत और एक सही कदम किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं।
1: तो आज की युववाणी में प्रकृति से जुड़ी इस खूबसूरत बातचीत के साथ साथ देश दुनिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अपडेट्स भी होंगे।
0: और अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं तो रोजगार से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी हम आपके लिए लेकर आए हैं।
1: यानी शाम का ये सफर रहेगा जानकारी से भरपूर, क्योंकि आज की बातचीत में कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो शायद आपको अपने आसपास की प्रकृति को एक नए नजरिए से देखने का मौका दे।
0: तो दोस्तों, आवाज का ये सफर और संगीत की ये महफिल को शुरू करते हैं प्यारे से गीत के साथ।

0: दोस्तों, अभी अभी सुना था आपने फिल्म नया दौर का ये गीत, जिसे गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। संगीत दिया था ओपी नैयर ने और गीतकार थे साहिर लुधियानवी।
1: वैसे ऋषि, आज की तारीख पर अगर हम वाइल्ड लाइफ की दुनिया की तरफ थोड़ा ध्यान दें तो एक खास नाम सामने आता है, और वो है रेड पांडा।
0: हाँ, और इसकी वजह भी खास है, क्योंकि आज यानी 19 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रेड पांडा के लिए अलग से एक दिन मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
1: और यही सवाल इस पूरी बातचीत की शुरुआत करवाता है। रेड पांडा ऋषि मुख्य रूप से ईस्टर्न हिमालयाज और साउथ वेस्टर्न चाइना की पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। पेड़ों पर रहना, बैम्बू और दूसरे प्राकृतिक फूड सोर्सेज पर निर्भर रहना, इसकी पूरी लाइफ उसकी नेचुरल हैबिटेट से जुड़ी हुई है।
0: मतलब रेड पांडा की बात करते हुए हम सीधे उसके हैबिटेट की बात पर पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब किसी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की जिंदगी उसके जंगल से इतनी जुड़ी हो तो जंगल में होने वाला कोई भी बदलाव उस स्पीशीज को प्रभावित करता है, और रेड पांडा के सामने भी यही बड़ी चुनौती है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन।
0: और इसका असर सिर्फ रहने की वजह तक सीमित नहीं रहता। जंगल का क्षेत्र कम हुआ तो भोजन, शेल्टर और सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाने की संभावना भी प्रभावित होती है।
1: इसीलिए रेड पांडा को IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, और इंटरनेशनल रेड पांडा डे का उद्देश्य सिर्फ इस स्पीशीज का नाम याद रखना नहीं है दोस्तों, बल्कि लोगों का ध्यान इस बात की ओर ले जाना भी है कि इसके हैबिटेट और कंजर्वेशन के लिए काम करना क्यों ज़रूरी है।
0: वैसे यहाँ एक बात और दिलचस्प है कृति, हम अक्सर किसी इंडेंजर्ड स्पीसीज की संख्या के बारे में सुनते हैं तो सोचते हैं एक स्पीसीज कम हो रही है, लेकिन नेचर में कहानी इतनी सीधी नहीं होती।
1: बिल्कुल, किसी स्पीशीज का अस्तित्व उसके आसपास के जंगल, दूसरे जीवों, पौधों और फूड चेन से जुड़ा होता है, बहुत गहराई से जुड़ा होता है। इसीलिए एक स्पीशीज को बचाने की कोशिश कई बार उसके पूरे हैबिटेट को बचाने की कोशिश भी बन जाती है।
0: और शायद यही वजह है कि कंजर्वेशन की चर्चा सिर्फ जंगलों या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि आखिरकार सवाल हमारे सामने भी आता है कि हम जिस एनवायरनमेंट का हिस्सा है उसके प्रति हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है या फिर नहीं।
0: और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें थोड़ा और व्यापक नजरिया रखना होगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि रेड पांडा की कहानी सिर्फ रेड पांडा की कहानी नहीं है, ये हमें बताती है कि वाइल्ड लाइफ, जंगल और एनवायरनमेंट एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं।
0: तो इंटरनेशनल रेड पांडा डे से शुरू हुई हमारी ये बातचीत अब आगे बढ़ेगी इस कनेक्शन की तरफ।
1: जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के बीच ये रिश्ता आखिर कैसे काम करता है, और इकोसिस्टम के संतुलन में जंगल और वन्य जीवों की क्या भूमिका है।
0: लेकिन उससे पहले थोड़ा संगीत हो जाए।
1: बिल्कुल, सुनते हैं खूबसूरत गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अभी अभी जो आप गीत सुन रहे थे वो था फिल्म भाग मिल्खा भाग का, जिसे गाया था श्रेया घोषाल और जावेद बशीर ने। गीतकार थे प्रसून जोशी, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने।
4: सर ऋषि, एक बात बताइए।
3: पूछिए।
4: अगर किसी जंगल से अचानक सारे पक्षी गायब हो जाएं, कुछ जानवरों की संख्या बहुत कम हो जाए और पेड़ पौधों की विविधता भी घटने लगे, तो क्या वो जंगल फिर भी पहले जैसा ही रहेगा?
3: देखने में शायद जंगल वही लगेगा, पेड़ भी होंगे, जमीन भी होगी, लेकिन उसके अंदर चल रही पूरी नेचुरल प्रोसेस बदलने लगेगी।
4: बिल्कुल, यही तो समझने वाली बात है। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, वहाँ हर चीज किसी ना किसी चीज से जुड़ी है। कोई जीव बीज फैलाता है तो कोई जानवर दूसरे जीवों की संख्या को नियंत्रित करता है, और इस तरह प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है।
3: बिल्कुल, यानी दोस्तों जंगल में कोई भी जीव सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा होता है, उसकी मौजूदगी का असर किसी और जीव पर, किसी पौधे पर या पूरे हैबिटेट पर पड़ सकता है।
4: बिल्कुल, उदाहरण के लिए जैसे पक्षियों और दूसरे जीवों द्वारा बीजों का फैलाव देखिए। कई पौधों के बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं वहां, और फिर नए पौधे उगते हैं और जंगल का रीजनरेशन होता रहता है।
3: बिल्कुल, और दूसरी तरफ प्रीडेटर्स भी इकोसिस्टम में एक जरूरी भूमिका निभाते हैं। अगर किसी इकोसिस्टम में किसी एक स्पीशीज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो वेजिटेशंस और फूड रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ सकता है। प्रीडेटर्स और दूसरे नेचुरल कंट्रोल्स इस बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा ऋषि, यानी प्रकृति में बैलेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई एक व्यक्ति जाकर बना देता है। ये तो वही लगातार चलने वाली एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हर स्पीशीज की अपनी एक भूमिका होती है।
3: बिल्कुल, और इसका कनेक्शन जंगल से बाहर भी जाता है। हेल्दी फॉरेस्ट मिट्टी, पानी और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। जंगलों में पेड़ पौधे बारिश के पानी को जमीन में जाने में मदद करते हैं और मिट्टी के कटाव को कम करने में भी भूमिका निभाते हैं।
4: बिल्कुल, इसीलिए जब हम जंगल बचाने की बात करते हैं तो दोस्तों हम सिर्फ पेड़ों को बचाने की बात नहीं कर रहे होते, हम उस पूरे नेटवर्क को बचाने की बात कर रहे होते हैं जिसमें वन्य जीव, पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी और क्लाइमेट सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं।
3: और अगर इस नेटवर्क की किसी एक कड़ी पर लगातार दबाव पड़े तो उसका असर आगे की कड़ियों पर भी दिखाई दे सकता है।
4: बिल्कुल, इसीलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को अलग अलग करके देखना बहुत मुश्किल है। देखिए, जंगल सुरक्षित होंगी तो वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट सुरक्षित होंगे, वाइल्ड लाइफ सुरक्षित होगा तो इकोसिस्टम की नेचुरल प्रोसेसेस बहुत बेहतर तरीके से चलती रहेंगी।
3: बिल्कुल सही कहा, और यही वजह है कि किसी एक स्पीशीज के संरक्षण की बात करते हुए भी हम अक्सर उसके पूरे हैबिटेट की बात करते हैं।
4: तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी जंगल के बारे में सुने या फिर किसी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के संरक्षण की खबर पढ़ें तो उसे सिर्फ एक जानवर या फिर कुछ पेड़ों की कहानी बिल्कुल मत समझिएगा। उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा होता है,
3: और उस इकोसिस्टम का हिस्सा हम भी है।
4: बिल्कुल, इसीलिए अगला सवाल भी हमसे ही जुड़ता है। अगर प्रकृति के इस बड़े सिस्टम में हम भी शामिल है तो आखिर हमारी अपनी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है?
3: इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं एक और गीत।

0: दोस्तों, अभी अभी जो आप गीत सुन रहे थे वो था फिल्म परिणीता का, जिसे गीतकार थे स्वानंद किरकिरे, संगीत दिया था शांतनु मोइत्रा ने और इसकी मधुर बोल गाया था सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।
1: सर ऋषि, अभी हमने बात की कि जंगल और वाइल्ड लाइफ एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, लेकिन जब बात एनवायरनमेंट की होती है तो एक सवाल हमसे भी बनता है कि आखिर हम इससे क्या कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि पॉल्यूशन की बात कर रहे तो इसका असर सिर्फ हमारे आसपास की हवा या पानी पर नहीं पड़ता। प्लास्टिक और कचरा जब जंगलों और प्रकृति हैबिटेट तक पहुंचता है तो वहां रहने वाले वाइल्ड लाइफ के लिए भी परेशानी खड़ी होती है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों ज़रा सोचिए, हम में से हर व्यक्ति रोज़ न जाने कितने छोटे छोटे डिसीजंस लेता है कि क्या इस्तेमाल करना है, कितना कचरा पैदा करना है और उस कचरे को कहाँ फेंकना है, पानी और बिजली का कितना इस्तेमाल करना है। यही छोटे छोटे फैसले मिलकर इन्वायरमेंट पर बड़ा असर डालते हैं।
0: और यहीं से आती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बहुत बड़ा अभियान चलाए। शुरुआत अपने रोज़मर्रा से के व्यवहार से भी हो सकती है, जैसे रीयूजेबल चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाना, ज़रूरत ना होने तो सामान ना खरीदना, कचरे को इधर उधर ना फेंकना और जहां संभव हो वेस्ट को अलग अलग करके डिस्पोज करना।
1: और दोस्तों एक बात बहुत ज़रूरी है, प्लास्टिक सिर्फ कचरे की समस्या नहीं है। जब प्लास्टिक और दूसरे पॉल्यूटेंट्स नेचुरल इन्वायरमेंट में पहुंचते हैं तो वे लंबे समय तक वहां बने रह सकते हैं और सॉइल, वाटर और वाइल्ड लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कम इस्तेमाल करना कई बार बाद के कचरे को संभालने से ज़्यादा प्रभावी कदम होता है।
0: बिल्कुल, और पानी की बात करें तो पानी बचाना भी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का ही हिस्सा है, क्योंकि नदियाँ, तालाब और वेटलैंड्स सिर्फ हमारे लिए पानी के स्रोत नहीं हैं, ये स्पीसीज के हैबिटेट भी है।
1: और यही वो जगह है जहाँ युवाओं की भूमिका और भी खास हो जाती है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करना, वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करना।

0: पानी बिजली की बचत करना और ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें खरीदना, ये बहुत छोटे कदम होंगे लेकिन इनका असर कलेक्टिव लेवल पर काफ़ी बड़ा हो सकता है।
1: साथ ही रिस्पॉन्सिबल कंसम्पशन का मतलब ये भी है कि किसी चीज़ को खरीदने से पहले हम एक पल सोचें, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है, क्या इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: और युवाओं के पास सिर्फ अपनी आदतों को बदलने की ताकत नहीं बल्कि उनके पास अपनी आवाज़ और आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाने की ताकत भी है। आज सोशल मीडिया के ज़रिए कोई इन्फॉर्मेटिव पोस्ट, शॉर्ट वीडियो या फिर सही इन्वायरमेंटल मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।
1: लेकिन यहाँ एक जिम्मेदारी और जुड़ती है, सोशल मीडिया पर इन्वायरमेंट से जुड़ी कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना। अवेयरनेस तभी यूजफुल है जब इन्फॉर्मेशन सही हो।
0: बिल्कुल सही कहा ऋषि, और बदलाव की शुरुआत हमेशा किसी बड़े मंच से हो ये तो ज़रूरी नहीं, अपने घर से, अपने कॉलेज, अपने वर्क प्लेस से या फिर अपने आसपास की एक छोटी सी जगह से भी बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी आदत बदलता है तो शायद फर्क छोटा दिखाई दे, लेकिन जब वही सोच बहुत सारे लोग अपनाते हैं तो तस्वीर बदलने लगती है।
0: तो बात आखिरकार दोस्तों बहुत सीधी सी है, धरती हमारी है लेकिन सिर्फ हमारी भी तो नहीं है, इसे उन तमाम जीवों के साथ साझा करना है जो इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है।
1: और पर्यावरण संरक्षण का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना नहीं बल्कि उन पेड़ों को, पानी के स्रोतों, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट को सुरक्षित रखने की कोशिश करना भी है जिन पर पूरा इकोसिस्टम निर्भर करता है।
0: और अगर बदलाव की शुरुआत करनी है तो शायद सबसे सही जगह पता है क्या है, हमारी अपनी आदतें।
1: छोटे कदम लेकिन सोच बड़ी,
0: यही हो सकती है हमारी धरती के लिए एक जिम्मेदार शुरुआत। तो दोस्तों हमारी महफिल तो यूं ही जारी रहेगी, लेकिन आइए पहले सुनते हैं गीत।

0: दोस्तों, अभी अभी आपने जो गीत सुना था वो था फिल्म वास्तव का, जिसे गाया था सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने, गीत दिया था समीर ने और संगीत दिया था जतिन ललित ने।
1: सर ऋषि, अभी हमने जिम्मेदारी की बात की, लेकिन अब सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आखिर कैसे दिखाई दे।
0: यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम आज से ही कर सकते हैं बिना किसी बड़े बदलाव के?
1: और शायद यही बहुत सिंपल सी बात काम आती है कि स्मॉल एक्शंस बट बिग इम्पैक्ट। बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा बड़े कदमों से नहीं होती दोस्तों, कई बार हमारी रोज़ की छोटी छोटी आदतें भी इन्वायरमेंट पर बड़ा असर छोड़ती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। वैसे प्रकृति और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा सिर्फ हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित नहीं है, भारत में इसके लिए कानून प्रावधान भी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 देश में वन्य जीवों और उनके संरक्षण से जुड़ा एक प्रमुख कानून है।
1: और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश में कानून का एक पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है। लेकिन कानून अपनी जगह है और हमारी रोज़मर्रा की जिम्मेदारी वो अपनी जगह।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ कानून या किसी अथॉरिटी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
1: बिल्कुल, जैसे कि पानी, हम अक्सर नल खुला छोड़ देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना हमेशा छोटी बात लगे, लेकिन पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है। इसीलिए जितना ज़रूरत हो दोस्तों उतना ही इस्तेमाल करें, एक सिंपल लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैबिट है।
0: यही बात बिजली पर भी लागू होती है। कमरे से बाहर निकलते समय अननेसेसरी लाइट और अप्लायंसेस बंद करना, दिन की रोशनी का इस्तेमाल करना, ये छोटी आदत है लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन की दिशा में हमारे हिस्से का कदम है।
1: बिल्कुल, और फिर आता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। हर बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाने वाली प्लास्टिक की चीज़ों को कम करना, रीयूजेबल अल्टरनेटिव्स चुनना और प्लास्टिक वेस्ट को खुले में ना फेंकना, ये वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है।
0: क्योंकि प्लास्टिक और दूसरे तरह का कचरा जब नेचुरल हैबिटेट तक पहुँचता है तो वाइल्ड लाइफ के लिए भी खतरा बन सकता है। इसीलिए कचरे को रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करना भी कंजर्वेशन का हिस्सा है।
1: और रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन का मतलब सिर्फ कम खरीदना नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है कि हम सोच समझकर खरीदें, ज़रूरत के हिसाब से खरीदें और चीज़ों को जितना संभव हो उतने लंबे समय तक इस्तेमाल करें।
0: यानी अगली बार कुछ खरीदने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? ये सवाल हमारी जेब के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो सकता है।
1: और दोस्तों, इन बातों को सुनकर शायद लगे कि ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही तो इस पूरे विचार की खासियत है। अगर हजारों लाखों लोग अपनी रोज़मर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाएं तो कलेक्टिव इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों यानी इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सिर्फ कानून बनाने या बड़े कैंपिंग चलाने की बात नहीं है,
1: बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझने की भी बात है। कानून हमें प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क देते हैं, लेकिन प्रकृति की प्रति संवेदनशील व्यवहार उस प्रोटेक्शन को जमीन पर मजबूत बनाता है।
0: तो याद रखिए, स्मॉल एक्शंस बिग इम्पैक्ट।
1: पानी हो या बिजली, प्लास्टिक हो या फिर कंजम्पशन, छोटा कदम आपका हो सकता है लेकिन उसका असर हमारी पूरी धरती और उस पर रहने वाली वाइल्ड लाइफ तक पहुंच सकता है।
0: और जब छोटे छोटे कदम एक साथ आगे बढ़ते हैं
1: तो बदलाव सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस भी होने लगता है। चलिए इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं हमारा आज का अगला गीत।

0: दोस्तों, अभी अभी जो आपने गीत सुना वो था फिल्म माय नेम इज़ खान का, जिसे गाया था शफकत अमानत अली ने और गीत दिया था निरंजन अयंजर ने, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने।
1: से ऋषि, आज दुनिया के बड़े मंचों की अगर हम बात करें तो एक ऐसा समूह है जिसका नाम पिछले कुछ वर्षों में लगातार चर्चा में रहा है और वो नाम है ब्रिक्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि आखिर ब्रिक्स की शुरुआत हुई कहाँ से थी और आज इतना बड़ा मंच कैसे बन गया?
0: बिल्कुल, इसकी कहानी शुरू होती है ब्रिक्स से, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना से।
1: बिल्कुल, वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इन देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई दोस्तों, और फिर 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में पहला ब्रिक्स समिट आयोजित हुआ। और फिर इस समूह की कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया, 2011 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक बन गया ब्रिक्स, यानी कि नाम में आया एस और समूह का दायरा भी बढ़ा।
0: लेकिन ब्रिक्स की यात्रा यहीं नहीं रुकी, 2024 से इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई इसके फुल मेंबर बने,
1: और 2025 में इंडोनेशिया भी फुल मेंबर के रूप में शामिल हुआ। यानी जो समूह कभी सिर्फ और सिर्फ चार देशों से शुरू हुआ था, आज उसकी 11 फुल मेंबर्स है। यानी कि ब्रिक्स का दायरा दोस्तों लगातार बढ़ रहा है और इसका मकसद सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, ये देश के फिनांस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट और इंटरनेशनल गवर्नेंस जैसे कई मुद्दों पर कोऑपरेशन की बात करते हैं।
0: और अब आते हैं इस सफर के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर। वर्ष 2026 में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी की।
1: बिल्कुल, भारत की चौथी ब्रिक्स चेयरशिप के दौरान इसकी थीम रखी गई बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी।
0: यानी रीसलाइंसेस बदलती परिस्थितियों के सामने मौजूदी इनोवेशन यानी एक सॉल्यूशन कॉरपोरेशन यानी मिलकर आगे बढ़ना और सस्टेनेबिलिटी यानी विकास के साथ पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखा।
1: और समिट के समापन पर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इसमें मल्टीलेटरलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन और इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर सहयोग का महत्व दिया गया। साथ ही फिनेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, क्लाइमेट और सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की बात भी सामने आई दोस्तों।
0: भारत की चेयरशिप के दौरान लोकल करेंसी पेमेंट्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रीसलाइंड सप्लाई चेन, फूड सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म कॉरपोरेशन जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया।
1: तो दोस्तों, ब्रिक्स की ये पूरी यात्रा हमें एक बात जरूर दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दुनिया लगातार बढ़ रही है। 2006 में चार देशों के एक मन से शुरू हुई ये पहल आज कई देशों और अलग अलग क्षेत्रों में कोऑपरेशन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुकी है।
0: और इसका महत्व सिर्फ सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय बैठक को तक सीमित नहीं है।
1: बिल्कुल, जब देशों के बीच टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में कोऑपरेशन बढ़ता है तो उसका असर आने वाले समय में आम लोगों और खासकर युवाओं तक भी पहुंच सकता है। इसीलिए ब्रिक्स जैसी खबरों को समझना सिर्फ करंट अफेयर्स की तैयारी मत समझिएगा दोस्तों, बल्कि ये जानना भी है कि दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है और भारत उसमें किस तरह की भूमिका निभा रहा है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आपको ब्रिक्स का नाम सुनाई दे तो सिर्फ 5 अक्षरों का ये नाम याद मत रखिएगा।
1: याद रखिएगा इसकी यात्रा ब्रिक्स से ब्रिक्स तक, चार देशों से बढ़ते हुए आज के विस्तृत समूह तक, और सहयोग, विकास तथा ग्लोबल साउथ की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत करने की इसकी कोशिशों तक।
0: और इसी के साथ अब बढ़ते हैं युवाणी के अगले हिस्से की और सुनते हैं एक अगला गीत।

0: दोस्तों, अभी अभी आप जो गीत सुन रहे थे वो था फिल्म सुरमा का, जिसे गाया था दिलच दोशांग ने, गीत दिया था गुलजार ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने।
1: और अब युववाणी में बारी है उन खबरों की जिनका इंतज़ार बहुत से युवा करते हैं, यानी कि रोजगार अपडेट की। हम बात करते हैं MPESB यानी मध्य

0: प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से पुलिस कांस्टेबल यानी कि आरक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 सितंबर से शुरू होंगे और 6 अक्टूबर तक चलेंगे।
1: वहीं एमपीईएसबी की सब डियर और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले से जारी है और इसकी लास्ट डेट 23 सितंबर है, यानी इच्छुक कैंडिडेट्स के पास आवेदन के लिए भी कुछ ज़्यादा समय नहीं है।
0: तो दोस्तों, आज की रोजगार अपडेट में खास बात यही है कि चाहे आपके लक्ष्य सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर कुछ, अपने पसंदीदा एग्जाम की नोटिफिकेशंस और डेडलाइन को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है।
1: और दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी डेट्स और बाकी जरूरी इंस्ट्रक्शन जरूर चेक करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि तैयारी में मेहनत के साथ साथ सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही जरूरी है।
1: और देखते ही देखते दोस्तों, शाम का ये खूबसूरत सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। आज की शाम हमें बात करी प्रकृति की, वाइल्ड लाइफ की, रेड पांडा से लेकर हमारी धरती के प्रति हमारी जिम्मेदारी तक।
0: बिल्कुल, और साथ ही देश दुनिया की कुछ ज़रूरी जानकारियों से भी रूबरू हुए। कोशिश यही रही कि युवाणी की ये शाम आपके लिए सिर्फ जानकारी से भरी ना हो, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी छोड़ जाए जो हमारे साथ थोड़ी देर और रहे।
1: तो आज की इस शाम से अगर कोई एक बात आपने साथ लेकर जा रहे तो बस इतना याद रखिए, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते रहिए और अपनी धरती के लिए भी थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा ध्यान जरूर निकालिए।
0: तो दोस्तों, अब दीजिए इजाजत, आपके साथ थी मैं कीर्ति
1: और मैं ऋषि।
0: उम्मीद है युवाणी की ये शाम आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में एक अच्छी सी सोच छोड़ गई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नई शाम, नई बातों और एक नए अंदाज के साथ।
1: तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और यूं ही जुड़े रहिए
0: युवाणी के साथ। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन से भजन संध्या के इस पावन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का मैं दुर्गा शंकर सूर्यवंशी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, भक्ति संगीत केवल कानों को भाने वाला सुर ताल नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से सीधा संवाद है। जब हम पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर के चरणों में स्वर अर्पित करते हैं तो मन की सारी व्याकुलता दूर हो जाती है और एक असीम शांति का अनुभव होता है। संगीत जब भक्ति से जुड़ता है तो वह साधना बन जाता है। आइए इसी पावन अनुभूति के साथ आज के इस भजन संध्या का आरंभ करते हैं और सुनते हैं आज का पहला भजन।

श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में संगीत को ईश्वर प्राप्ति का सबसे सहज और सुलभ मार्ग माना गया है। शास्त्रों में नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है, जिसमें कीर्तन यानी प्रभु के गुणों का गान करना अत्यंत फलदायी बताया गया है। जब कोई भक्त लय और ताल में लीन होकर अपने आराध्य को याद करता है तो उसके भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। आइए भक्ति के इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज के अगले भजन की ओर।

पावन धारा सीधे हृदय को छू जाती है। दोस्तों, भजन और सामान्य गीत में यही सबसे बड़ा अंतर है कि सामान्य संगीत केवल मनोरंजन करता है, जबकि भक्ति संगीत हमें अंतरात्मा से जोड़ता है। इसमें न तो किसी दिखावे की आवश्यकता होती है और न ही किसी विशेष ज्ञान की। यहाँ केवल भाव और श्रद्धा ही सर्वोपरि है। कहते हैं कि सच्चे मन से गाया गया एक छोटा सा नाम जप भी परमात्मा तक पहुँच ही जाता है। तो चलिए इसी निष्काम भक्ति के भाव को महसूस करते हुए सुनते हैं आज का अगला भजन।

क्या अद्भुत आनंद की अनुभूति है उज्जैन की इस पावन अवंतिका नगरी में, जहां हर ओर महाकाल की कृपा बरसती है। भक्ति संगीत का महत्व और भी दोगुना हो जाता है। संगीत की ये सात स्वर जब ईश्वर की वंदना करते हैं तो पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। संध्या के इस शांत समय में जब हम अपने दिन भर के तनाव को भूलकर प्रभु चिंतन में डूबते हैं तो मन तरोताजा हो उठता है। आइए स्वर और साधना के इस सफर को जारी रखते हैं और सुनते हैं आज का अगला भजन।

रस में डूबी यह शाम निरंतर ढलती जा रही है, लेकिन मन की शांति और गहरी होती जा रही है। श्रोताओं, संगीत में वह शक्ति है जो बिछड़े हुए भावों को एक सूत्र में पिरो देती है। जब हम समूह में या एकांत में बैठकर भजन सुनते हैं तो हमारे भीतर प्रेम, करुणा और समभाव का संचार होता है। भक्ति संगीत हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसी विश्वास और समर्पण के भाव से परिपूर्ण आइए सुनते हैं आज की इस श्रृंखला का अंतिम भजन।

श्रोताओं, आज की यह भजन संध्या अपने समापन की ओर बढ़ रही है। आज के इस आधे घंटे के सफर में हमने जाना कि किस प्रकार भक्ति संगीत हमारे जीवन में शांति, सकारात्मकता और आध्यात्म का समावेश करता है। सुरों और शब्दों का यह संगम केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है। आशा है कि आज के इन भजनों ने आपके मन को असीम शांति और भक्ति का अनुभव कराया होगा। अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आकाशवाणी उज्जैन की पूरी टीम की ओर से अपने मित्र दुर्गाशंकर सूर्यवंशी को दीजिए अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

0: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 6:30 होने को हैं और अब समय है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी सुनवे वारे हमारे सबे भैया और बहनन खो अंशु तिलेठी की नेह और इसने भरी राम राम। भैया बिन्नाहरो, किसान वाणी कार्यक्रम को उद्देश्य है अपने सबे श्रोता भैया बिन्नाहरन तक, किसान भैयान तक, शिक्षित बेरोजगारन तक सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें पहुंचावो। सो ओई क्रम में विभिन्न विषयन पे जो की खेती किसानी या कृषि से संबंधित है हम लेके आप और उनके बीच आ गए हैं। भैया हरो, सूरज की रोशनी हमारे जीवन को आधार है, इकी किरणन से हमो जीवन संचालित होत है। इखो यदि हम सौर ऊर्जा के रूप में जाने और समझें तो जा हमारे लाने बहुत उपयोगी सिद्ध होत है। कैसे? सबसे बड़ी जो समस्या आजकल है पर्यावरण। हम सौर ऊर्जा को जितना ज्यादा उपयोग कर हैं तो हम पर्यावरण को सुरक्षित कर पे हैं। यही बात को ध्यान में रख के किसानन को सौर ऊर्जा से जोड़वे के लाने और उनकी आय बढ़ावे के लाने केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है जिये हम पीएम कुसुम योजना के नाम से जानत हैं। अच्छा भैया बिन्नाहरो, ई योजना के अंतर्गत बंजर या खाली जमीन पे 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं जिसे उत्पादित बिजली को डिस्कॉम बेच के किसान मुनाफा कमा सकते हैं। डीजल पंपों की जगह स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करो जाते हैं जी पे सरकार अनुदान प्रदान करत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जय भैया बिन्नाहरो की मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों सौरीकरण भी ए योजना के अंतर्गत आत है। जा तो हमने बात करी ई योजना के घटकन की, अब बात करते हैं ई योजना से होवे बारे लाभन की। भैया हरो, सोलर पंप और संयंत्रों की कुल लागत पे केंद्र और राज्य सरकार 30% से लेकर 90% तक की आर्थिक सहायता राशि देते हैं। बाकी 40% हितग्राही स्वयं अथवा बैंक लोन के माध्यम से ले सकते हैं। किसान भैया हरे अतिरिक्त बिजली को उत्पादन करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ई योजना के माध्यम से फसलन की सिंचाई के लाने एक सबसे बड़ा लाभ जो हमें प्राप्त होता है वो है कि ई के माध्यम से हमारी डीजल पे निर्भरता कम हो जाते हैं। तो भैया हरो, हम तो जई कहें कि पीएम कुसुम योजना को लाभ लो, सौर ऊर्जा से जुड़ो और अपनी खेती में बिजली से संबंधित खर्चा को कम करो, संगे संगे प्रकृति और ई पर्यावरण की रक्षा करो। भैया हरो, कार्यक्रम में आगे बढ़त हैं और अब आपको हम सुनवाते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नवी बाग भोपाल में मृदा संरक्षण एवं संवर्धन तथा फसल उत्पादन में मिट्टी को महत्व विषय पर विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों से साक्षात्कार पर आधारित जा बातचीत एक स्थल रिकॉर्डिंग है। ई स्थल रिकॉर्डिंग में हमें सहयोग मिलो है महेश सोनी भैया को।
3: किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान श्रोताओं को नमस्कार। स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित आज का एक कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। आज हम हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नवी बाग भोपाल में। यहाँ पर हम विशेषज्ञों से मृदा संरक्षण एवं संवर्धन तथा फसल उत्पादन के लिए मिट्टी के महत्व पर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम मिलते हैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनोरंजन मोहंती से। उनसे संस्थान की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते हैं।
4: किसान भाई नमस्कार। जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है जो हम आईएसएस के नाम पे जाने जाते हैं इंडिया में और मध्य प्रदेश में, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूंगा। ये जो संस्था है ये 1988 से ही हाल में स्थापित है और ये संस्था जो है मृदा के बारे में, मृदा के स्वास्थ्य के बारे में अनवरत और अनगिनत काम कर रहे हैं बहुत। और 1988 से हम किसान भाइयों के लिए जो शोध करते हैं वो शोध के बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला तो है कि मृदा स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हम सॉइल हेल्थ बोलते हैं। ये जो अगर आपका मिट्टी या मृदा अगर स्वस्थ नहीं रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। स्वस्थ मिट्टी एक स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ फल फूल और सब्जियां से लेके जो आपका गेहूं, सोयाबीन जो भी आप कल्टीवेट करते हैं, इसका जो पैदावार होता है और उसमें जो सारे गुण रहना चाहिए प्रोडक्ट में, जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी हमारा खेत से निकलता है, उसमें भी जो गुण होना चाहिए, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वो सब चीज़, अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं होता

0: तो वहाँ उसमें नहीं आता है। इसीलिए ये जो हमारा संस्थान है इसके लिए शोध करते हैं, हमारा वैज्ञानिक है इधर, जो चाहे आप बोले कृषि भौतिकी हो, जो हम सॉइल फिजिक्स बोलते हैं, सॉइल केमिस्ट्री और सॉइल बायोलॉजी और एनवायरमेंट, सॉइल एनवायरमेंट में हम रिसर्च करते हैं। इस रिसर्च से हम ये किसान भाइयों को वो बताते हैं कि देखिए अगर आपका मिट्टी का संरक्षण करना है, जो सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन या सॉइल वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं उसको अगर आप रखते हैं, तो क्या आप मिट्टी का ऊपर भाग जो टॉप सॉइल बोलते हैं उसको आप बचा के रखने से क्या फायदा होगा? क्योंकि सॉइल हेल्थ जो है ना उससे जुड़ा हुआ है। जो मिट्टी का जो ऊपर भाग है, जो आप बहुत बारिश हुआ बह जाता है, उसको आप बचा के नहीं रखेंगे उसमें सारे न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं, जैविक कार्बन भी चला जाता है, जो हम बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी का एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो बोलते हैं जैविक कार्बन, उसका अगर कमी मात्रा में पाया जाएगा आपका सॉइल सिक बीमार हो जाता है, जो हम बोलते हैं ना कि आप बीमार हो जाते हैं अगर कोई चीज का कमी आपका खून में दिखाई देते हैं, आप टेस्ट करते जांच करते तो कैसे पता चलेगा? जब आप टेस्ट करेंगे सॉइल का तब आपको पता चलता है कि हमारा मिट्टी में ये सारे चीज का कमी है। तो इसके ऊपर हम शोध करते, शोध करने के बाद हमने टेस्ट करा दिया, पता चल गया इसमें नाइट्रोजन कमी है या नहीं है, फास्फोरस है, जिंक है कि नहीं है, फिर किसान भाइयों को बताते हैं कि इसमें ये चीज आप अप्लाई करिए, इसमें ये चीज को कमी है, आप ये दवाई जैसे हमको डॉक्टर लिखता है हम उनको बोलते हैं कि ये चीज का आपको एप्लीकेशन करना है। तो ये चीज हो गया कि मिट्टी का आपका जो संरक्षण की बात की है उसके बारे में। सिमिलरली हमारा जो केमिकल जो न्यूट्रिएंट है उसका भी बचा के रखना भी जरूरी है, उसके लिए भी हमको उसी हिसाब से हमको फर्टिलाइजर जो खाद है अप्लाई करना पड़ता है। हम खाली केमिकल फर्टिलाइजर क्यों अप्लाई करें, खाद अप्लाई करें, उसमें भी रासायनिक खाद के साथ अगर हम ऑर्गेनिक जो बोलते हैं ना जैविक खाद, उसमें चाहे आपका कंपोस्ट हो, बायो फर्टिलाइजर हो या फार्म एड मैन्योर जिसको प्रोडक्शन करते हैं, वर्मी कंपोस्ट की बात आजकल चल रहे हैं, उस वो सब चीजों को मिला के करेंगे तो हम सॉइल हेल्थ जो बोलते हैं ना मिट्टी का स्वास्थ्य जो है हम उसको बढ़ा सकते हैं।
1: किसान भाइयों, मृदा संरक्षण बेहतर उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है, इसके लिए प्रशिक्षण भी लिया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आर एस चौधरी से, जो यहां पर किसानों के प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं।
2: मैं डॉक्टर आर एस चौधरी हूं, मैं यहां प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में, और हम किसानों के लिए खासकर मृदा के संरक्षण के लिए कई तरह की ट्रेनिंग देते हैं, और यहां तक कि हमारे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी किसानों को हम बताते हैं डेमोंस्ट्रेशन करके कि मृदा का संरक्षण कैसे करना है। पहली बात तो हम बस सिर्फ ये बताते हैं कि सबसे पहले आपने जो आपका बरसाती जल है उसको दौड़ने के बजाय धीरे धीरे चलने पर मजबूर करना है, रोकना है। कैसे करोगे? कंटूर मेढ़े बनाएं, जैसे मेढ़े बनाते हैं आप ढलान के आर पार। दूसरा कंटूर कल्टीवेशन करनी है, ढलान की दिशा में नहीं, ढलान के आर पार आपको हल चलाना है। इसके बाद आप अपनी रिचार्ज स्ट्रक्चर अपने खेतों में, जहां पर खेती का इस्तेमाल नहीं होता है आपका लैंड, वहां पर रिचार्ज पानी के रिचार्ज के लिए स्ट्रक्चर में पानी को रोकें आपके इस्तेमाल के लिए, और रिचार्ज के लिए पानी बचेगा फार्म पॉन्ड में, आपके तालाबों में पानी हो। इसके अलावा एक जो हमारे यहां योजना चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का है, संरक्षण खेती का। ये संरक्षण खेती जो इसीलिए है कि हम जो है अपनी मृदा को, अपने न्यूट्रिएंट को, अपनी कार्बन को संरक्षित कर सकें जमीन के अंदर। इसमें तीन चीजें प्रमुख हैं कि आप जो नरवई है उसको जला देते हैं, आमतौर पर जला देते थे, अब किसान भाइयों आपने नरवई को जलाना नहीं है। ये नरवई जो है आपके खेत से जो मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी और पोषक तत्व तो बह जाते हैं, उनको बचाती है, और आपके जो खेत में रहने वाले मित्र जीव हैं उनके लिए खाना होता है ये, और ये कार्बन जो है इसके अंदर वो मृदा की कार्बन को बढ़ाती है, और ये मृदा में जब कार्बन ज्यादा अच्छी होगी तो आपके जल का और आपके पोषक तत्वों का जो है संग्रहण मिट्टी के अंदर ज्यादा रहेगा, जो धीरे धीरे आपकी फसल को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पैदावार ज्यादा करता है। तो इस तरह कई तकनीकें हैं जिसको हम किसान भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद अपना मृदा का संरक्षण करने में हमारे किसान भाई सक्षम रहते हैं।
1: सर, जैसे आपने बताया कि इस तरह से जो है हम मृदा का संरक्षण करें, लेकिन यदि कई किसान भाई ऐसे हैं जो दूर दराज रहते हैं, उनको जो है यदि यहाँ प्रशिक्षण लेना हो, इसके बारे में समझना हो, तो वो क्या यहाँ प्रशिक्षण वगैरह देते हैं आप कुछ?
2: जी, हमारे यहाँ छोटे छोटे अंतरालों पे इस तरह के प्रशिक्षण जो है सारा साल भर चलते हैं, और किसी न किसी तरीके में जितनी हमारे यहाँ परियोजनाएं चल रही हैं, हर परियोजनाओं में मिट्टी

0: के स्वास्थ्य के बारे में, मिट्टी के संरक्षण के बारे में, इसके अंदर रहने वाले मित्र जीवों के संरक्षण के बारे में और इसके पोषक तत्वों के संरक्षण के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, कैसे इन सारी चीजों से अपनी मिट्टी को बचाना है, इसके बारे में हम कुछ अंतरालों पर किसान भाइयों को प्रशिक्षण देते रहते हैं। यहाँ बुलाकर भी और उनके गाँव में जाके भी कार्यशालाएं करते हैं और प्रशिक्षण देते हैं।
1: कभी कभी हमारे किसान भाई जो खेत में जो कचरा होता है या जो भी जो बचे हुए अवशेष रहते हैं उनको जलाते हैं, तो ये कितना नुकसानदेह, इसके बारे में हम किस तरह से किसानों को अवेयर करते हैं?
0: हम किसान भाइयों को कई वर्षों से बार बार हर प्रशिक्षण में यही बताते हैं कि जब आप खेत की निर्वही को जलाते हैं, अवशेषों को जलाते हैं, तो ये सारे जो है अवशेष, इसके कारण जो हमारे मित्र जीव हैं वो 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर की सतह तक सारे मर जाते हैं। केंचुए हुए, आपके मकड़े हुए, चींटियां हुई, जो हमारे खेती के लिए बहुत जरूरी है, लाभदायी मृदा के स्वास्थ्य के लिए, वो सब मर जाते हैं। प्रदूषण होता है वातावरण में जाके, जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, मोनोऑक्साइड जाती है, दूसरी गैसें वातावरण में जाती हैं जो हमारे जलवायु परिवर्तन में सहायक होती हैं, गर्मी बढ़ती है और फसलों का उत्पादन कम होता है। तो इससे मिट्टी के न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, कार्बन और अन्य चीजें जो है वो सारी की सारी वो भी मिट्टी से धुल के चली जाती हैं। तो इसलिए हम किसान भाइयों को कहते हैं कि आप हमें हमारी बात मानिए और अपने नरवई को मत जलाइए, इसको खेत में ही संरक्षण, खेती के द्वारा जो हमारे जरी हैं, जो हमारी मशीनें हैं, नोटिल सीड ड्रिल है, हैप्पी सीडर है, इन मशीनों के द्वारा आराम से आप खेत में ही अपने नरवई को मैनेज कर सकते हैं, उसकी स्तर पे मैनेज करते हैं और फायदा लीजिए, वातावरण को बचाइए, अपनी मिट्टी को बचाइए।
2: अब हम बात करते हैं डॉक्टर प्रमोद झा से। पोषक तत्व प्रबंधन से लागत में कमी आती है और उत्पादन के साथ ही आय भी बढ़ती है, तो आइए जानकारी लेते हैं।
3: मैं डॉक्टर प्रमोद झा, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक मनुष्य को विभिन्न तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरह पौधे को भी तकरीबन 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन 17 पोषक तत्वों में कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो मेजर न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाने जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। साथ में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी की हमें मेजर पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, मॉलिब्डेनम। लेकिन किसान भाइयों, इनमें से किसी भी एक न्यूट्रिएंट की अगर जो कमी हो जाए तो हो सकता है कि हमारी जो फसल की पैदावार हो वो सही पैदावार हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप कम से कम 3 वर्ष में एक बार अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर से करवाएं। जब आप अपनी मिट्टी की परीक्षण कराते हैं तो आपको 2 बातों का पता चलता है। एक यह कि हमारे खेत में, हमारी मिट्टी में कौन सी पोषक तत्व की कमी है। दूसरी इस बात का पता चलता है कि कौन सी पोषक तत्व की मात्रा अधिक है। जिस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होगी उसे हमें डालने की आवश्यकता नहीं होगी, और जिस पोषक तत्व की मात्रा की कमी होगी उसे हम अपने खेत में डाल सकते हैं। तो इससे किसान भाई क्या होगा कि हमारी जो लागत है कृषि में वो कम होगी। खास करके हम विगत कई वर्षों से अपने खेत में जैसे DAP का प्रयोग करते आ रहे हैं, और किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ह्रास लॉस नहीं होता है या मिट्टी में ही बना रहता है, लेकिन अनुपलब्ध मात्रा में, अनुपलब्ध के फॉर्म में ये मिट्टी में मौजूद रहता है। तो इससे क्या होता है, जब हम विगत कई वर्षों से DAP को अपने खेत में डालते आते रहते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे फॉस्फोरस की जो उपलब्धता है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो यह हमें तभी पता चलेगा जब हम अपनी मिट्टी की परीक्षण करवाएंगे। और हमें पता है कि DAP आज के डेट में एक बहुत ही कॉस्टली फर्टिलाइजर है, और अगर जो हम अपनी मिट्टी की परीक्षण करके खेत में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डालेंगे या उसकी मात्रा में हम कमी कर पाएंगे तो हमारी लागत बढ़ जाएगी। तो जब तक आप मिट्टी का परीक्षण नहीं कराएंगे तब तक आप सही प्रकार से कृषि से अपनी आय नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरी एक बहुत ही जो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आप क्या करें पोषक तत्व का प्रबंधन में, जो सबसे जरूरी बात है कि हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अब ये कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्यों अच्छी होनी चाहिए,

0: हाँ भाइयों, ऐसा है कि हमारे अगर जो हम अपने खेत से एक चम्मच मिट्टी लेते हैं तो उसमें लाखों की संख्या में, इवन करोड़ों की संख्या में जीवाणु होते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं ये हमारे मित्र होते हैं, बट इनके भी जीवन यापन के लिए उन्हें कार्बन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मिट्टी की उर्वरता बनी रहे तो इन जीवाणुओं का रहना हमारे खेत में अत्यंत आवश्यक होता है, और ये जीवाणु तभी हमारे खेत में रहेंगे जब हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होगी। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होने से न केवल जीवाणु की संख्या में बढ़ोतरी होती है, बल्कि जो हमारा फर्टिलाइजर है, जो यूरिया आप डालते हैं नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए, सल्फर के लिए भी, ये पोषक तत्व के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये हमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसे भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा यह कहना है कि हम अच्छी कृषि पद्धति को अपना के हम अपने खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएं। इसके लिए हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं कि रासायनिक खाद के साथ साथ हम क्या करें, जो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरित खाद है, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे। जब इस प्रक्रिया को हम बार बार अपनाएंगे तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो जाएगी, और जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारी जो भूमि की उर्वरता है वह स्वतः अपने आप धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो किसान भाइयों, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो मूल मंत्र है कि हम अपने मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ा सके उतनी ही अच्छी होगी। इसके लिए हम संरक्षित खेती भी कर सकते हैं, पोषक तत्व प्रबंधन जो मैंने कहा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स जैसे आपके गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट, इनको हम डाल सकते हैं।
1: किसान भाइयों, खेत की मिट्टी एक जीवित इकाई मानी जाती है। इसमें अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसल उत्पादन में सहायक होते हैं। इसके साथ ही मिट्टी की सेहत भी बनाए रखते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, डॉक्टर जे के ठाकुर हमें बता रहे हैं।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जे के ठाकुर है और मैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ और मैं मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान का वैज्ञानिक हूँ। मिट्टी एक जो है वो जीवित निकाय है। अगर हम मिट्टी को देखते हैं तो उसमें 1 ग्राम मिट्टी में करोड़ों जीवाणु हो सकते हैं, और ये जीवाणु जो है वो मिट्टी में बहुत सारी जो क्रियाएं होती है उसका संचालन करते हैं। जैसे कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनका रूपांतरण करने का कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को वातावरण से लेकर पौधे को पहुंचाने का भी काम करते हैं। जैसे आप लोगों को जानकारी होगी कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो वातावरण में उपलब्ध नाइट्रोजन को लेते हैं और वो पौधों को उपलब्ध कराने के या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, जिसको हम लोग जैसे राइजोबियम और लेग्यूम के साथ, जो दलहनी पौधे के साथ उनका जो संबंध के बारे में हम लोग बात करते हैं कि वो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर पौधे को पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारे पोषक तत्व मिट्टी में अघुलनशील अवस्था में होते हैं, वो मिट्टी में उपलब्ध तो होते हैं परंतु ऐसी अवस्था में वो होते नहीं है कि पौधे को उपलब्ध हो पाए। तो बहुत सारे जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो इन पोषक तत्वों को घुलाकर पौधे को प्राप्त करवाते हैं। तो ये दूसरा काम भी मिट्टी में उपस्थित जीवाणु करते हैं। बहुत सारे जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो पौधे को कीटों और रोगों से बचाने का, जिनको हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं, तो वो जीवाणुओं को, जीवाणु जो है वो पौधे को बचाने का भी काम करते हैं, रोगों और कीटों से भी बचाने का कार्य करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा ने। अब महेश सोनी को दे आज्ञा, नमस्कार।
3: तो भैया हरो, चाहती स्थल रिकॉर्डिंग जी में हमने जानो मृदा स्वास्थ्य और मृदा महत्व के बारे में। इमें हमें स्थल रिकॉर्डिंग में सहयोग मिलो तो महेश सोनी भैया को। भैया हरो, जानकारियां हो गई। खूब काम की बातें हो गई और हमने आपको सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताओ। अब तनक मनोरंजन कर लेते हैं, सो हम लेके आ गए हैं बहुत ही नौनी सी गणेश वंदना। जी एक गाँव है बलराम रेकवार में, तो सुनत है जा गणेश वंदना।

भैया हरो, अब आपने जा गणेश वंदना सुनी और गणेश जी की हमने स्तुति करी, कैसे घर घर में गणेश जी विराजे हैं, सो मन आनंद से और भक्ति भाव में डूब भाव है हमाओ। कार्यक्रम में आगे बढ़े भैया हरो, और एक और जरूरी बात आज हम आपोरन से करन चाहू थे, कृषि से संबंधित एक और जानकारी हम आपोरन के लाने लेके आए हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति जा एक ऐसी समिति है जो ग्राम स्तर पे काम करवे बारी सबसे छोटी और बुनियादी सहकारी ऋण संस्था के रूप में जानी जात है या काम करत है। जा समिति सीधे तौर पे किसानन से जुड़ी भई होत है। जा भारत की तीन स्तरीय सहकारी ऋण संरचना की सबसे निचली और अंतिम कड़ी है। अगर इकी संरचना की हम बात करें तो तीन स्तर प्रणाली में जा कृषि साख समिति काम करत है। पहलो सबसे ऊंचो स्तर राज्य सहकारी बैंक, दूसरो मध्य स्तर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, तीसरो निचलो स्तर प्राथमिक कृषि साख समिति। प्राथमिक कृषि साख समिति जा सीधे ग्राम पंचायतन से जुड़ी रहते है। इके प्रमुख कार्य हम आपोरन को बताए देते है, ऋण वितरण करवो इको एक प्रमुख कार्य है, जिमे किसानन को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के लाने कृषि ऋण उपलब्ध कराओ जाते है। दूसरो जो है कृषि सामग्री, किसानन को उचित दामन पे बीज खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराए जाते है कृषि सामग्री के रूप में। तीसरो भैया हरो उपकरण और भंडारण में भी जा मदद करत है, किराए पे कृषि मशीनें लेने होए, उपकरण लेने होए और फसलन के भंडारण में सहायता के लाने भी जा समिति काम करत है। और संगे संगे भैया हरो समर्थन मूल्य पे खरीदी और कई जांगन पे इन समितियन के जरिए समर्थन मूल्य पे धान या गेहूं जैसी फसलन की खरीदी को कार्य भी करो जात है। तो जा हती हमारी प्राथमिक कृषि साख समिति के बारे में एक जानकारी। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह के आधार पे पशुपालन में सलाह दी जाती है कि वर्षा ऋतु में पशुअन में संक्रामक रोग होवे की संभावना रहते है, सो पशुअन को संक्रामक रोगन से बचावे के लाने आवश्यक सावधानी बरते, पशुअन को दूषित चारो ना खिलाए, दूषित पानी सोई ना पिलावे और इस समय अधिक मात्रा में हरो चारो खिलावे से बचे, कैसे इसे अफरा रोग को खतरा बढ़ जाते है। तो जा हती हमारी आज की मौसम पे आधारित जानकारी। अब हम आपको बताए देते हैं इंदौर कृषि उपज मंडी के भाव दिनांक 17 सितंबर के अनुसार। गेहूं को न्यूनतम 2550 और अधिकतम गो 3126, सोयाबीन को 5495 न्यूनतम मूल्य रहो और अधिकतम रहो 6250, चना को न्यूनतम मूल्य रहो 5510 और अधिकतम मूल्य रहो 6600, और मूंग को न्यूनतम मूल्य रहो 6500 और अधिकतम मूल्य रहो 7330, संगे संगे सरसों को 4315 और मटर को भी 1700

0: और पाँच पे मूल्य स्थिर रहो। तो जे हते इंदौर कृषि उपज मंडी के अनुसार 17 सितंबर के मूल्य। तो भैया हरो अब कार्यक्रम में चलवे की ब्रिया हो गई है, अब आज्ञा दो अंशु तिलैठे को और स्वीकारो हमारी नेह स्नेह भरी राम राम।
1: अरे अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशन पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई। और पश्चिम रेलवे के उधना इकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक न्यायाधिकारियों की न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद जीत लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नगोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसूजा कल कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसूजा को 2-1 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए आपको संध्याकालीन सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

शाम 7:21 पर गांव की चौपाल से होगा कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज, जिसमें आप सुनेंगे ग्रामीण जीवन की उपयोगी बातें और मालवी लोकगीत। रात 8 बजे पेश करेंगे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा के। 8:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। भोपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे 20वां एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम डेली हाईलाइट कैप्सूल। अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे रात 10:20 पर। श्रोताओं, अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी देते हैं। कल सुबह 5:52 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। सुबह 6:05 पर सुनिएगा विविध भारती मुंबई से वंदनवार। सुबह 6:35 पर अनुप्रसारित होगा श्री रामचरित मानस गान और संगीत सरिता का अनुप्रसारण होगा सुबह 6:45 पर।

7 बजे आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से होगा भक्तिमय कार्यक्रम महाकाल वंदन। सुबह 7:20 पर उज्जैन की रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे सुप्रभात उज्जैन में। उज्जैनी आरजे कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। सुबह 10 बजे हम पेश करेंगे आपकी फरमाइश। सुबह 11 बजे विविध भारती मुंबई का अनुप्रसारण होगा। कार्यक्रम होगा रंग तरंग। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे सुरीला सफर कार्यक्रम होगा। दोपहर 2 बजे आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम विविधा का प्रसारण होगा दोपहर 2:30 पर। नाट्य तरंग आप सुन सकेंगे दोपहर 3:30 पर। शाम 4 बजे खुलेगा पिटारा, जिसमें आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के। शाम 5 बजे आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से सुनिएगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। भजन संध्या का कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। शाम 6:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। शाम 7:21 पर गांव के चौपाल से होगा कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज, जिसमें आप सुनेंगे ग्रामीण जीवन की उपयोगी बातें और मालवी लोकगीत। 8 बजे हम पेश करेंगे फिल्म संगीत। 8:15 पर आप सुनेंगे डगर विकास की। रात 8:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। रात 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे आपकी फरमाइश। रात 10 बजे आप सुनेंगे 20वां एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम डेली हाईलाइट कैप्सूल, और 10:20 पर पेश करेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा के। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार युवाओं को आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, शासकीय स्कूलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ई स्कूटी का किया वितरण। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 12 लोगों की मृत्यु और अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल इंदौर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत आज स्वच्छ परिवहन और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 3 गुना वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7,400 से अधिक विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण किया। भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्कूटी योजना उन विद्यार्थियों के परिश्रम और प्रतिभा का सम्मान है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अध्ययन करके बीच अपने परिवार और समाज को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि बेटियों को शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर मिलने से केवल उनका जीवन नहीं बदलता बल्कि पूरे परिवार और समाज का वातावरण सकारात्मक बनता है। अंतर्राष्ट्रीय उच्चतर प्रबंधन संस्थान IIWM एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कटनी के संयुक्त तत्वाधान में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं उसके संशोधनों पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों एवं संबंधित हितधारकों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन नियमों की जानकारी, क्षमता वर्धन तथा आधुनिक तकनीकी समाधानों से परिचित कराना था। कार्यशाला में अस्पतालों, क्लिनिक प्रयोगशालाओं एवं औषधीय क्षेत्र से जुड़े 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. M.L. पटेल, निदेशक IIWM ने संस्थान की भूमिका तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं उसके संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत सतना जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद कर कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और अन्नदाताओं के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, नवाचारों एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन में परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मालीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज के प्राकट्य महोत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन कालगणना की नगरी है, विज्ञान और आध्यात्म की धरती है। यह आध्यात्मिक यात्रा के महत्व को रेखांकित करने के साथ वैदिक कालगणना की परम्परा को पुनः प्रतिष्ठित करते हुए वैद्यशाला का भी विकास किया गया है।
2: ये कालगणना की नगरी भी है, ये विज्ञान की धरती भी है, ये आध्यात्म की धरती है, ये दर्शन की धरती है। इसीलिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकसित होते समय के साथ एक तरफ हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का महत्व भी रेखांकित किया, दूसरी कालगणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी का एक नया मॉडल के नाते से उसको पुनर्प्रतिष्ठित करते हुए एक ऑब्जर्वेटरी आधुनिक दृष्टि से भी बनाई है, जिसके आधार पर यहाँ पर पूरे देश और दुनिया के अलग अलग प्रकार के विद्वानों के माध्यम से हम अपने सूर्योदय के साथ समय की गणना के अलावा भी जो गणना के मूल सिद्धांत है, जब उत्तरायण दक्षिणायन या सूर्य मध्य में जब होता है तो उस समय की गणना, ऐसी कई विशेषताओं को लेकर चल रहा है।
0: केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 10 राज्यों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 5,279 करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिपूर्ति की है। इसके अलावा एसएनए स्पर्श के माध्यम से 13 राज्यों के 865 करोड़ 87 लाख रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाई गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को भरोसेमंद, पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2 सड़क हादसों में 12 लोगों की मृत्यु हो गई। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में कल देर रात मां बगलामुखी मंदिर के पास ओडिशा के श्रद्धालुओं से भरी एक कार बरसाती नाले के तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख प्रकट किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं एक अन्य घटना में सागर जिले में बहेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ाकोटा रोड पर स्थित चनाटोरिया के पास आज एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रदेश में मानसून अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 22 सितंबर तक प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर सहित राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक पश्चिमी हिस्से में इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव मीट का आयोजन किया गया। राजगढ़ कलेक्टर ने कल मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत राजस्व कार्यों एवं अभिलेखों के संधारण की स्थिति का जायजा लिया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मुरैना में विश्व ओजोन दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। छिंदवाड़ा में भी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र छात्राओं को ई स्कूटी की सौगात दी जा रही है। अशोकनगर जिले में 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान संचालित किया जा रहा है। देवास में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आज लखपति दीदियों के साथ उद्योग संवाद का आयोजन किया गया। खंडवा में गणेश उत्सव के दौरान पुलिस एवं प्रशासन ने जिले के विभिन्न विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया। नीमच में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। और रीवा में आज भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित सामाजिक चिंतन विषय पर प्रथम व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं, आइए सुनते हैं मालवी बोली में लोकप्रिय कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज।

राम राम। आकाशवाणी उज्जैन मालवी गीतारी गुंज प्रोग्राम में लैके आईक्यो है तमारो अपनो प्रवीण जोशी। आज 19 सितंबर शरद खगोल विज्ञान दिवस का दिन है। आज खास बाता करांगा शासकीय जीवाजी राव वेधशाला का अधीक्षक डॉक्टर साहब राजेंद्र प्रकाश गुप्त जी से। तम तो जानो कि अबार गणपति जी का दिन भी चली रहा है, तो आज गणपति जी का मालवी में भजन भी सुनानो है। पर पहला देश प्रदेश ने बाबा महाकाल की नगरी के साथ सीएम डॉक्टर साहब मोहन यादव जी के शहर का हाल तो जानी ला, मालवी में समाचार सुनी ला।

नमस्कार, मालवी समाचारों के साथ मैं प्रवीण जोशी। पहला बुलेटिन का खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में आए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ 51,000 से अधिक युवाओं के नियुक्ति पत्र वितरण किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब मोहन यादव ने आज 12वीं में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला 7,400 से अधिक छात्रों के ई स्कूटी को वितरण किए। आगर मालवा जिला के नलखेड़ा में सड़क हादसा में 8 लोगों की मौत हुईगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेला में आए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ 51,000 से अधिक नव नियुक्त नौजवानों के नियुक्ति पत्र दिया। अनि अवसर पे श्री मोदी ने कियो कि सरकार नौजवानों के भविष्य की चुनौतियों के वास्ते आवश्यक कौशल और अवसर प्रदान उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कियो कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के वास्ते तेजी से काम कर रही है। इन्हीं उद्देश्य के साथ करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर 2 दिन को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को उद्घाटन कियो। इन्हीं अवसर पे उन्होंने कियो कि भारत आज स्वच्छ परिवहन और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रियो है। उन्होंने कियो कि पिछला 12 बरस में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 3 गुना वृद्धि हुईगी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का 2रा चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगला महीना में अधिकांश राज्यों ने केंद्र शासित प्रदेशों में 34,000 ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण देना शुरू करेगो। पहला चरण में मध्य प्रदेश सहित 14 राज्य में और केंद्र शासित में प्रशिक्षण बैच की शुरू करने की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगला 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण दियो जाएगो। अन्य योजनाओं में युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ियों कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब मोहन यादव ने आज 12वीं में अच्छो से अच्छो प्रदर्शन करने वाला 7,400 से अधिक छात्रों के ई स्कूटी को वितरण कियो। भोपाल का शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कियो कि मुख्यमंत्री स्कूटी योजना उन छात्रों के परिश्रम और प्रतिभा को सम्मान है जिनने कठिन परिस्थिति में अध्ययन कर अपने परिवार और समाज के गौरवान्वित कियो है। उनने आगे कियो कि बेटियों की शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर मिलने से केवल उनको जीवन नहीं बदले बल्कि पूरे परिवार ने साथे समाज का वातावरण सकारात्मक भी बने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब मोहन यादव आज उज्जैन में परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी के महाराज प्रकट महोत्सव में शामिल हुआ। अन्य अवसर पे उन्होंने कियो कि उज्जैन कालगणना की नगरी है, विज्ञान और अध्यात्म की धरती है। यहाँ आध्यात्मिक यात्रा के महत्व को रेखांकित करके साथ वैदिक कालगणना की परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करते हुए वे चालों को भी विकास कियो गयो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब मोहन यादव ने कृषक कल्याण बरस के अंतर्गत सतना जिला में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। अन्य अवसर पे मुख्यमंत्री ने किसानों एवं जनप्रतिनिधियों से बाता कर कृषि क्षेत्र के और अधिक सशक्त बनाने और अन्नदाताओं के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, नवाचारों एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। आगर मालवा जिला का नलखेड़ा में कल राते माँ बगुलामुखी मंदिर के पास बड़ो हादसों हुई गयो। मंदिर के पास ओडिशा के श्रद्धालुओं से भरी एक कार बरसाती नाला में तेज बहाव में बही गई। अनि हादसा

में 8 लोगों की मौत हुई की। मरने वाला में 3 बच्चा, 2 महिला ने 3 पुरुष शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों के मौत पे दुख प्रकट कियो। ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मरवा वाला के निकट का परिवार वाला के 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देवा की घोषणा की। घायलों के 50,000 की राशि दी जाएगी। प्रदेश में मानसून अब अंतिम दौर पे चली रही है। मौसम विभाग ने अगला 4 दिन 22 सितंबर तक प्रदेश में हल्की बारिश को अनुमान बताया है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक पश्चिमी हिस्सा में इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय बनी हुआ है। इसका प्रभाव से पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिला में बारिश की गतिविधि बनी हुई है। आप सुनी रहा था मालवी में समाचार। नमस्कार।

किसान भाइयों ने बेनाउन शरद खगोल विज्ञान दिवस को आज को दिन खास यू भी है कि अणी मौसम में धूप खिले ने सवेरे शाम को मौसम सुहानो होतो जाए। आज खगोल विज्ञान दिवस पर और बाता जानांगा हमारा खास मेहमान उज्जैन जंतर मंतर का खास जानवा वाला शासकीय जीवाजी राव वेशशाला का अधीक्षक डॉक्टर साहब राजेंद्र प्रकाश गुप्त जी से। पर पहला गणपति जी को यो मालवी में भजन सुनी।

0: आज शरद खगोल विज्ञान को दन उज्जैन वास्ते खास यू ही नहीं है। उज्जैन की बात बताऊं तो शासकीय जीवाजी वेशाला जिके हम उज्जैन वाला जंतर मंतर भी का। यो जंतर मंतर भारतीय खगोलीय परंपरा वेदशाला की विरासत ने आधुनिक एस्ट्रोनॉमी को खास केंद्र है। इकी और बात करा इकी और खास जानवा वाला शासकीय जीवाजी राव वेदशाला का अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त जी से।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को ये कर बताइए आप कि उज्जैन और खगोल विज्ञान का संबंध कितना प्राचीन है।
2: उज्जैन के सभी श्रोताओं को नमस्कार। उज्जैन प्राचीन समय से खगोलीय गणना की महत्वपूर्ण नगरी रही है। हमारे जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें उज्जैन को संदर्भ बिंदु मान के खगोलीय गणनाएं की गई हैं, और इसी कारण सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने पहली वेधशाला 1719 में उज्जैन में बनाई थी।
1: खगोल विज्ञान दिवस क्या है और आम व्यक्ति के लिए खगोल विज्ञान को समझना क्यों जरूरी है?
2: देखिए, खगोल विज्ञान हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा है। उदय होना, अस्त होना, चंद्रमा को हम देखते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा की स्थितियाँ हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, और उसी के कारण हमारा जो कालगणना उन गतियों के आधार पर है कि चंद्रमा की गति के आधार पर एक तिथि हमारी किस प्रकार से निर्धारित होगी, माह किस प्रकार से निर्धारित होगा, अमावस्या पूर्णिमा जितनी भी स्थितियां हैं, तो पूरी की पूरी जो हमारी गणना है वो खगोलीय स्थितियों पर ही निर्भर।
1: बहुत अच्छा बताया आपने। और चूंकि हम जब उज्जैन के संदर्भ में विशेष बातें कर रहे हैं तो उज्जैन को समय और खगोलीय गणनाओं के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कैसे देखा जाता था?
2: हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हम सभी लोग जानते हैं जो समय की गणना होती है वो देशांतर रेखाओं से होती है। किसी न किसी देशांतर को शून्य देशांतर मान के समय की गणना होती है। जैसे वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ग्रीनविच का जो देशांतर है उसको शून्य मान के पूरे विश्व के समय की गणना होती है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, जो मिर्जापुर से गुजरता है, उससे भारतीय मानक समय माना जाता है। उसी को देखते हुए प्राचीन समय में उज्जैन से जो देशांतर गुजरता था, और स्पष्ट रूप से ग्रंथों में लिखा हुआ है, उत्तर में सुमेर पर्वत से उज्जैन और पूरा श्रीलंका तक जो देशांतर जाता है वो देशांतर समय का संदर्भ बिंदु था या जीरो देशांतर माना जाता था, और उसी के आधार पर ग्रहों की स्थिति और जितनी भी हमारी खगोली गणनाएं हैं वो परिभाषित की गई हैं, और सभी ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उज्जैन को संदर्भ बिंदु मान के समय की गणना का उल्लेख किया गया है।
1: जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि सूर्य से हमारी गणना चलती है, तो उज्जैन की वेधशाला को इस संदर्भ में इतना विशेष क्यों माना जाता है, और यहाँ के यंत्र किस तरह आकाशीय घटनाओं को समझने में मदद।
2: देखिए, उज्जैन से कर्क रेखा भी उस समय गुजरती थी, वर्तमान में उज्जैन कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी जो ग्रहों नक्षत्रों की जो स्थितियाँ हैं वो कर्क रेखा से उत्तर और दक्षिण में दोनों ओर 5 डिग्री का जो हमारा क्रांति वृत्त या सूर्य का पथ बोलते हैं वहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि उज्जैन से अगर जो भी अवलोकन होगा तो जो हमारे ग्रह हैं वो एकदम लंबवत होंगे, लंबवत होंगे तो मतलब अवलोकन

0: स्पष्ट होगा। अब ये अवलोकन किया कैसे जाए, क्योंकि गणना प्राचीन समय से रही है कि ग्रहों की गणना करना, लेकिन गणना और वास्तविक स्थिति में अंतर को कैसे समझा जाए, तो उसके लिए यंत्र बनाए गए हैं। जैसे हम बात करें शंकु यंत्र, जो शंकु यंत्र है उसके माध्यम से हम सूर्य की विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा में स्थिति, सूर्य के उत्तरायण की स्थिति, सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति, सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में जो भी स्थिति है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा बड़ा यंत्र है सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र जैसा इसका नाम है वो उसी प्रकार से है, लेकिन सरल भाषा में इसको धूप घड़ी बोलते हैं। और इसके माध्यम से आज भी हम 20 सेकंड तक सही समय की गणना कर सकते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय घड़ी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई यंत्र नहीं था, उस समय भी हमारे यहाँ 20 सेकंड तक सही समय की गणना के यंत्र उपलब्ध थे। दूसरा नाड़ी वाले यंत्र। नाड़ी वाले यंत्र के दो भाग हैं, एक उत्तरी गोलार्ध वाला भाग और ये दूसरा दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग। इसकी सहायता से हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। दूसरा जो स्काई में तारे हैं, क्योंकि इस आकाश में कोई लाइन तो है नहीं कि उत्तरी गोलार्ध कहाँ से शुरू हुआ, दक्षिणी गोलार्ध कहाँ से शुरू हुआ, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के तारों को भी पहचाना जा सकता है। भित्ति यंत्र के माध्यम से हमें पता लगा सकते हैं कि कोई भी ग्रह नक्षत्र उत्तरी गोलार्ध में कितना पूर्व या कितना पश्चिम में है। इसी प्रकार से जो हमारा दिगंश यंत्र है, दिगंश यंत्र के माध्यम से हम किसी भी समय किसी भी ग्रह की स्थिति प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने कहा कि 20 सेकंड तक इतनी सही गणना हमारे ये यंत्र कर लेते हैं, तो एक सवाल ये आया कि जब टेलीस्कोप नहीं था तब हमारे पूर्वज सूर्य ग्रहों और समय की इतनी सटीक गणना कैसे करते थे?
0: ये बहुत अच्छा प्रश्न है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है वर्तमान समय में। हम देखते हैं कि हमारे ग्रंथों में ग्रहों की गतियों की जिस प्रकार से गणना दी गई है आज भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण है उनका नेचर। जैसे बृहस्पति ग्रह कहा गया कि सबसे बड़ा है, हम वर्तमान समय में देखते हैं कि बृहस्पति ग्रह ही सबसे बड़ा है। अब पृथ्वी से किसी का आकार तो दिखता नहीं है। दूसरी हम बात देखें कि ग्रहों का सरफेस, जैसे मंगल को कहा गया कि पृथ्वी का जुड़वा है, हम देखते हैं कि मंगल की सरफेस अगर देखें तो बिल्कुल पृथ्वी जैसी ठोस है। मंगल को लाल ग्रह कहा गया, मंगल की सरफेस भी लाल है और उसका जो अपनी धुरी पर घूमना लगभग पृथ्वी का 24 घंटे उसका 24.5 घंटे है, लगभग बराबर है। तो वहाँ की जो भी कंडीशन हो पृथ्वी जैसी मिलती हैं। बुध को सबसे छोटा हरा, जिनके जैसे रंग बताए गए हैं, अगर बृहस्पति पीला है तो उसकी सरफेस आज भी पीली है, अगर शनि धूसर है तो धूसर सरफेस। मतलब आधुनिक समय में भी गणनाओं के संदर्भ में और उनका सरफेस की स्थिति, मतलब सतह की स्थिति, और उनके जो घूमने के परिभ्रमण वो लगभग उसी समान है। जैसे शनि, शनि का बोलते ढैया। अब शनि क्या है, 12 राशियां हैं और 30 साल में वो पूरा चक्कर लगाता है। 12 का 30 से भाग दे दीजिए, 2.5 साल आए, तो हम देखते हैं कि वही स्थिति है। बृहस्पति है, 12 साल में पूरा एक चक्कर लगाता है, तो हम देखते हैं उज्जैन में कुंभ होता है, 12 साल बाद होता है, क्योंकि सिंह राशि में अगली राशि में 12 साल बाद ही आएगा। तो बिल्कुल एकदम सटीक और एकदम प्रामाणिक है।
1: इतनी सटीकता आपकी बातों से लग रही है, तो वाकई में हमारा खगोल विज्ञान प्राचीन जमाने में कितना आगे था जो आधुनिक समय में भी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। इस पर थोड़ा सा डॉक्टर साहब हम और ये जानना चाहेंगे कि ये खगोलीय परंपरा का संबंध पंचांग निर्माण और भारतीय कल गणना से भी रहा है?
0: बिल्कुल, खगोलीय गणनाओं के आधार पर ही पंचांग के निर्माण हैं। हम देखते हैं जितनी भी हमारी पंचांगें हैं उसमें स्पष्ट रूप से खगोली या ग्रहों की गतियां और उसकी गणनाएं दी गई हैं। वेधशाला से 1942 से लगातार पंचांग निकल रहा है, वो बहुत प्रमाणिक है खगोली गणना के लिए। और प्राचीन समय के कोई भी हम पंचांग उठा के देख लें तो उसमें पूरी की पूरी खगोली गणना, एक एक ग्रह की, चंद्रमा की,

0: सबकी गणना इस पर ट्रूफी दी गई है।
1: बिल्कुल सर, अभी चूंकि आधुनिक जमाना है, सारे गैजेट ऐप और AI हमारे बीच में बिल्कुल एक घर बना चुके हैं, तो हम बच्चों और युवाओं को एस्ट्रोनॉमी की ओर आकर्षित करने में उज्जैन का तारामंडल और आधुनिक वेधशाला क्या भूमिका निभा रही है?
0: ये बहुत सही प्रश्न है। वास्तव में हम तकनीकी आधारित हो गए हैं और ये कहें कि तकनीक गुलाम बना दिया है, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये केवल आपको जानकारी देती हैं। जानकारी मतलब आप पढ़ सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखना है तो आप क्या करेंगे वो कोई साधन नहीं बताते। प्रत्यक्ष रूप से अगर देखने की स्थिति आपको लगेगी तो आपको वेधशाला ही आना पड़ेगा, तारामंडल ही आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ यंत्र हैं, वो दिखाएंगे, कह दिया कि आज सूर्य कर्क रेखा पर है कि नहीं है, वो कैसे पता लगाएंगे, तो वो यंत्र बताएगा कि नहीं, वास्तव में देखिए सूर्य की आज स्थिति यहाँ है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में, या चंद्रमा की जो भी स्थिति है, तो वो प्रत्यक्ष देखने। तो आज के समय में मेरा एक निवेदन रहेगा, विशेषकर बच्चों के संदर्भ में और उज्जैन के नागरिकों को, कि उज्जैन वास्तव में खगोलीय दृश्य से जितना विकसित हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तारामंडल की सौगात दी गई है, साइंस सेंटर बन गया है, प्राचीन उज्जैन की वेधशाला है, डोंगला में बारह मेहर वेधशाला, मतलब आधुनिक संसाधन जो महानगरों में भी उपलब्ध नहीं है वो उज्जैन में उपलब्ध कराए गए हैं। तो एक ये बहुत जरूरी है कि आज जो हमारे कहना चाहिए पेरेंट्स हैं वो बच्चों को उन स्थानों पर ले जाएं, क्योंकि वेधशाला मध्य प्रदेश में केवल उज्जैन में ही है। तो एक हमारा सौभाग्य है कि आके प्रैक्टिकल हम प्रयोग आधारित सब चीज़ों को देखें, जिससे हमारे बच्चे केवल सैद्धांतिक रूप से पढ़ें ही नहीं, प्रायोगिक रूप से उन सब चीज़ों को देख सकें, समझ सकें, उनका उपयोग कर सकें। और जो प्रयोग आधारित समझ होती है वो एकदम स्थायी होती है, पढ़ा हुआ हम भूल सकते हैं, लेकिन एक बार अगर हमने प्रायोगिक रूप से चीज़ देख ली तो वो हमेशा याद रहेगी।
1: सर बिल्कुल आपकी बातों से मैं भी बड़ा उत्सुक हुआ हूँ। एक नया प्रश्न जो दिमाग में आया कि एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र को एक ही समझना सही है? सर आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि दोनों में मूल अंतर क्या है।
0: हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और सामान्य रूप से भ्रम की स्थिति भी है कि दोनों एक ही हैं क्या अलग हैं। वास्तव में दोनों पूर्णतः अलग इस प्रकार से हैं, जो हमारा एस्ट्रोनॉमी बोलें, एस्ट्रोनॉमी वास्तव में क्या है, पूरा का पूरा गणित पक्ष है। वो वास्तव में अगर हम ज्योतिष के संदर्भ में देखें तो ज्योतिष के तीन पक्ष बताए गए हैं, गणित, फलित और तीसरा है संहिता। जितना भी हमारा एस्ट्रोनॉमी है वो पूरा गणित पक्ष है। गणित पक्ष है मतलब उसमें पूरी ग्रहों की गतियां देखी जाती हैं, उनको समझा जाता है, ग्रहण वगैरह सभी स्थितियां देखी जाती हैं और उनको पंचांग के रूप में ढाला जाता है। ये पूरी की पूरी स्थिति हमारी एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोलॉजी क्या हुआ, अब इसके आधार पर फलादेश करना कि कोई भी ग्रह है उसकी राशियों में, नक्षत्रों में कहाँ कैसे क्या स्थिति है, उसका मनुष्य पे क्या प्रभाव होगा, ये जो स्थिति है ये हमारी पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी। तो इसमें टोटली लोग भी बिल्कुल अलग अलग हैं, जो गणित करते जैसे वेधशाला का काम पूर्णतः गणित का काम है, तो गणित के संदर्भ में पंचांग निर्माण सब चीज हम बात करते हैं, लेकिन इनका प्रभाव किसी पर क्या होगा ये जो हमारा है, जो हमारे ज्योतिष लोग हैं ज्योतिष, वो उसको करते हैं कि इनका जीवन में ग्रहण हुआ तो उसका क्या प्रभाव होगा, या इन इन चीज़ों में मतलब ग्रहों की स्थिति ऐसी है, शनि की ढैया शुरू हो गए, इनका फलादेव जो करते हैं वो हमारा। और तीसरा जो पार्ट है वो है संहिता। संहिता मतलब करेक्टरिस्टिक के हिसाब से हमारा भविष्यवाणी करना, जैसे इस समय इस प्रकार की हवा चलेगी तो मानसून कैसा रहेगा, रोहिणी में अगर सूर्य गर्म होगा तो आगे बारिश की, इस प्रकार के फलादेश करना ये संहिता के अंतर्गत आता है। तो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं
1: जी। सर अभी हम देखते हैं कि आकाश में हमें चांद तारे दिखाई दे जाते हैं, मंगल और शुक्र भी हम देख लेते हैं, लेकिन बच्चों में इनके प्रति वैज्ञानिक जिज्ञासा कैसे पैदा की जा सकती है?
0: इनके लिए सबसे आवश्यक है कि हम बच्चों को आकाशीय अवलोकन कराएं। वेधशाला समय समय पर जो भी खगोलीय घटनाएं होती हैं इनकी जानकारी मीडिया के माध्यम से भी देती है और प्रत्यक्ष रूप से हम दिखाते भी हैं। लेकिन नहीं है तो बहुत सामान्य है, हम चंद्रमा को देख सकते हैं, चंद्रमा का हम अवलोकन बहुत आसानी से कर सकते हैं। पूर्णिमा हो गई, पूर्णिमा से हम पूरा अवलोकन करें, अमावस्या हो गई, अमावस्या के बाद उसकी स्थिति का अवलोकन करें। जो ग्रह नक्षत्र स्थिति है वो भी आकाश में वास्तव में सभी राशियां सभी नक्षत्रों को प्रत्यक्ष देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। वर्तमान समय में कुछ जो शहर का लाइट पॉल्यूशन है वो आकाश हमको इतना अच्छा नहीं दिखाता, लेकिन ये आवश्यक है कि हम जो हमारे पुराने लोग थे वो तो सूर्य की छाया को देख के समय बता देते थे, तो उन चीज़ों को बच्चों को विकसित करना जरूरी है, समझाना जरूरी है।
1: सर बिल्कुल, ये चीज़ देखने में एक और आई है कि उज्जैन का टूरिज्म बहुत आगे गया है, बहुत आगे बढ़ा है और हमने उसको प्रत्यक्ष देखा भी है। ऐसे में क्या एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म की संभावना उज्जैन में दिखाई देती है, जिसमें वेदशाला, तारामंडल, वराहमिहिर इन सबको जोड़ के एस्ट्रो टूरिज्म सर्किट भी बनाया जा सकता है क्या?
0: बिल्कुल, ये वर्तमान समय की आवश्यकता भी है। आवश्यकता के संदर्भ में है उज्जैन वेधशाला की, जो सवाई राय जयसिंह वाली वेधशाला की बात करें तो इसमें पुराने यंत्र मंडल है, नक्षत्र वाटिका है, कार्यशील मॉडल हैं और लगभग 3 से 3.5 घंटे का हमारा एकेडमिक सत्र रहता है, जो बच्चे आते हैं उनको बताते हैं। दूसरा, अगर हमारा जो महानंदा नगर में तारामंडल बना हुआ है, इसमें आधुनिक तारामंडल है, इसमें पूरा साइंस सेंटर बनाया गया है। अगर हम डोंगला की बात करें, वहाँ कर्क रेखा की स्थिति है, वहाँ बहुत अच्छा टेलीस्कोप है और चूंकि वो शहर से दूर है तो रात के समय आकाश वहाँ बहुत अच्छा दिखता है, तो इनकी जो दिखने की संभावना है वो बहुत अच्छे प्रकार से की जा सकती है, बनाया जा सकता है और जो टूरिज्म है वो टूरिज्म बहुत अच्छे प्रकार से विकसित हो सकता है, क्योंकि बहुत हम देखते हैं साधन हमारे पास बिल्कुल सब हैं, लेकिन इनको एक तो कहना चाहिए लोगों की को आकर्षित होने की ज़रूरत है और लोगों को स्वयं समझने की इसकी ज़रूरत है कि वास्तव में ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये प्रायोगिक चीज़ें हैं, इनको हम देखें और समझें तो बहुत अच्छे प्रकार से टूरिज्म विकसित किया जा सकता है।
1: बहुत बहुत सर धन्यवाद। सर सर हम समय की मर्यादा में हैं, अंत में एक खास सवाल और जान हम हमारे श्रोताओं को जिज्ञासा भी हो सकती है, मैं बताना भी चाहता हूँ कि महाकाल की नगरी उज्जैन में एक और अध्यात्म हमें अपने भीतर देखने की प्रेरणा देता है और दूसरी ओर एस्ट्रोनॉमी हमें अनंत आकाश की ओर देखने की प्रेरणा भी देता है, क्या इन दोनों के बीच जिज्ञासा एक साझा सूत्र हो सकती है?
0: हमारा जो भी अध्यात्म रहा है, अध्यात्म कपोल कल्पित नहीं है, अध्यात्म गणित आधारित रहा है और वो जो भी चीज़ें उसमें बढ़ने थे वो वर्तमान समय में प्रायोगिक रूप से उपलब्ध और वेरीफाई की जा सकती हैं। जैसे कालों का काल महाकाल को कहा गया है, निश्चित है कालगणना का केंद्र उज्जैन रहा है, महाकाल काल के अधिष्ठाता रहे हैं, समय का प्रारंभ यहाँ से होता रहा है। तो अध्यात्म अगर हम वर्तमान वैज्ञानिक आधार पर समझना चाहते हैं, व्याख्या करना चाहते हैं, तो हम बिना खगोल विज्ञान के समझे इसकी सही व्याख्या नहीं कर सकते।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारे श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उज्जैन के संदर्भ में दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।
2: अनि खास बात से ने जंतर मंतर के ज्ञान से भरी बाता से एक बात तो साफ हुईगी कि आकाश केवल रहस्यों से भरो वो नहीं है, यो अनंत विस्तार है, ने यो अनंत विस्तार हमारा ज्ञान, भारतीय परंपरा ने साथे दर्शन को जो सुलझो वो ने जानो वो भी नहीं है, उको ये जीतो जागतो हमारे बीच एक उदाहरण है, अबारी के और जानो और बचियो है, टेम हुई रियो है गणपति जी को एक और मालवी में भजन सुनाने को।

श्रोताओं, आज हमने बाता की शरद खगोल विज्ञान का खास दन पे, या बाता से या तो साफ हुई गयो कि ऊंचा ने बहुत ऊंचो आकाश खाली देखवा की चीज नहीं है, ओके जानने ने ओके खास जंतर मंतर की भाषा में समझनो भी अनंत यात्रा ही है। तारा से लई के ग्रहों तक आकाश हमें बताए कि हमारी जिज्ञासा ने सोच जितनी बड़ी होगा यो अनंत ब्रह्मांड उत्तो ही बड़ो होतो जाएगो। अनी बात पे यो संदेश मिले कि हम आकाश के सिर्फ ताके ही नहीं बल्कि उके जाना भी ने नया बच्चा बच्ची के जानवा वास्ता प्रेरित भी करा। आकाश खगोल अनंत है, ओके विज्ञान की भाषा में समझने की यात्रा भी जारी है। यह बात और भी चलेगी, अनंत आकाश की तरह बात और भी है, पर पहला यह आज को मालवी को आखिरी भजन गणपति जी को सुनाई दूं न पाछे आऊं।

श्रोताओं, हमने बात की जंतर मंतर की खास, और यह भी तय हुई गयो कि अनंत आकाश की तरह हमें नयो आकाश भी छूनो है, ने उके बात भी आगे बढ़ानी है। जल्दी मिलांगा नई बात के साथ और नए शीर्षक के साथ। जय राम जी की। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे मालवी बोली में विशेष कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। रात के 8 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा के।
1: हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
2: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक KV प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
3: एक व्यक्ति जब संकल्पित होता है अपने देश के लिए, अपने देश की माटी के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसके मन में भावना होती है कि ये पूरी दुनिया हमारी है, भारतीयता का जो सोच रहा है आदिकाल से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यदि वह उसके व्यक्तित्व में आ जाए तो फिर जीवन का आयाम बदल जाता है। और समकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिनके कई आयाम हैं। आरंभिक जीवन हो या बाद का जीवन या अब का जीवन, जीवन के हर अंतराल में एक स्पष्ट सोच, दूर दृष्टि और अपनी मिट्टी से प्यार, अपनी संस्थाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करना, अपने लोगों को हर स्तर पर सक्षम बनाना, आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना, और इस क्रम में जन सेवा से देश सेवा का लक्ष्य उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में और उनके कर्म में हम पग पग पर सुदीर्घ अवधि से देखते हैं। लगभग 2.5 दशक कहें, 3 दशक कहें, 3 दशक की यात्रा में नरेंद्र मोदी न केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता से एक सक्षम मुख्यमंत्री और उसके बाद भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जैसे क्षमतावान सशक्त छवि निज स्वयं की और उसके साथ साथ भारतवर्ष की बदलने में सफल हुए हैं, वह मायने रखता है। इस श्रृंखला में हम विविध विषयों पर श्रोताओं चर्चा करेंगे, जिसमें उनके साथ होने से, उनके नेतृत्व से, उनके लगातार प्रयास से किस तरह से बदलाव भारतवर्ष में आए हैं। पहले गुजरात में एक मुख्यमंत्री के रूप में हमने वाइब्रेंट गुजरात को देखा, एक ऐसा प्रदेश जहां पर उद्योग उतना सक्षम नहीं था जितना कि होना चाहिए था, वह बदलते हमने देखा और भारतवर्ष को बदलते हुए देखा है। आज इस अंक में हमने अपने अपने क्षेत्र के जाने माने नाम, राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक KV प्रसाद और आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी को आमंत्रित किया है। हम विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले KV प्रसाद जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
4: धन्यवाद मनोज जी।
3: शुभमय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद।
3: देश के उत्थान में समाज के सबसे गरीब वर्ग का योगदान जब तक सुनिश्चित नहीं होता, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्नत बनाने के लिए सही उपाय नहीं किए जाते, तब तक उनके जीवन में बदलाव नहीं आता।

0: गति के पथ पर वो आगे नहीं बढ़ पाते उसी गति से जैसे बाकी लोग। अंत्योदय वर्ग के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई उनका संक्षिप्त लेखा जोखा हम आपको बताते हैं।
1: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में इस बात पर जोर दिखाई देता है कि विकास का लाभ केवल उन लोगों तक सीमित ना रहे जो पहले से ही मुख्यधारा से जुड़े हैं, बल्कि उन परिवारों और क्षेत्रों तक भी पहुंचे जो लंबे समय से विकास की सुविधाओं से दूर रहे हैं। वन बंधु कल्याण योजना ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेयजल और सड़क जैसी जरूरतों से जोड़कर समग्र रूप देने पर जोर दिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी इसका एक उदाहरण है। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रगति को लगातार मापा गया। यानी किसी क्षेत्र को केवल पिछड़ा मानकर छोड़ने के बजाय उसके विकास की कमियों की पहचान कर उन पर लगातार काम करने की व्यवस्था बनाई गई। इसी क्रम में दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी ध्यान बढ़ा। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के जरिए सीमा से लगे गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मकसद यही कि देश का कोई गांव केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विकास की मुख्य धारा से दूर न रह जाए। आदिवासी समुदायों के लिए ये प्रयास और लक्षित हुआ। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुँचाई जा रही है। जून 2026 तक इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच के लिए 831 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स संचालित की जा चुकी थी। अंत्योदय का मतलब केवल भौगोलिक या सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक पहुंचना नहीं है। किसी गरीब परिवार के लिए ये भी जरूरी है कि उसे सरकारी सहायता पाने के लिए व्यवस्था के चक्कर न लगाना पड़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुँचाने की व्यवस्था को मजबूत किया। जब बात जीवन की बुनियादी सुरक्षा की आती है तो स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। जून 2026 तक योजना के तहत 12 करोड़ 69 लाख से अधिक अस्पताल में भर्ती मामलों को मंजूरी दी जा चुकी थी। इन सभी अलग अलग योजनाओं के पीछे एक साझा सोच है, विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और यही अंत्योदय की भावना है जिसमें कोई परिवार, समुदाय या क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से पीछे ना छूटे। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
0: सबसे पहले तो केवी हम आपसे समझना चाहेंगे कि देश में गरीबों की संख्या, भारतवर्ष के लिए कहा जाता है किसानों का देश है, गांव में भारत की आत्मा बसती है, लेकिन बड़े पैमाने पर गरीबी हमने गांव में भी देखी, शहरों में भी देखा, और विशेष रूप से जो हमारे जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको भी देखा। तो यदि हम दो को समझना चाहें तो गरीब कल्याण मेला और वन बंधु कल्याण योजना, इसको लेकर जो प्रधानमंत्री आए मुख्यमंत्री के रूप में हो या बाद के दशक में कह लें प्रधानमंत्री के रूप में हो, तो किस रूप में एक परिवर्तन जमीनी स्तर पर हमने देखा है।
2: भारत का जो मूलभूत जो हमारी परिकल्पना रही है वो है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है
0: जी।
2: और अगर हम शुरुआत से देखें, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि जब तक अंतिम छोर में खड़ा हुआ इंसान, जब तक हम उसकी आंसू ना पहुंच पाए, तब तक भारत का जो विकास जो होगा, जो भी यात्रा है वो पूर्ण नहीं होगा। तो पिछले 10-12 साल से जिस कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें इस तरफ काफी अग्रसर हुए हैं और काफी तेजी से काम हो रहे हैं और अलग अलग योजनाओं के तहत, और जिस विशेष बात रखिए जनमन या इस तरह जो जन कल्याण, उसमें हमारे जो जनजाति लोग हैं वो करीब 9% के आसपास, 10% के आसपास हमारे पूरे उसमें है, और लेकिन ये काफी पिछड़ रहे थे क्योंकि काफी सारी सुविधाएं वहां पे नहीं है। इसके पीछे दो बड़े आयाम हमने तय किए हैं। सबसे पहले देखिए, हम एक जो है अंतर्राष्ट्रीय एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक लक्ष्य हमने साधा है अन्य राष्ट्रों के साथ, उसकी और हमारे 17 योजनाएं हैं, तो उसमें कई सारी योजनाएं सम्मिलित होती हैं, और वो जब अब 2030 में वक्त ही कितना बचा है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: दूसरा एक और ये है कि हम 2047 को अपने आप को विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं
0: जी।
2: अब 20 साल उसके रह गए। विकसित भारत को उस समस्या का समाधान करना है तो आपको हर बिंदु

0: फोकस करना पड़ेगा
1: जी।
0: तो उसमें ये एक अहम बिंदु है जिसमें आपके सेहत है, चाहे वहाँ की पढ़ाई लिखाई हो, मूलभूत सुविधाएं हो, ग्रामीण जीवन बेहतर स्तर में हो, स्वास्थ्य का तो हम बात कर ही हैं, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी पड़ता है कि उनके किस तरह से वो अपने आप को कमाई का साधन है
1: जी
0: उसको कर रहे, क्योंकि सीधी बात है जब आर्थिक विकास होगा तो अन्य चीजें भी उसके साथ जुड़ती चली जाती है। तो ये एक समग्र सोच है मेरा ऐसा मानना।
1: शुमाय, आपसे हम समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से जो विशेष रूप से योजनाएं चलाई गई हैं खासतौर से गरीबों के लिए और उसके अलावा जो वनवासी लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उसमें किस तरह का गुणात्मक परिवर्तन आप देखते हैं? आर्थिक रूप से कितने सक्षम हुए हैं हमारे गांव के लोग, उसके अलावा शहरी लोग भी जो पिछड़े वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, उसके अलावा विशेष रूप से और यदि हम थोड़ा सा पिन पॉइंट करें तो देश का जो बड़ा एक क्षेत्र है जो जंगलों में बसता है उनके कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई, तो आर्थिक रूप से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया?
2: सबसे बड़ा इन सारी योजनाओं में जो बदलाव आया है
1: जी,
2: वो ये है कि पहले हम बहुत सारी योजनाओं की बात किए हैं, उनको लागू भी किए हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाएं एक पायलट यानी कि सीमित जगह पे ही लागू होकर रह गया है। ये अंततः मैं करीब 50 के करीब ऐसी योजना बता सकता हूँ जो
1: जी
2: शुरू हुआ, पायलट स्कीम हुआ, उसके बाद वो उसका नामो निशान नहीं रहा, वो अंतराल में चला गया। यहाँ पर जो योजनाएं लागू किए गए हैं उसमें दो बदलाव लाया गया, बेसिक बदलाव। एक हर योजना में आप सोचेंगे एक नाम दिया जाता है पीएम योजना, पीएम उदय, पीएम उज्ज्वला, इससे एक फायदा जो एक बेसिक चेंज जो आ गया वो ये कि डिपार्टमेंट्स के लिए इन योजनाओं को नजरअंदाज करके कि भाई योजना चल रहा है, योजना है, योजना में थोड़े बहुत पैसे आवंटित किए गए हैं, अगले साल अगला चीज सोचेंगे, ये इसका स्पेस नहीं रहा। योजनाओं के ऊपर पूरी तरह से उनको प्रेशर, उनको जिसे कहते हैं कार्यान्वित करने का एक प्रेशर आ गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, यानी कि ओनरशिप, योजना किसका है, किसने चलाई है, किसके लिए, आप कहेंगे कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले कि पीएम किसान योजना, पीएम जलधारा, ये सारे स्कीम में ये जो मॉनिटर आया है ये बहुत बड़ा एक बदलाव है कि डिपार्टमेंट्स के लिए इनको कई सारी योजनाओं में शामिल कर देना कि बस वही है योजना, वो उसका स्केल स्कोप नहीं रहा। और इसी के चलते 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाए, वो है कि एक्सपेंडिचर में जो बहुत सारी योजनाएं जो थे पुरानी योजनाएं उनको खत्म कर दिया गया, एक सनसेट पीरियड लाया गया और नई योजना का क्रियान्वयन उस स्टेप से किया गया कि अभी हम इन सभी योजनाओं में छोटे छोटे छोटे जो पैसे लगाए जाते थे जिसमें जैसे मैंने कहा कि खास कुछ उसका कुछ देखभाल नहीं होता था, उनको एक बड़ा शक्ति के हिसाब से उन योजनाओं को सामने लाया गया। तो इससे योजना का अपने आप में, योजना का गुणवत्ता, योजना का को लेवल, सब कुछ में बदलाव आ गया, बहुत बड़ी चीज है ये
1: जी।
2: दूसरी बात इसमें जो बदलाव लाया गया वो ये है कि योजनाओं में जब बदलाव आया गया खर्चा में, नेचुरली इसका खर्चा का जो लेवल है और एप्लीकेशन जो है वो पूरे देश का हो गया, ये सिर्फ राजस्थान का या तमिलनाडु का या असम का या कश्मीर का या उड़ीसा का नहीं रहा, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो लोगों को समझने में और इसको क्रियान्वयन करने में बहुत ईजी हो गया, सिंपल योजनाएं लेकिन उसके डायरेक्शन क्लियर है, उनके टारगेट क्या है वो पता है और उस पर कितने खर्च किए जाएंगे वो क्लियर है। तो कुल मिलाकर योजनाएं अपने आप में एक सशक्त डिलीवरी मॉडल्स बन के हमारे सामने आ गए
1: जी। बहुत अच्छी बात की शुभमय कि योजना एक मॉडल के रूप में, एक ऐसे मॉडल में जो जमीन पर उतरता हुआ साफ साफ दिखता है। यहाँ पर केवी आपसे हम समझना चाहेंगे कि जमीन पर जो ये योजनाएं उतरने लगे, यदि हम थोड़ा सा पीछे से चर्चा करें तो प्रधानमंत्री का एक सपना था जिसमें कि हर व्यक्ति फाइनेंशियली सक्षम हो, हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति के पास एक खाता हो, यानी जाम ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं जनधन योजना के अंतर्गत, उनके पास एक बैंक का खाता हो, उनके पास एक मोबाइल हो। इस योजना ने, यानी शुभ मैंने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि यह योजना किसके लिए है, यह स्पष्ट हुआ, इसकी मॉनिटरिंग बढ़ी और मॉनिटरिंग के साथ साथ वो डिलीवरी प्रोडक्ट के रूप में किस रूप में समाज को फायदा पहुंचा रहा, यानी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। उस जिम्मेदारी में एक लीकेज रोकने में जो जाम ट्रिनिटी है उसने किस रूप में परिवर्तन लाया और अपने आरंभ काल से अब तक यह कैसा रूप लेती दिखाई दे रही है आपको?
0: मनोज जी, इसमें दो चीज स्पष्ट है कि सबसे पहली बात है कि सरकार ने ये एहसास तो था ही कि भाई पैसा जो भारत सरकार पहुंचा रही आवंटियों को पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ जैसे आपने कहा, तो उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि पहले तो होता है कि पैसा आप कैश में देंगे, रोकड़ में देंगे
1: जी जी,
0: तो कहीं किसी के हाथ जाएगा, जो सरकारी तंत्र है उसके तहत ही नीचे जाएगा
1: जी,
0: तो उसमें कई सारे व्यवधान आते थे इस तरह के। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी यानी तकनीक आ गई, इस तरह की विकसित तकनीक है जिसमें जैसे सबसे बड़ा जिसकी आपने बात

0: जनधन हुआ चाहे जैम जिसे कहते हैं जनधन आधार मोबाइल तीनों को जोड़ के आपने तो एक मजबूत ढांचा आपने तैयार कर रखा है आपके पास और उसमें सबसे बहुत मुझे याद है कि आंकड़े अपने आप में स्पष्ट करेंगे अगर आप कभी भी देखें जो सरकारी जितने बैंक थे उनको ये कहा गया कि आप नए खाते खोले जीरो बैलेंस के
1: जी
0: जो आम नागरिक हैं और सबको उनको एनकरेज किया गया आप जाके अपना एक बैंक का खाता खोलिए और उसी खाते में पैसा जाता है
1: जी जी
0: और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा जब कोविड की महामारी परेशान कर रही थी हमारे यहाँ भी आर्थिक समस्या बढ़ गई थी तो सरकार जो पैसा हस्तांतरण कर रही थी वो इसके जरिए कर रही थी कि सीधा सीधा लाभार्थी के खाते में चला जाए पैसा तो इस तरह से जिसे कहते हैं इसका एक और फायदा है अब उसके बाद अब तो हाल फिलहाल की बात है हमें UPI QR कोड का जो इस्तेमाल होने लगा भीम ऐप के जरिए तमाम सारे डिजिटल पेमेंट्स के लिए
1: जी
0: शुरुआत में इसके काफी आलोचना भी आपको याद होगा अच्छी आलोचना ये हुई थी कि भाई इस जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है मोबाइल है तो कनेक्टिविटी नहीं है कनेक्टिविटी है तो फिर उनको नहीं आता
1: जी
0: लेकिन आज तो आम बात है कि चाहे आप छोटे से छोटे व्यापारी हो छोटा से छोटा ठेले पे जो सामान बेचता है उसके पास ये QR कोड है
1: जी
0: इसका एक बहुत बड़ा दूसरा फायदा है जो मेरे ख्याल से शुभ है जो कि आर्थिक विशेष ज्यादा काम करें भारत एक डिजिटाइज्ड इकोनॉमी होता जा रहा है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी तो आपको बकायदा पता लगेगा जैसे अभी हाल फिलहाल में UPI को लेकर कुछ चर्चाएं चली हैं लेकिन आपके पास स्पष्ट आंकड़ा है अब
1: जी
0: पहले कुछ नहीं था कि रोकड़ में कैश में व्यवधान हो रहा है कि क्या वितरण हो रहा है किसी को हिसाब नहीं होता था
1: जी
0: तो ये भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है वो सब भारत सरकार और हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: क्या शुभ मैं अब अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ DBT किस रूप में गेम चेंजर साबित हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था को यानी काला धन सफेद धन धन धन है लेकिन धन जो डिजिटल माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में जा रहा और जो लीकेज एक बड़ी समस्या थी लाभार्थियों तक उचित तरीके से वह धन नहीं पहुंच पाता था उसमें DBT कैसे कहले पूरी व्यवस्था को बदलने में सक्षम हुआ और एक बड़ी अच्छी बात के भी जी ने कही कि जिस रूप में अब हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वह बताते हैं कि हम तकनीकी रूप से डिजिटल भारत की ओर तेज गति से बढ़ रहे हैं किस तरह आकलन कर रहे हैं आप
2: बिल्कुल ये जो आकलन की बात है ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके ऊपर अगर आप कई साल का लेखा जोखा देखें CAG का तो पहले क्या हो रहा था कि जो स्कीम्स थे इन सारी स्कीम्स में आकलन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्कीम्स किस तरीके से कितने अमाउंट पे गया है हर साल का CAG का जो लेखा जोखा था उसमें यही चीज बार बार आता था कि खर्च तो हुए हैं लेकिन खर्च सही जगह पे नहीं हुए हैं और सही मात्रा में नहीं हुए हैं और सही लोगों को नहीं मिले हैं तो ये जो प्रॉब्लम था इसको भी आप एक ट्रिनिटी कह सकते हैं बट नेगेटिव ट्रिनिटी और वो ट्रिनिटी जो हमें काफी परेशान कर रहा था वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा सके हैं। अभी आप जैसे कोई भी लाभार्थी किसी भी स्कीम में जाते हैं तो उनको पता रहता है कि उनको कितना मिलना है उनको बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में उनको दिख जाता है कि वो अमाउंट आया है या नहीं और तीसरा जो बीच में मिडलमैन बिचौलिया जो खा जाते थे उसका मात्रा काफी कम हो गया है और इसकी वजह से जो आप देख रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि गांव में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में जो कंजम्पशन में जो एक जंप आया है और जिस पर अर्थशास्त्री लोगों ने बहुत बड़ा इस पर डिस्कशन भी किए हैं वो फर्क इसीलिए आया है कि अभी लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए हमारा पर कैपिटल इनकम हमारा 2200 से 2500 डॉलर्स के करीब हम मानते हैं जिसमें हम चलते हैं इससे बढ़कर इंडिया में भी पर कैपिटल इनकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगा 7 ट्रिलियन हो जाएगा और जिसमें ज्यादा देर नहीं है तो पर कैपिटल इनकम जिसे कहते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लोगों का डबल हो जाता है। अब हमारे लेवल में आपके लेवल में पर कैपिटल इनकम डबल हो जाना वगैरह वो उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि पर्सन का जिसका मान लीजिए औसतन 80,000 रुपए इनकम है वो अगर बढ़ के 160 हो जाए
1: जी।
2: उनकी पूरी जिंदगी का माहौल बदल जाता है। सो ये जो जिसे कहते हैं एक मूलभूत परिवर्तन ये तभी पॉसिबल हुआ है जिसका वजह था ये जैम ट्रिनिटी
1: जी
2: ये जनधन मुद्रा वाली योजना तो दैट एंटायर प्रोसेस ने लोगों में एक कॉन्फिडेंस एक एक्सपेक्टेशन और एक कंटिन्यूटी का सिस्टम बना दिया है कि ये चलेगा इस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है ये हमारे पास आएगा हर महीने में हर 15 दिन में जैसे भी उसका शेड्यूल है
1: जी।
2: उस तरह से वो तो कुल मिलाकर दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर जो एक बार सक्षम होने के बाद लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स की जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी इस पर भरोसा आ गया है और ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं चेंज जो पिछले कई साल में हुआ है, जो बार बार हमारे हर तरह के सर्वे में हर तरीके का एनालिसिस में ये बनकर सामने आ रहा है। जी
1: यहाँ पर के भी आपको आमंत्रित करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, शुभमय कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत मजबूत हुआ है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है, बेशक आमदनी के आंकड़ों पर, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों पर दुनिया में हम थोड़ा पीछे भी ठहरते हों, लेकिन लगातार पिछले 10-12 वर्षों में गरीबों के उत्थान के लिए जो विभिन्न योजनाएं चली हैं उसमें डिस्पोजेबल इनकम, यानी एक गरीब व्यक्ति की आमदनी दोगुनी हो जाती है, तो वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसका एक पूरा परिवार, पूरे गाँव का अर्थतंत्र और उसके समान कई सारे लोगों के अर्थतंत्र की आवश्यकताएं बदलती चली जाती हैं। तो ग्रामीण भारत में जो ये जाम ट्रिनिटी थी उसने किस रूप में बदलाव लाया और कितना मजबूत भारत आप देख पा रहे हैं आज की तारीख में?
0: माना जाता है कि भारत के अधिकतर लोग ग्रामीण इलाके में बसते थे, ऐसा शुरुआत में थी, लेकिन वो चीज बदली है। फिर भी 40% के आसपास मान के चलिए, 45% के आसपास ग्रामीण इलाकों में हमारे बसे हुए हैं, रोजमर्रा अपनी जिंदगी वहीं बिताते हैं, कुछ खेती खलिहान, कुछ कुछ अपने अपने छोटे मोटे कार्य से। जो शुभ भी बात कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया, जब सीधा पैसा आपको हर महीने या 15 दिन बाद आने लग गया
1: जी,
0: तो एक आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। और एक बहुत बड़े इसमें एक जिसे कहें डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि महिला का बीच में इसमें रखे स्कीम्स में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि महिला के खाते में जब पैसा आता है तो वो पूरे परिवार को सोचती है, यानी कि पुरुष नहीं सोचते हैं, लेकिन माना गया एक हमारे सोसाइटी का एक नॉर्म जिस तरह से देखा जाता है, तो वो एक फर्क पड़ा। और खासकर हमारे जो ग्रामीण इलाकों में जो बालिकाएं शिक्षा की ओर बढ़ रही हैं, तो वो एक बदलाव, क्योंकि जो हम विकास ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बढ़ेगा, एक समाज की बदलाव भी आएगा। जब तक समाज के बीच में बदलाव नहीं आएगा, सोच में बदलाव नहीं आएगा, अगर एक समाज स्वस्थ होगा विकास की ओर बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह की कल्याणकारी योजना। और एक मूलभूत जो परिवर्तन ये भी देखा गया है इस सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जब से आए उनका एक मंत्र रहा है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, क्योंकि सरकार अलग अलग विभागों में काम करती है, तो एक विभाग को दूसरे से मतलब नहीं होता था, ये तो हमारा काम नहीं है, फलाने मंत्रालय का है, तो सबको लेकर सम्मिलित कर कि लक्ष्य आधा सबने कि ये करना है आपने, तो चाहे ग्रामीण में हो, तो तमाम सारी जैसे बात हो रही थी, कई सारे अलग अलग विकास की योजनाएं थी, लेकिन उसको जैसे कहते हैं टारगेट करके एक दिशा देना कि ताकि उसको कार्यान्वित भी हो और वो जो लक्ष्य को साधा है वो पूरा भी करें। और ग्रामीण भारत इसलिए बढ़ा कि आप चाहे ऊर्जा बढ़ाएं, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक स्वच्छ पानी
1: जी
0: का, और जो बाकी सब मूलभूत सुविधाएं, इस सब के भी काम हो रहा है। ठीक है, कास का स्तर अलग अलग ग्रामीण इलाकों में अलग होगा, वो क्योंकि कुछ राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य को पूरा करे, लेकिन कुल मिला के दबाव सब पे है।
1: यहाँ पर शुभ मैं आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, गाँव की बात की और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार का जो नजरिया है वह पूरा का पूरा, सरकार के सभी विभाग अपने लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें, उस दिशा में काम होता हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यह कार्यक्रम गाँव में किस रूप में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसके नतीजे कैसे निकल के आते दिख रहे हैं आपको?
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक मतलब डिफिकल्ट प्रोग्राम है, लेकिन साथ में बहुत ही कारगर प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है कि एवरी विलेज इन द बॉर्डर इज द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो आई थिंक 2023 में शुरू कर गया कि देश के जो बॉर्डर इलाके में करीब 19 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर करीब 650 के करीब विलेजेस का उन्नति किया जाएगा। इसको उन्नति करने में प्रॉब्लम क्या था कि ये चूंकि एकदम बॉर्डर में है इसलिए इनकी तरफ कोई भी बेनिफिट ले जाना, जैसे लाइवलीहुड जनरेशन या एंटरप्रेन्योरशिप करना या यहाँ तक कि इवन स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह का भी जो व्यवस्थाएं करना वो मुश्किल था, क्योंकि ये एकदम काफी सारे डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक जिसे कहते महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। ये एक दूसरा रुख है सोचने का कि किस तरीके से इन तरह का इलाकों में बेनिफिट्स लाया जाए और किस तरीके से जैसे वो आप जैसे कह रहे थे कि हर तरीके का मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लाकर इन जगहों में किस तरीके से इंटरवेंशन किए जाए। इनफैक्ट इसका सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ये पिछले साल इसको और भी बढ़ाया गया है कि जितने सारे ब्लॉक्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, उन सभी ब्लॉक्स में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास में जितने सारे विलेजेस हैं
1: जी
2: वहां पे इस प्रोग्राम को लागू किया जाए
1: जी।
2: तो अपने आप में ये तो खैर मैं आकाशवाणी के जरिए लोगों को आमंत्रित करूंगा कि वो जाके देखें कि किस तरीके का बदलाव वहां पे आया है, जैसे रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सारी चीजों में किस तरीके का बदलाव आया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं, उल्लेखनीय चीज तो है और शिक्षणीय चीज भी है। जी
1: श्रोताओं, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा कर रहे हमारे विशेषज्ञ कि सीमावर्ती भारत के गांवों में जो परिवर्तन हुए हैं, बुनियादी परिवर्तन हुए हैं, और ये परिवर्तन न केवल दिखते हैं बल्कि इनका लाभ हमें और आपको स्पष्ट मिल रहा है। देश के कई क्षेत्र जहां जाना कठिन था, अब वहां सहजता से आप पहुंच सकते हैं, और वहां पर जो एक व्यवस्थागत बदलाव आया है उसके साक्षी बन सकते हैं। यानी देशी पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर जो हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। विकसित भारत अपने स्थान पर, लेकिन विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत की दिशा में सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई गई और विशेष रूप से जो आयुष्मान भारत योजना चली, पीएम जेएवाई योजना चली, यह किस रूप में अपनी भूमिका निभा रही है और ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव नजर आता है इन योजनाओं का?
0: अगर स्वस्थ होगा राष्ट्र तो वो विकास के और कार्यक्रम में उसके लोग रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज, एक तो भारत सरकार की जो पुरानी जो स्कीम्स थी वो तो अपने कार्यान्वयन में हुए हैं, और इसी वजह से हमारे जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है।
1: जी जी जी।
0: अगर हम इंडिपेंडेंट हुए तो शायद 40-43 70 के ऊपर, 70-75 के आसपास, क्योंकि वो उसमें कई चीजें जुड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ समाज के सामने एक नई समस्या भी खड़ी होगी कि जैसे जैसे लोग वयस्क लोग बढ़ रहे हैं समाज में, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना भी जरूरी है। वो भी और अपने जी कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए सेवा तो की है, लेकिन अब जब उम्र अलग हो गई है और समस्याओं से घिर रहे, तो उनमें 2-3 कार्यक्रम लाए गए। उसके साथ साथ चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य है, अब उसमें अलग जो दूसरा है आभा स्कीम है, आपका आयुष्मान भारत स्कीम है, तो ये सब समग्रित करके कर रहे हैं। और 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और उसमें आप कार्ड बनवाइए 5 लाख तक परिवार में, एक आपके कोई समस्या आती है, कई सारे उसमें जो पैमाने हैं वो मापदंड है, आप सरकार को कोई खर्च नहीं हो, मतलब सरकार खर्च करेगी आपके बतौर आप, और उनके जो उनके अस्पताल है वहां जाइए, स्वास्थ्य केंद्र है। और क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया कि चाहे वो ग्रामीण ही छोड़ दिए, कई सारे टाउन टीयर 2 सिटीज में हमारे पास स्वास्थ्य योजना तो थी, लेकिन उसको कार्यान्वयन करने में समस्या आ रही थी, उसको भी इसमें कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरे जैसे पोर्टल, जैसे आभा की बात किया, उसमें भी आप डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं कि आप जुड़िए स्वास्थ्य कार्य में जो भी है, ताकि उनका एक रजिस्टर बने कि कौन कौन स्वास्थ्य कर्मी कहाँ कहाँ हैं। और दूसरी तरफ लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपना जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल माध्यम से रखें, क्योंकि हर एक के पास रिकॉर्ड रखने की समस्या है। आप अस्पताल पहुंच गया, पता चला रिपोर्ट घर पे छूट गया, तो वो भी डिजिटाइज करने, जो आभा नंबर आप ले लीजिएगा, तो कहीं पे भी बैठे हो, चाहे आप इस एक प्रांत में और दूसरे प्रांत में कोई आपको चिकित्सक बैठा, या आप कहीं चले गए तो आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए। तो इस तरह से जो शुरुआत में भी बात हुई, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है उसका एक सदुपयोग कर रहे हैं।
1: यहाँ पर शुभ, मैं आपसे हम समझना चाहेंगे कि यह जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं शुरू हुई हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है और किस रूप में यह चल रही हैं, और आम लोग इसका लाभ किस तरह उठा सकते हैं, कुल मिलाकर इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस पर थोड़ा रोशनी डालें, और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया, ये तो हमारे हर चर्चा में ये हम समझना चाहते हैं आपके माध्यम से।
2: देखिए, बहुत बड़ी बदलाव जिससे इनसे आया है वो तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है। जितना जिस तरीके का हम, अगर हम हर कोई भी बिंदु अगर ले, जो कंजम्पशन इंडिकेटर है, जो बाकी इंडिकेटर्स हैं, उसके तरफ एक जैसे एक फंक्शन से एक चीज आप देख सकते हैं, जैसे पीएम आयुष्मान भारत
1: जी।
2: तो अभी बहुत बड़ी चीज हो गई है कि आयुष्मान भारत में पहले था कि ये स्कीम किसके लिए है, अब यह है कि स्कीम किसके लिए नहीं है, यानी कि ये स्कीम ऑल ओवर द प्लेस सबके लिए जरूरत बन गया है। सिमिलरली जैसे स्कीम्स की हम बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो गैस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है हर जगहों में, उस तरीके का प्रोग्राम में भी हर लोग इसका फायदा लेना अपना, जिसे कहते हैं मुस्तहिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि लोगों को लगता है कि हमें ये प्रोग्राम हमारे लिए है, हम इसको यूज करेंगे। तो ये स्कीम्स एक, जिसे कहते हैं, एक रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत का आइटम बन चुका है कि इसमें तो मिल जाएगा, ये वाला तो स्कीम है, ये वाला तो स्कीम है, इसके लिए ये स्कीम है, इसके लिए वो स्कीम है। तो इसके लिए कोई सरकारी जिसे कहते हैं फंक्शन में ही इसकी आलोचना नहीं होती है, इसके बारे में डिस्कशन हर जगह पे होता है। मैं फिर से हम कहूंगा, जैसे पंचायत वगैरह में इनकी जो इनके बारे में जो कमेंट्रीज होती है, इनके बारे में जो डिस्कशन होती है, वही आपको बताता है कि कितना परिवर्तन का स्रोत इन स्कीम्स ने तैयार किया है। एक बहुत बड़ा चीज जो किया गया है वो है जी राम जी प्रोग्राम में,
1: जी जी,
2: कि का स्कीम रहेगा, स्कीम को और कितना इम्प्रूव किया जाए, वो एक बहुत बड़ा सोच का केंद्र बिंदु।

0: गया है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ माफ इसका कि फाइल्स में नहीं रहता है, बल्कि वो उठ के लोगों की आम जिंदगी के लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, उनमें समा चुका है। यही है स्कीम्स के जिसे कहते हैं हम सिग्नेचर, कार्यकर्ता की कार्यक्षमता, उसकी क्रियान्वयन, उसकी जो कैपेसिटी, ये हमें दिखी है इन स्कीम्स के सबसे बड़ा खूबी कि गवर्नमेंट के जो फंडिंग करने का जो सिस्टम है उसको भी उसके अनुरूप बदल दिया गया है। जो पीएफएमएस स्कीम्स है वगैरह, पीएफएमएस एक्चुअली स्कीम नहीं है, पीएफएमएस पब्लिक फंड मैनेजमेंट स्कीम, वो पूरा इन सारी स्कीम्स को किस तरीके से फंडिंग रखा जाए, लिक्विड रखा जाए, उसके लिए सरकार ने अपना अकाउंटिंग सिस्टम भी बदल दिया है। और ये सब बहुत बड़ी जिसे कहते मैं कहूंगा फेज चेंज है इन द एंटायर डिलीवरी सिस्टम जो हमें फायदा दे रहा है। जैसे अभी पिछले कई साल में कोविड हुआ या उसके बाद ये जैसे एक के बाद एक डिस्टर्बेंस होते गए हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूल के क्राइसिस वगैरह बाकी सारे क्राइसिस में, तो भारत के ग्रोथ रेट में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया है। और वो इफेक्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और वो इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये स्कीम के जरिए जो पैसा जो लोगों के पास जाना चाहिए ये जा रहा है, उसकी गति में उस स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए दैट आई थिंक इज अ वेरी मेजर चेंज जो हम जिसके लिए वी कैन बी वेरी वेरी प्राउड।
1: जी, यहाँ पर के भी हम ये समझना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है और अभी 2026 के लगभग कह लें कि अंतिम चरण में, यानी अगले 3 महीने रह रहे, तो वहाँ उस दिशा में जाने के लिए हमारे पास समकाल में कौन सी चुनौतियाँ दिख रही हैं जिस पर कि हमें काम करना चाहिए, मिलकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं?
2: देखिए, सबसे समस्या जो भी कहिए चुनौती है, चुनौती इसलिए है कि जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि विकासशील से हम विकसित हो जाएं,
1: जी,
2: तो उसके मापदंड और पैमाने अलग हो जाते हैं। भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बनना है और उसके लिए अग्रसर है, एक लक्ष्य साधा है 2047 तक जब 100 साल भारत का आज़ादी के हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है, हर एक का मापदंड अलग होता है, लेकिन एक समाज को, एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए कुछ मापदंड है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब मानते हैं। तो उसमें मूलभूत तो है ही, स्वास्थ्य हो गया, पढ़ाई हो गई, सर के ऊपर छत हो गया, इस तरह की छोटी, ये तो शुरुआत से जिसे हम रोटी कपड़ा मकान कह लीजिएगा, पुरानी बात है, लेकिन उसके आगे और कई सारी चीजें आ गई। आज समस्या क्या है, पर्यावरण भी जुड़ गया इसमें, क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने सेटअप किया है कि विकास तो करिए लेकिन आपने पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज की ओर रखिए, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। सोसाइटी में जो हमारे समाज है उसमें जो सोच है वो कैसे विकसित हो, क्योंकि कई समस्याएं हैं अभी भी समाज के अंदर, वो सामाजिक सोच, और क्या हमारे यहाँ इक्वालिटी जो कहते हैं वो तो है, इक्विटी है, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, मतलब जो हर किस्म के लोगों के तरफ आपका किस, तो कई सारे चीजें हैं। तो वो विकास जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कई सारे है, जब तक आप हर बिंदु पे काम नहीं करेंगे तो वो जैसे है कि लास्ट में जैसे अगर कहें, अगर हम रेस देखते हैं 8 लेन से अलग अलग लोग चलते हैं, लेकिन अंत में जाके सब उस टेप को
1: जी
2: चाहते हैं, या तो वो लक्ष्य के लिए आपके कई सारे लेन्स में काम कर रहे हैं हम, चाहे आपने शुरुआत में हमने कहा जनजाति लोगों के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं, जो बात हुई थी ग्रामीण इलाकों में जो कि सरहद पे है उसके लिए जो है, जो सोच बदलने की बात आई थी जिसके बाद शुभ कर रहे थे कि सोच क्या थी कि वो अंतिम छोर पे नहीं है, वो पहले है,
1: जी जी, जी
2: सिर्फ सोच ही बदलाव है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो ये सोच बदलाव एक कठिनाई होती है, लेकिन जब उस तरफ आप ध्यान देते हैं तो जैसे कहते हैं चुनौती है, लेकिन सरकार चुनौती जानती है और उसकी तरफ काम कर रही है, जैसे मैंने कहा अलग अलग बिंदुओं पे काम करिए तभी तो जाके आप उस छोर पे पहुंचेंगे।
1: बिल्कुल शुभ, प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में सुदीर्घ अवधि से कहते आ रहे हैं कि हमें आपदा में अवसर निकालना चाहिए, और उनका ये कथन कई अवसरों पर हमने देखा है। तेल के दाम बढ़े लेकिन हमारे यहाँ अपेक्षाकृत दुनिया के कई अन्य देशों में जितना प्रभाव पड़ा उतना हम प्रभावित होते नहीं दिख रहे हैं, और थोड़ा पीछे चले जाएं तो कोविड के समय में जो स्थितियां दुनिया के बाकी देशों में हुई हम बेहतर थे, दुनिया को हमने दिया, यानी हम पर टैरिफ लगाया गया और टैरिफ का भी बहुत अधिक प्रभाव होता नजर नहीं आया क्योंकि हम बड़ी विविधता से चतुराई पूर्वक समय से कदम उठाते रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। यहां हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि परिवर्तन हुए हैं, वह परिवर्तन किस रूप में आगे जाते आपको दिख रहे हैं? आप लगातार कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी बनी हुई है, जो नीतियां बन रही हैं वो इम्प्लीमेंट हों और वो साल दर साल इम्प्लीमेंट होते रहें, उसके साथ साथ और क्या बदलाव आप देख रहे हैं?
2: मनु जी, आपने जो बात कही बहुत अहम भी है, और इस पे देखिए जैसे इससे पहले बाकी बात कही सोच बदलने की बात है, और ये इसलिए कि सरकार में जैसे था कि साइलोज में काम करते, एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय का, हर आदमी अपने मंत्रालय को देखता था, एक तो उसको खत्म किया कि सब मिलके करेंगे, सबके जो धन है।

0: आवंटन तो सबके अलग अलग धन होते हैं, लेकिन जब एक योजना बनती है, मैं छोटा सा अगर आपको एक यहाँ पे उदाहरण दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी, अब सिर्फ घर नहीं मिलता, मतलब ये है कि ढांचा दे दिया, उसमें पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, पाइप गैस की सुविधा, तीन चार चीज़ें जो कि जब आप घर के अंदर प्रवेश करें, और वो घर किस नाम पर जाएगा, महिला के नाम पर होगा उसका रजिस्ट्रेशन, घर की महिला, तो एक उनको एम्पावर किया आपने। अब ये अलग अलग स्कीम से निकल के आ रहे हैं, पाइप गैस का अलग स्कीम जो सरकार के आवंटन है, पानी हर घर जल योजना, अलग अलग जो स्कीम्स बनी है उसी में से निकल के आ रहे हैं, लेकिन जब आपने आवंटन कर दिया तो आप रह सकते, तो एक ही सोच बदली कि वे कार्य करें।
1: श्रोताओं, एक होलिस्टिक बदलाव यानी जो परिवर्तन हुआ है वह संपूर्णता में बदला है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे केवी प्रसाद जी ने दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब एक ढांचा घर नहीं, बल्कि उस घर में जब वो तैयार होता है तो आपको नल जल भी मिल रहा है, शौचालय की व्यवस्था भी मिल रही है, साथ साथ रसोई के लिए गैस का भी इंतजाम आपको हो रहा है, और सभी योजनाएं सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत एक जगह समन्वित होकर एकीकृत होकर देश के सबसे पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों को अंत्योदय योजना के तहत मिल रहे हैं, ये जमीन पर दिख रहा है। हमारा ये विशेष कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। आप सभी श्रोताओं की ओर से शुभमय आपको और केवी जी आपको हम धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद मनोज जी।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। रात के 8:35 हो रहे हैं और यह समय है फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं पहला गीत।

वीर ज़ारा फिल्म का ये सुमधुर गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं अगला गीत।

जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था M.M. किरावणी ने। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार

0: बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
0: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
4: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था एनईपी 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के

0: जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजना

0: श्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
1: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
0: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीवी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
2: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
0: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
4: I think close to 8 cargo planes have arrived.
5: अब तक लगभग 8 cargo विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
4: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
3: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी।

0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. Distributes
2: more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division. Also gives nod to construction of 4-lane road overbridge on Udna Ukai Songar section of Western Railway. 2-day Northeast Education Conclave 2026 concludes in Nagaland, focuses on implementation of National Education Policy 2020. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. Heavy rainfall likely over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana tomorrow. And 20th Asian Games officially open in Japan. Double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat lead India's 501-member contingent during athletes' parade. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with skills and opportunities needed to prepare for the future.
3: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Prime Minister said India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for the country's entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. Prime Minister Modi said India is the world's third largest startup ecosystem today.
3: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai. और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है, आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
2: The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under the Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Indian Railways has approved provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometres of the Lucknow division of Northeastern Railway. The cost of the project is over 250 crore rupees. Railways Ministry said the approved project will extend coverage 4.0 coverage across the identified balance sections of the division, strengthening the safety infrastructure available for train operations. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road overbridge on the Udhna-Ukai-Songarh section of Western Railway. It will facilitate smoother movement of road traffic, reducing interference with railway operations. Railways has also given the nod to the provision of electronic interlocking at seven stations of Solapur Division of Central Railway at a cost of over 200 crore rupees. Railways has cleared a project worth over 142 crore rupees for the upgradation of the electric traction system on the 73-route-kilometre Savalyapuram-Gunturu section of South Coast Railway. This is Akashwani giving you the news.
4: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
2: Welcome back. You're with us on the news at 9. The two-day Northeast Education Conclave 2026 concluded today at Naga United Village, Chumukudema in Nagaland, with discussions on the implementation of the National Education Policy, NEP 2020, in the northeastern states. Policymakers, educators and administrators from across the northeast attended the conclave. Speaking at the valedictory ceremony, Tripura Minister for Higher Education, Kishore Barman, called for making education more skill-oriented and future-ready. He stressed the need to strengthen internships, apprenticeships, entrepreneurship and industry-academia linkages. He said over 21,000 crore rupees has been invested in the education sector in the Northeast over the past decade, along with the establishment of around 850 schools, 9 medical colleges, 2 triple ITs and nearly 200 skill development institutions. Additional Secretary in the Ministry of Education, Anand Rao V. Patel, called for multidisciplinary and skill-based education, greater use of digital technology and steps to reduce dropouts. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the platform of Pragati, proactive governance and timely implementation.
5: Prime Minister Narendra Modi had launched the Pragati platform in 2015 for fast-tracking projects, schemes and grievance redressal through his direct and real-time review in partnership with states and union ministries. Over a decade, Pragati has helped accelerate decision-making, resolution of issues causing delay in key infrastructure projects and instilled a strong culture of accountability. In Rajya Sabha in February this year, Prime Minister Narendra Modi stated that due to the detailed monitoring at the Prime Minister's level, projects worth 85 lakh crore rupees were unlocked and accelerated.
3: प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
5: एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स बीबी नगर डॉक्टर अमिता अग्रवाल हाईलाइटेड हाउ द प्रगति मैकेनिज्म हेल्प्ड रिजॉल्व क्रिटिकल इश्यूज लाइक वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई टू एम्स।
6: हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे।
7: वी फेस टू मेजर इश्यूज, वन रिगार्डिंग पावर सप्लाई एंड द अदर कंसर्निंग वाटर सप्लाई, बोथ ऑफ व्हिच आर क्रिटिकल फॉर अ हॉस्पिटल। हाउएवर थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बोथ प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली रिजॉल्व,
6: धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
5: The platform exemplifies cooperative federalism, bringing together the center, state and union ministries on a single digital interface. The Prime Minister has so far chaired 53 meetings of the Pragati. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: This is Akashvani. You are listening to the news at 9.
4: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
1: Welcome back. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle has stated that India and Nepal have an opportunity to renew their partnership by building on the strong ties that already exist. Addressing an international seminar on reimagining India-Nepal relations in an emerging global order, organized by the Research and Information System for Developing Countries in New Delhi today, Dr. Wagle emphasized the importance of strengthening connectivity and economic cooperation and realizing the considerable potential that the two countries can achieve together. Speaking exclusively to Akashvani News, the Nepalese finance minister also stressed upon urgent pre-disaster investments, including early warning systems and resilient infrastructure to mitigate climate risks.
8: We need to do a much better job at instituting early warning systems, building resilient infrastructure, making sure that precautions are put in place and pre-disaster investments are made to protect people from inundation and flooding, etc., downstream. So these are all issues that existed in the past, but because of climate change, they're increasingly becoming more intense and more frequent. So we need to do a much better job on those issues.
1: On energy cooperation and cross-border electricity trade, Dr. Wagle highlighted ongoing joint projects supported by Indian investments. Dr. Wagle also commended India's prompt relief and rescue assistance following recent flash floods in Nepal. He further informed that Nepalese Prime Minister Palendra Shah is expected to visit India by the end of this year. India today dispatched a fresh tranche of 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. The External Affairs Ministry said the relief material has been handed over to the Nepali side. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences over the loss of lives due to a mishap in Madhya Pradesh's Agar Malwa district. In a social media post, the Prime Minister extended condolences to those who lost their loved ones. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured would be given an amount of 50,000 rupees. 8 people, including 3 children, died after a car carrying devotees was swept away in a rain-swollen stream near Nalkera area of Agar Malwa district. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, ABVP, secured 3 major posts in the Delhi University Students Union DUSU election. ABVP's Yash Dabas won the post of president, while Riya Chowdhury secured victory for secretary and Lakshiraj Singh for joint secretary. Independent candidate Deepanshu Shokane emerged victorious for the position of vice president. The Intermeteorological Department, IMD, has predicted heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Maharashtra, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Marathwada, Sub-Himalayan West Bengal, East Rajasthan, Jharkhand, Konkan, Goa, Odisha and parts of northeastern India tomorrow. The 4-day Northeast Zone Interstate Badminton Championship 2026
2: has successfully concluded at Shillong's Jawaharlal Nehru Stadium today. A report.
9: More than 270 shuttlers from all the 8 northeastern states took part in the tournament, which also served as the qualifying event for the team competitions of the upcoming National Games 2027 to be hosted by Meghalaya. The shuttlers participated in the Under-17, Under-19 senior individual and team championships over the past 4 days. While Assam bagged 5 gold medals, Mizoram and Manipur secured 2 gold medals each, and Arunachal Pradesh secured 1. Host state Meghalaya secured 4 bronze medals. For Akashvani News, Anumita Das, Shillong.
2: The 20th Asian Games officially got underway today at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, with Emperor Naruhito declaring the games open. India's 501-member contingent was led by double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat during the athletes' parade. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of Kavach version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. And that is all in the news at 9. Good night.
10: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुदकफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 600 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त को मंजूरी दे दी है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। दो रोजा शुमाल मशरिकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 नागालैंड में इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज पर तवज्जो मरकूज की गई है। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को फिर से मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। अंडमान निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तेज बारिश होने का इम्कान है, और 20वें एशियाई गेम्स बाज़ाबता तौर पर जापान में शुरू हो गए हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगे जीतने वाली मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारतीय दस्ते की क्यादत की। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए मुकर्रर किए गए नौजवानों को ये तकर्रुरनामे सौंपे गए हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुदकफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया बरसों में मरकजी सरकार ने नौजवानों को हुनरमंदी से आरास्ता करने और मुस्तकबिल के लिए तैयार करने की खातिर उन्हें मौके फराहम करने पर लगातार तवज्जो मरकूज की है।
3: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
10: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार प्राइवेट शोबे में रोजगार के मौकों को तेजी के साथ वसत देने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मकसद से तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए के खराजात के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। उम्मीद है कि मस्कूरा स्कीम से तकरीबन 2 करोड़ नौजवान अफराद को पहली मरतबा अफरादी कुवत में शामिल होने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता चंद वर्षों में तकरीबन 40 मुल्कों के साथ आजाद तिजारत के समझौतों पर दस्तखत किए हैं जिससे मुल्क के नौजवानों के लिए मौकों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के तिजारती समझौतों से नई साझेदारियों की राह हमवार होती है और मुल्क के कारोबारी अफराद को मार्केट भी दस्तयाब होती हैं। नेज नौजवानों के लिए करियर के नए इम्कानात पैदा होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको निज़ाम मौजूद है।
3: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
10: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन अखराज में भारत का फीकस हिस्सा आलमी औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में माहौलियात के मुस्तकबिल और आबो हवा से मुतालिक अवामिल के बारे में बैन-उल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कार्बन अखराज के लिए अक्सर व बेशतर तरक्की पजीर मुल्कों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो मुनासिब नहीं है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने पेरिस में मुनक़िदा COP21 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले ही पूरा किया है। भारतीय रेलवेज ने शुमाल मशरकी रेलवे के लखनऊ डिवीजन के 607.7 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर चौथे मरहले के कवच बंदोबस्त की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। रेलवे की वजारत ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए दस्तियाब सेफ्टी के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। रेल ट्रैफिक की सेफ्टी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया कवच खुदकार तहफुजाती निजाम है जिसे मुल्क में ही तैयार किया गया है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। भारतीय रेलवे ने बस्ती रेलवे के सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बंदोबस्त को मंजूरी दी है जिस पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इसके अलावा इस डिवीजन में सिग्नलिंग के जदीद तर्ज के निजाम से रेलवे के मुतालिका सिग्नल बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकेगा और कवच निजाम पर अमल दरामद की भी सहूलत होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन डूसू के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने 3 बड़े ओहदों पर जीत हासिल की है। ABVP के यश डवास ने सदर के ओहदे की सीट जीत ली है जबकि रिया छाबड़ी ने सेक्रेटरी और लक्ष्य राज सिंह ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर कामयाबी हासिल की है। नायब सदर के ओहदे पर आजाद उम्मीदवार दीपांशु शौकीन कामयाब हुए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात में कामयाबी पर ABVP को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कामयाबी मुल्क मुकद्दम की पॉलिसी में नौजवानों के पुख्ता अकीदे की एक अलामत है। उधर वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने पैगाम में कहा है कि यह जीत मुल्क मुकद्दम के ABVP के नजरिए में नौजवानों के पुख्ता एतमाद और तलबा की बहबूद के तई उसके अहद की अक्कासी करती है। इंतखाबी कमीशन कल कौमी राजधानी दिल्ली में सभी पोलिंग मराकज के मकामात पर खसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा। दिन भर की इस मुहिम का मकसद वोटर फहरिस्तों में नए नाम शामिल करने के साथ साथ तफसीलात में इसलाह करने, निज वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल किए जाने या हटाने पर एतराजात दाखिल करने में लोगों की मदद करना है। मुतल्लिका दरखास्तें वसूल करने के लिए बूथ लेवल अफसर BLO नामजद पोलिंग मराकज पर मौजूद रहेंगे। नए वोटर का नाम शामिल कराने के लिए Form 6, एतराजात दाखिल करने के लिए Form 7, जबकि वोटर फहरिस्त में किसी तरह की इसलाह करने या ताजा जानकारी शामिल करने के लिए Form 8 दाखिल किए जा सकते हैं। कौमी राजधानी में जारी मौजूदा SIR अमल के बारे में मीडिया से खिताब करते हुए दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने यह वजाहत की कि चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर ERO अलग अलग केस की बुनियाद पर समाअत के दौरान नोटिस में बयान की गई दीगर दस्तावेजात पर भी गौर कर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। एक ऐसा सफर जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इसका सिलसिला जारी है। सेवा से सुशासन के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ की खातिर मुसलसल काम कर रही है। आज हम अपनी खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान में इस बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि प्रगति प्लेटफॉर्म

0: किस तरह लोगों की जिंदगी में यकसर तब्दीली पैदा की है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म का आगाज किया था, जिसका मकसद रियासतों और मरकजी वजारतों के साथ शराकतदारी में उनके बराह रास्त और बरवक्त जायजे के जरिए प्रोजेक्टों, स्कीमों और शिकायात के इजाले में तेजी लाना था। एक दहाई में प्रगति से फैसला साजी में तेजी आई है, बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों में ताखीर की वजूहात का हल निकाला गया है और जवाबदेही का एक मजबूत कल्चर पैदा हुआ है। फरवरी में इस साल राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वजीर आजम की सतह पर प्रोजेक्टों की तफसीली निगरानी से 85 लाख करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों में हायल रुकावटों को दूर किया गया और उनमें तेजी लाई गई।
2: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हरेक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
1: एम्स बीबी नगर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने उजागर किया कि किस तरह प्रगति तरीक़ेकार ने एम्स के लिए पानी और बिजली की सप्लाई जैसे इंतहाई अहम मामलात को हल करने में मदद की।
3: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
1: ये प्लेटफॉर्म मरकज रियासतों और मरकजी वजारतों को एक वाहिद डिजिटल राबते मिलाकर इमदाद बहमी वफाकियत को फरोग देता है। वजीर आजम ने अब तक प्रगति के तहत 53 मीटिंगों की सदारत की है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
4: आज नागालैंड में नागा यूनाइटेड विलेज चुमो के दिमा में दो रोजा शुमाल मशरकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 से खताम पजीर हुआ, जिसमें पूरे शुमाल मशरक से पॉलिसी साज, माहरीन तालीम और मुंतजमीन यकजा हुए और उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के नफाज पर तबादला ख्याल किया। इस कॉन्क्लेव का इनेकाद तालीम की वजारत के साथ इश्तराक में नागालैंड हुकूमत ने किया था और इसका मौजू था कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का नफाज, शुमाल मशरकी रियासतों के लिए नजरिया, चैलेंज और इम्कान। आज इसकी अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए त्रिपुरा की आला तालीम, पंचायतों और इंतजामी उमूर के वजीर किशोर बर्मन ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मौसर नफाज पर जोर दिया, ताकि शुमाल मशरक में तालीम को ज्यादा हुनरमंदी पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाया जा सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के दिल्ली जोनल दफ्तर ने इज्तिमाई सरमायाकारी की स्कीम के ताल्लुक से मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर माली धोखादही के सिलसिले में एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स अबूरी तौर पर कुर्क कर लिए हैं, जिनकी मौजूदा मार्केट कीमत 42 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईडी ने मरकजी जांच ब्यूरो की जानिब से दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर छानबीन शुरू की थी। बाद में CBI ने गैर कानूनी सरमायाकारी स्कीम चलाने में मुलव्वस होने की बिना पर 33 मुलजिम अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म और एक जिमनी फर्द जुर्म दाखिल की थी। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत ताल्लुकात के जरिए अपनी शराकतदारी को तकवीत बख्शने के इम्कान हैं। आज नई दिल्ली में तरक्की पजीर ममालिक के लिए तहकीक और इत्तलाआती निज़ाम की जानिब से मुनक़िदा उभरते आलमी निज़ाम में भारत नेपाल ताल्लुकात का नए सिरे से तसव्वुर के मौजू पर एक बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर वागले ने कनेक्टिविटी और इक़्तिसादी इश्तराक को मुस्तहकम करने और दोनों ममालिक के दरमियान खातिर ख़्वाह इम्कानात को बरूएकार लाने की अहमियत पर जोर दिया। भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने कल अंडमान निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कल मराठवाड़ा, जैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल, मशरकी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, उड़ीसा और मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में भी गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। आज जापान के मिजुहू पार्क एथलीट स्टेडियम में 20वें एशियन गेम्स की शाह नारुहितो की जानिब से आगाज किए जाने के बाद शुरुआत हो गई है। 2 घंटे की तकरीब में जापान के शाही कुनबे, खेलों से मुतालिक अहदेदारान और ओलंपिक की एशियाई काउंसिल के सदर शेख जोआन बिन हमद अलसानी ने शिरकत की। 501 मेंबरान पर मुश्तमिल भारतीय दस्ते की क्यादत 2 मरतबा ओलंपिक मेडल जीत चुकी मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जापान में एशियन गेम्स के आगाज के बाद भारतीय खिलाड़ियों को अपनी नए ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि हर एथलीट ने बेपनाह मेहनत की और लगन और अज़्म का मुजाहरा किया है और भारत उन पर फख्र करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एथलीट्स गेम्स में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेंगे। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 600 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त को मंजूरी दे दी है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। दो रोजा शुमाल मशरकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 नागालैंड में अख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज पर तवज्जो मरकूज की गई। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी को फिर से मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। अंडमान निकोबार जजायर साहिली आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तेज बारिश का इम्कान है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
5: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
6: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार तीन वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था, वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वातंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट टू के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जीवी प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: 74वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म आंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
1: ननगू एल्लरन्नू कंड्रे इष्ट अदक्के बैतिनि नानू दोड्ड अयोग्य।
0: आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
2: सरकार को कुछ होना क्या?
1: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
2: नहीं मालूम कहाँ गया, माटी मिला
1: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंत नाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंत नाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म KGF में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
3: गरुड़न नोड़दागा रॉकेट कन्फर्म आयतु। हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस। ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಾಕಲಿಲ್ಲ.
0: ಅನಂತ ನಾಗ್ ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮೇ ವರಿಷ್ಠ ಪತ್ರಕಾರ ಔರ್ ಲೇಖಕ ಆನಂದ್ ಇಂಗ್ಲಾಗಿ ಕಾ ಕಿರ್ದಾರ್ ನಿಭಾಯಾ ಥಾ. ದರಸಲ್ ಯೆ ಕಿರ್ದಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಭೀ ಹೈ. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಅನಂತ ನಾಗ್ ಅಂಕುರ್, ಭೂಮಿಕಾ, ಕಾಲಿಚರಣ್ ಔರ್ ಜುರ್ಮ್ ಜೈಸಿ ಫಿಲ್ಮೋ ಮೇ ನಜರ್ ಆಯೆ ಹೈ. ಸಿನಿಮಾ ಔರ್ ಕಲಾ ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಯೋಗದಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ್ ನೆ ಸಾಲ್ 2025 ಮೇ ಅನಂತ ನಾಗ್ ಕೋ देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय। अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
4: हंस क्यों रहे?
5: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहान उल मुल्क के रिश्तेदार के नगर पोते मीर रोशन अली में।
4: जरा होश में आइए हुजूर। जरा हाँ सुनिए मेरी बात। यहाँ से भाग निकलते हैं।
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी, कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई, ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।
6: सन

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: क्या नाम है तेरा?
2: कमली।
1: कमली, बड़ा प्यारा नाम है।
2: मेरा नाम नंदू है।
1: अच्छा नाम है ना?
3: और बारह पुत्रा भाई।
1: चल, तू इधर रोज आती है?
2: हाँ।
1: कल है ना, मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
2: अच्छा, मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली,
4: गर्लफ्रेंड
2: क्या
1: तेरी कोमाई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन

शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर, और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वरनाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
2: बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पाकेटमार बहुत आते हैं।
2: तो आते हैं फिर?
1: और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूँ तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: आदत हो गया।
1: जाओ।
3: वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
1: खेल रहे हैं?
3: शतरंज, निजा साहब के साथ। इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
1: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
1: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा। साल था 1974।
4: मेरे अनुरागी मन में।
0: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
5: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से

0: उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए और फिल्म इजाजत के लिए
1: मेरा कुछ काम तुम्हारे पास पड़ा।
0: साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते थे। लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी की बिल्कुल जबरदस्त फैन के मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा, अरे ये दिना की लड़की है। ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 7 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जैसा वो लाइट लगता था लाल लाइट के, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था, पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों, हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, और मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी के, जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं, फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, इस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो

0: गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया। काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ये है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए। वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत होती है 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरेली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहती
1: जी।
0: मुझे इन चीज़ों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की ज़रूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो,
1: जी।
0: पलंग हो, इंसान को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए,
1: जी
0: एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखें, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती। क्योंकि इंसान जो सपनों पे भी जीता है उसको कोई भी जगह चल। मैं सपने में जीने वाली औरत, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता, फिर मैं खुद ही सोचती हूँ और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या सोच रही हूँ।

0: शीश। स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
2: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर 1, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी।
3: ये दिल आशिकाना।
0: कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कांची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध आलेख स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं में हमेशा पूरी दुनिया को एक साथ लाने की बात कही गई है और स्पोर्ट्स यानी खेल शायद उसका सबसे बेहतरीन जरिया है।
3: एक गेंद हवा में उठती है, एक दौड़ शुरू होती है और शुरू होती है खिलाड़ियों की जद्दोजहद। दर्शकों की नजरें गेंद पर टिकती हैं, सांसें थम जाती हैं और फिर एक पल आता है जाने कितनी धड़कने एक लय पकड़ लेती है और जीत की खुशी में जाने कितने चेहरे एक साथ खिल उठते हैं। शायद खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। दुनिया में कितनी ही दूरियां हैं, कितने मतभेद हैं, कितनी दीवारें हैं, लेकिन खेल एक ऐसा जरिया है जो सबको एक साथ एक मंच पर ला खड़ा करता है। और एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही इसी सोच के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरुदत्त सोढ़ी ने महसूस किया और सपना देखा एशिया के सभी देशों को ठीक इसी तरह एक मंच पर लाने का। इसी विजन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ।
2: आज 75 वर्षों बाद भी ये मंच एशिया को यानी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है
3: और इसका एहसास आज जापान के पालोमा मिजुहू स्टेडियम में हुआ जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट्स एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
2: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था जहां एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास्ट किया।
3: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में दो ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
2: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के तीन कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
4: To each and every one of you, the entire continent is behind you. Give everything you have, hold nothing back. The impact of what you achieve

0: Here will stretch far beyond any medals or performances. Throughout our continent, across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you, they're learning from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved when we push the limits of human potential, and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
1: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होनेहोन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
2: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली। एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
1: सबसे पहले बात टेकबॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेकबॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेकबॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेकबॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांघ, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेकबॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेकबॉल दल में क्विम्सी डिसूजा, मोहम्मद अनस इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विम्सी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वार्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की ओएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विम्सी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह क्विम्सी फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
2: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरनी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता। लेकिन कमाल की बात यह रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई, तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दे कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ टेकबॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी, जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7:00 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की, जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिनटैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है, बल्कि एलए 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
3: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर एक ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टैमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा, जापान और साउथ कोरिया, इवन पाकिस्तान, इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट आल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट। मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
2: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे, सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है, महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरन साथियान, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्ता मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
1: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार, अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है। ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशू से लेकर MMA तक की। एक तरफ वुशू में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशू की। वुशू के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे। इन्हीं में वुशू भी शामिल है, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशू के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशू की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशू अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के 2 खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
2: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 बजे आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पंती किया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
4: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

अभी आप सुन रहे थे एशिया गेम्स 2026 पर आधारित कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत।

लव आजकल, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना राहत फतेह अली खान की आवाज में। शब्द रचना थी इरशाद कामिल की और संगीत प्रीतम का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। विशाल डडलानी का लिखा गीत आप सुनिए विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में। आवाज राहत फतेह अली खान और साथियों की है और फिल्म का नाम है अनजाना अनजानी 2010।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। भूल भुलैया, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत प्रीतम का है।

भूल भुलैया। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की आवाज में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत प्रीतम का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, कार्यक्रम है फिल्म संगीत। क्रिमिनल, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। शब्द रचना इंदिवर की है और संगीत एम एम करीम का।

लाइफ इन अ मेट्रो। सोहम का गाया गीत सुनिए, सैयद कादरी की शब्द रचना है और संगीत प्रीतम का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए निदा फाजली का लिखा गीत। संगीत एम एम करीम का है और फिल्म है सुर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में। शब्द रचना इरशाद कामिल की है और संगीत प्रीतम का।

0: इस गीत गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said, with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Indian Railways has approved provision of Kavach version 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division of Northeastern Railway. The cost of the project is over 250 crore rupees. The Railways Ministry said that the approved project will extend Kavach 4.0 coverage across the identified balance sections of the division, strengthening the safety infrastructure available for train operations. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road overbridge ROB on Udhna-Ukai-Songarh section of Western Railway. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle has stated that India and Nepal have an opportunity to renew their partnership by building on the strong ties that already exist. Dr. Wagle said this while addressing an international seminar on reimagining India-Nepal relations in an emerging global order organized by the Research and Information System for Developing Countries in New Delhi today. India today dispatched a fresh tranche of 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. The External Affairs Ministry said that the relief material has been handed over to the Nepalese side. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolences over the deaths in a road mishap in Madhya Pradesh's Agar Malwa district. The Prime Minister announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured would be given an amount of 50,000 rupees. 8 people, including 3 children, died after a car carrying devotees was swept away by a rain-swollen stream near Nalkheda. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP secured 3 major posts in the Delhi University Students' Union DUSU election. ABVP's Yash Dabas won the post of president while Ria Chhavri secured victory for secretary and Lakshraj Singh for joint secretary. Meanwhile, independent candidate Dipanshu Shaukeen emerged victorious for the position of vice president. The 20th Asian Games officially got underway today at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan with Emperor Naruhito declaring the games open. India's 501-member contingent was led by double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pavan Sehrawat during the athletes' parade. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 5:30 और 7 सेकंड। आप हैं इस वक्त अपने ही दोस्त रूपा के साथ भोर सुहाने में। दोस्तों, हमारे मन की शक्ति सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा, दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम भाव को, और इसके साथ साथ अपने मन पर विजय पाने को, इन जीवन मूल्यों से हमें परिचित कराती है। इन जीवन मूल्यों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगर जिंदगी की बात करें, आज की भोर की बात करें, तो देखते हैं आज ये हमें कौन सी दिशा में लेकर चलती है, कौन से गांव में, कौन सी जगह पर हमारा इंतज़ार है, या हम कहाँ जाना चाहते हैं। देखते हैं आज क्या होता है। खैर, जो भी होगा अच्छा ही होगा।